आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 13 जुलाई सन 2026। प्रातः के 5:59 और ठीक 6 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की ये प्रथम प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। सवेरे के 6 बज रहे हैं, कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। श्री गोयल 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किए गए एक विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठक भी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा हिंदी, अंग्रेजी और किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अपनी प्रविष्टियां भेज सकेंगे। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौ वहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
2: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत बेंदाले, नई दिल्ली के ऋषित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने रूस, चीन, कजाखस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। 87 देशों के 381 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। सबके लिए हितकारी, शुभकारी, कल्याणकारी हो तुम हे प्रभु, तुम्हारा आश्रय पाने वाला सर्वथा भयमुक्त हो जाता है।

धरती, अंबर, सूर्य, चंद्र और तारक गण सब तुम्हारा गुणगान करते हैं। तुम सर्वव्यापी हो प्रभु, कण कण में तुम्ही विद्यमान हो। हे शिव, तुम्हें बारंबार प्रणाम।

वाहे गुरु, मेरे जीवन की सरलता तुम्हारी कृपा पर निर्भर है। संतों का सान्निध्य और प्रभु भजन इसी कृपा का विस्तार है। यही कृपा एक दिन मुक्ति का आधार बन जाएगी।

अनुराधा पौडवाल और साथियों के स्वर में ये भक्ति रचना आप सुन रहे थे। इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। सुबह के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है संगीतमय श्री रामचरितमानस गान।

तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचकर भरत पुलकित हैं। हृदय में श्री राम सीता और लक्ष्मण के लिए उमड़ते स्नेह से आंखों में आंसू उमड़ आए हैं। निर्दोष भाव से वे भरद्वाज जी के सम्मुख अपने उद्गार प्रकट करते हैं। उन्हें अपनी माता कैकेयी की करनी का कोई विषाद नहीं है और न ही पिता के निधन का शोक है, क्योंकि दिवंगत महाराज का पुण्य और सुयश समस्त जगत में विदित है। जिन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र पाए और पुत्र विरह में नाशवान शरीर त्याग दिया, ऐसी पुण्यात्मा के लिए शोक करना तो उसकी मर्यादा के प्रति अपमान होगा। भरत को सोच इस बात का है कि राम लक्ष्मण तथा सीता मुनियों का वेश धारण कर वन वन फिर रहे हैं, वलकल वस्त्र पहनते हैं, कंदमूल का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों की छाया में सर्दी गर्मी वर्षा और हवा के झोंके सहते हैं। इसी दुख से भरत की छाती फटती है, न भूख लगती है न नींद आती है। इस दुख का निदान उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देता। निदान मात्र एक है, श्री राम को अयोध्या लौटा लाना।

0: अभी आप सुन रहे थे संगीतमय श्री रामचरितमानस गान। गायक कलाकार थे ए हरिहरन और संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है चिंतन।
1: सदियों पूर्व महाभारत का कालखंड वर्तमान से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। राजनेताओं की स्तुति में लगे हुए बुद्धिजीवी सत्ता राजकृपा के अभिलाषी हैं। लेखक कवि विद्वान आदि समाज में आए दिन होने वाली घटनाओं के दमन बलात्कार अपहरण छल कपट घोटालों आदि को टुकुर टुकुर देखते रहते हैं। सरल मन साधु स्वभाव ज्ञानी जन की मन स्थिति बहुत कुछ अवश्य है। भीष्म और द्रोण की तरह यही तो महाभारत के कालखंड और वर्तमान की समानता है। महाभारत का कालखंड बहुत कुछ वर्तमान जैसी घटनाओं और ऐसे ही चरित्रों से भरा पड़ा है। दुर्भाग्य ये है कि हमने ऐसे शाश्वत ग्रंथ को पूजा और चर्चा की वस्तु बनाकर छोड़ दिया है और कुछ भी सीखने का प्रयास नहीं किया है। यदि ऐसा किया होता तो हम भारतवासी वर्तमान के नारकीय जीवन की रचना न होने देते, पर ऐसा नहीं हो सका। आज स्थिति ये है कि मूल्यों के अवमूल्यन और विश्रंखलन की स्थिति वही है जो उस कालखंड में थी। व्यासकृत महाभारत के सभी सत्य वर्तमान में हमें भोगने पड़ रहे हैं। अवश्य मानसिकता वाले भीष्म और द्रोण की ओर संकेत हम कर चुके हैं। हमारे बीच कर्ण भी है जो समाज में अपने वांछित अधिकार पाने के लिए छटपटा रहे हैं, और वो व्यवस्था भी है जो कर्ण जैसे योग्य और क्षमता संपन्न व्यक्तियों को कुंठाग्रस्त करके उसे नाश का मोहरा बना सकती है। महाभिमानी और शक्ति मदांध दुर्योधनों के दर्शन पग पग पर होते हैं। आदि अंतर केवल इतना है, तब कृष्ण मौजूद थे और अब कृष्ण की आवश्यकता अनुभव की जा रही है, और उन्हें यदा यदा ही धर्मस्य वाले उनके संकल्प की याद दिला रहे हैं। तब अर्जुन मौजूद थे जिनके गांडीव की टंकार अधर्म के नाश का संदेश सुनाती थी। वर्तमान के मनुष्य में वो मानव विद्यमान है जो हर कालखंड में लिप्सा घृणा स्वार्थ संवेदना ममता क्रोध षड्यंत्र लोभ आदि में निमग्न रहा है, जो मनुष्य की मूल वृत्तियां हैं और जिनसे उनके विलग होने की संभावनाएं प्रायः नहीं के बराबर हैं। दुर्भाग्य ये है कि मूल्यों की अवहेलना उन्हीं के हाथों हो रही है जिनके पूर्वजों ने कुछ पीढ़ियों पूर्व उनकी व्यवस्था दी थी। अधिक दूर क्यों जाएं? आज से 60-70 वर्ष पूर्व ही हमारे देश में एक नहीं अनेक अर्जुन थे जो मूल्यों की रक्षा करने

0: अंतर्गत आइए सुनते हैं श्री रमेश चंद्र गोयल से उनका पूर्व प्रसारित काव्य पाठ।
1: जब से चार दीवारी पर से झांक गए हैं लोग, जब से चार दीवारी पर से झांक गए हैं लोग, घर की ईंटों की मजबूती आंक गए हैं लोग, घर की ईंटों की मजबूती आंक गए हैं लोग, जब से चार दीवारी पर से झांक गए हैं लोग। उत्तर देता रहा मौन दरवाजा खड़ा खड़ा, उत्तर देता रहा मौन दरवाजा खड़ा खड़ा, पर चौखट पर प्रश्न कई फिर टांक गए हैं लोग, घर की ईंटों की मजबूती आंक गए हैं लोग, जब से चार दीवारी पर से झांक गए हैं लोग। और जब से नाली की दरार ने पानी सोखा है, जब से ये देखिए घुसपैठ, जब से नाली की दरार ने पानी सोखा है, नींव खोखली है कितनी यह भांप गए हैं लोग, और घर की ईंटों की मजबूती आंक गए हैं लोग, जब से चार दीवारी पर से झांक गए हैं लोग। और देख देख कर इन कमरों में बंद उजालों को, देख देख कर इन कमरों में बंद उजालों को, सूरज चंदा तक को बाहर हांक गए हैं लोग, घर की ईंटों की मजबूती आंक गए हैं लोग, जब से चार दीवारी पर से झांक गए हैं लोग, जब से चार दीवारी पर से झांक गए हैं लोग। अब मैं रचना पढ़ूंगा, उसमें देखिएगा कि आज स्थिति ऐसी होती है, हमें लग रहा है कि देश जैसे टूट रहा है या हम इसे तोड़ रहे हैं, फिर हम जोड़ने का प्रयत्न क्यों नहीं करते, हम प्रयत्न नहीं करते उसे जोड़ने का। किंतु देखिए मैंने ये बात अपनी विचार से कही है कि वह वहां गिरने को है घर, वह वहां गिरने को है घर, छोड़ता फिर क्यों नहीं, या जहां तक हैं दरारें जोड़ता फिर क्यों नहीं, वह वहां गिरने को है घर छोड़ता फिर क्यों नहीं, या जहां तक हैं दरारें जोड़ता फिर क्यों नहीं, और छोड़ता भी तू नहीं है जोड़ता भी तू नहीं, छोड़ता भी तू नहीं है जोड़ता भी तू नहीं, चरमराई है व्यवस्था तोड़ता फिर क्यों नहीं, चरमराही है व्यवस्था तोड़ता फिर क्यों नहीं, और वह वहां गिरने को है घर छोड़ता फिर क्यों नहीं, या जहां तक हैं दरारें जोड़ता फिर क्यों नहीं, और तोड़ इसको तोड़ इसको तोड़ कर फिर से इसे जोड़ देकर जोड़ से तू जोड़ता फिर क्यों नहीं, और या जहां तक हैं दरारें जोड़ता फिर क्यों नहीं, वह वहां गिरने को है घर छोड़ता फिर क्यों नहीं। और देख सीधी उंगलियों से घी न निकला है कभी, देख सीधी उंगलियों से घी न निकला है कभी, मोड़ इनको मोड़ इनको मोड़ता फिर क्यों नहीं, या जहां तक हैं दरारें जोड़ता फिर क्यों नहीं, और पाप है तो ज्ञान या अज्ञान से जिस पाप के, पाप है तो ज्ञान या अज्ञान से जिस पाप के, ढो रहा है तू घड़े को फोड़ता फिर क्यों नहीं, या जहां तक हैं दरारें जोड़ता फिर क्यों नहीं, वह वहां गिरने को है घर छोड़ता फिर क्यों नहीं, या जहां तक हैं दरारें जोड़ता फिर क्यों नहीं। और जा रही है यह सड़क अंधे अंधेरों की तरफ, जा रही है यह सड़क अंधे अंधेरों की तरफ, रोक या रुख रास्ते का मोड़ता फिर क्यों नहीं, या जहां तक हैं दरारें जोड़ता फिर क्यों नहीं। और चीखती है चीख सी भीतर कभी बाहर कभी, चीखती है चीख सी भीतर कभी बाहर कभी, दर्द का यह दर्द पीछा छोड़ता फिर क्यों नहीं, या जहां तक हैं दरारें जोड़ता फिर क्यों नहीं, वह वहां गिरने को है घर छोड़ता फिर क्यों नहीं, या जहां तक हैं दरारें जोड़ता फिर क्यों नहीं। एक छोटी सी भावना का गीत देखें, अंतर्भावना का है कि एक पंछी जब जरा से पंख फैलाने लगा, एक पंछी जब जरा से पंख फैलाने लगा, तब उसे आकाश भी छोटा नजर आने लगा, तब उसे आकाश भी छोटा नजर आने लगा, एक पंछी जब जरा से पंख फैलाने लगा, और बांटनी थी रोशनी जिस दीप को उस दीप के, ठीक नीचे खुद अंधेरा और

0: गहराने लगा और तब उसे आकाश भी छोटा नजर आने लगा। एक पंछी जब जरा से पंख फैलाने लगा और जल उठा जंगल वहां जब आप अपनी आग में, जल उठा जंगल वहां जब आप अपनी आग में, तू यहां पर दोस्त चिंगारी के गिनवाने लगा, तू यहां पर दोस्त चिंगारी के गिनवाने लगा। और कंकड़ों के फेंकने में तट को शामिल देखकर, कंकड़ों के फेंकने में तट को शामिल देखकर कप कपाया झील का जल और लहराने लगा, कप कपाया झील का जल और लहराने लगा। आंसुओं की भीड़ में से आ उचक सपना कोई, आंसुओं की बिंबन देखें, आंसुओं की भीड़ में से आ उचक सपना कोई, देख कर यह हाल मेरा मुझ पे मुस्काने लगा। और एक पंछी जब जरा से पंख फैलाने लगा तब उसे आकाश भी छोटा नजर आने लगा, तब उसे आकाश भी छोटा नजर आने लगा। छोड़कर हल हाथ मेरा जब से खंजर हो गया, क्या बताऊं प्यार का यह खेत बंजर हो गया। छोड़कर हल हाथ मेरा जब से खंजर हो गया, क्या बताऊं प्यार का यह खेत बंजर हो गया। और रोक पाएगा तबाही कौन इस माहौल में, एक भी झोंका अगर घुटकर बवंडर हो गया, एक भी झोंका अगर घुटकर बवंडर हो गया। रोक पाएगा तबाही कौन इस माहौल में, एक भी झोंका अगर घुटकर बवंडर हो गया। और सोच मत केवल समझ भी तो सही है बात तू, सोच मत केवल समझ भी तो सही है बात तू। बूंद भर पानी भला कैसे समंदर हो गया, बूंद भर पानी भला कैसे समंदर हो गया। और लड़ रहा था जब मैं अपने आप से उसके लिए, लड़ रहा था जब मैं अपने आप से उसके लिए, कर मुझे बाहर वो दाखिल मेरे अंदर हो गया। क्या बताऊं प्यार का यह खेत बंजर हो गया। और मार कर उस आदमी को मान बैठा आदमी, आदमी की स्थिति देखिएगा कि मार कर उस आदमी को मान बैठा आदमी, मैं सिकंदर, मैं सिकंदर, मैं सिकंदर हो गया। क्या बताऊं प्यार का यह खेत बंजर हो गया। छोड़कर हल हाथ मेरा जब से खंजर हो गया, क्या बताऊं प्यार का यह खेत बंजर हो गया। और आदमी की स्थिति देखिए, किस किस तरीके से आदमी को जीना पड़ता है, कितने कितने चेहरे बदल कर जीना पड़ता है। देखें कांधे कांधे हमने कितने ढोए हैं चेहरे, कांधे कांधे हमने कितने ढोए हैं चेहरे, चेहरों की इस भीड़ में खोए खोए हैं चेहरे, चेहरों की इस भीड़ में खोए खोए हैं चेहरे, कांधे कांधे हमने कितने ढोए हैं चेहरे। कोई न कोई दाग दिखाई दे ही जाता है, कोई न कोई दाग दिखाई दे ही जाता है, जब भी धोते हैं या जब भी धोए हैं चेहरे, चेहरों की इस भीड़ में खोए खोए हैं चेहरे, कांधे कांधे हमने कितने ढोए हैं चेहरे। और नव के नीचे रुकी रात के संग मुसाफिर ज्यों, नव के नीचे रुकी रात के संग मुसाफिर ज्यों, अध जागे अध सोए से अनसोए हैं चेहरे, अध जागे अध सोए से अनसोए हैं चेहरे, चेहरों की इस भीड़ में खोए खोए हैं चेहरे, कांधे कांधे हमने कितने ढोए हैं चेहरे। होठ नहीं हिलते इनकी बस आंखें कहती हैं, होठ नहीं हिलते इनकी बस आंखें कहती हैं, अपने ऊपर हंस हंस कर ही रोए हैं चेहरे। और चेहरों की इस भीड़ में खोए खोए हैं चेहरे, कांधे कांधे हमने कितने ढोए हैं चेहरे, चेहरों की इस भीड़ में खोए खोए हैं चेहरे। और इनको उनको या फिर खुद को कैसे पहचाने, इनको उनको या फिर खुद को कैसे पहचाने, चेहरे चेहरे हमने कितने बोए हैं चेहरे।
1: काव्यधारा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे श्री रमेश चंद्र गोयल से उनका पूर्व प्रसारित काव्य पाठ। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे, पहले संस्कृत में तत्पश्चात हिंदी में।
2: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघटनेन उद्घोषितम् यत् तेन गगनयान अभियानस्य क्रू मॉड्यूल तंत्राणां त्रयाणां प्रमुख परीक्षणानां सफलं निष्पादनं विहितम्। प्रथम परीक्षणं समुद्रे अवतरणानन्तरं क्रू मॉड्यूल इत्यस्य स्थितिं सुनिश्चेतुं सम्बद्धम् आसीत्, यत् अंतरिक्षयात्रिणां सुरक्षायाः दृष्ट्या अत्यन्तं महत्वपूर्णं मानदण्डं मन्यते। द्वितीय परीक्षणे अम्ब्लिकल तंत्रस्य पृथक्करण प्रक्रियायाः परीक्षणं विहितम्। तृतीय परीक्षणे तावत् शीर्ष आवरण पृथक्करण क्षणे क्रू मॉड्यूल इत्यस्य संरचनात्मक अखंडतायाः प्रामाणिकतां सिद्धम् अभवत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जुलाई मासस्य 26 दिनांके आकाशवाणीतः प्रसारिते मन की बात इत्याख्ये कार्यक्रमे देश विदेशस्य जनैः साकं स्वकीयान् विचारान् विनिमयिष्यति। अस्य मासिक श्रव्य कार्यक्रमस्य अयम् 37th भागो भविता। जनाः निःशुल्क दूरभाष संख्यायाः 1800117000 इति माध्यमेन अस्य कार्यक्रमस्य कृते स्वकीय परामर्शान् प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। जनाः तावत् नरेन्द्र मोदी ऐप इत्यस्य अथ च माई गॉव इति मुक्त मञ्चस्य अन्तर्जालीय माध्यमेन च स्वकीय परामर्शान् दातुं शक्नुवन्ति। अस्य आगामिनः भागस्य कृते परामर्शाः अस्य मासस्य 24 दिनांकं यावत् स्वीकरिष्यन्ते। केन्द्रीय सहकारिता मन्त्री अमित शाहः अद्य गुजरात राज्यस्य गांधीनगरे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी APMC इत्यस्य अमृत महोत्सवावसरे नूतनस्य शाक उपविपणन केन्द्रस्य उद्घाटनं विधास्यति। सहकारिता मन्त्रालयानुसारं अस्मिन् कार्यक्रमे श्री शाहः एक पेड़ मा के नाम इत्यभियानान्तर्गतं पादपारोपणं विधास्यति। सहैव APMC संस्थायाः अमृत महोत्सवस्य संस्मरणाय संकलितां एकां स्मारक पुस्तिकां विमोचयिष्यति। अत्रावधौ श्रीशाहः दहेगाम APMC परिषदः सदस्यैः सहापि वैचारिक विमर्शं साधयिष्यति। गतदिने ओमान तटे भारतीय नाविक युक्ते GFS गैलेक्सी इत्याख्ये वाणिज्यिक पोते आक्रमणात् परं नवदिल्ल्या पश्चिमेशिया क्षेत्रे उत्पातस्य शमनाय स्वकीयं आह्वानं पुनः प्रतिपादितम्। आक्रमणस्य तीव्र निन्दां कुर्वता विदेश मन्त्रालयेन निगदितं यत् पोते स्थितेषु 11 भारतीय नागरिकेषु 10 नागरिकाः एतावता सुरक्षिततया निष्कासिताः, अपरत्र एकः नाविकः अधुनापि विलुप्तः। मन्त्रालयेन प्रतिपादितं यत् ओमान देशे स्थितः भारतीय दूतावासः स्थिते सूक्ष्मावलोकनं करोति। सहैव प्रचलत् सुरक्षा कार्येषु ओमान देशस्य प्राधिकारीभिः साकं सक्रिय समन्वयं साधयति। नवदिल्ल्या वाणिज्यिक नौवहनेषु प्रचलत्सु निरन्तर आक्रमण प्रसंगेषु स्वकीया गभीरा चिन्ता प्रकटिता। अनेनैव सह भारतस्यास्य राजनैतिक समाधानाय वार्तानां शीघ्र सम्पूर्त्यै याचना विहिता, येन अस्मिन् क्षेत्रे पुनः शान्तिः स्थिरता च प्रवर्तेत। फीफा विश्वचषक पादकन्दुक प्रतिस्पर्धायां सर्वेषां प्रागुपान्त्य चरणात्मकानां द्वन्द्वानां समाप्त्यनन्तरम् उपान्त्यचक्रस्य रूपरेखा पूर्णतः सिद्धा सञ्जाता। प्रथमायाम उपान्त्य स्पर्धायाम आगामी बुधवासरे फ्रांस स्पेन दलयोर्मध्ये

0: स्पर्धा भविता। क्रीडेयं भारतीय समयानुसारं रात्रौ सार्धद्वादशवादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स सीईओई और आईसीईएक्स स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में शामिल होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किए गए एक विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठकें भी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अपनी प्रविष्टियां भेज सकेंगे। राज्य स्तर के विजेताओं को 12 और 13 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा शिखर सम्मेलन के दौरान होने वाले फाइनल में भाग लेने का अवसर मिलेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जांच की गई। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। इन तीनों परीक्षणों से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वो डूबेगा या उल्टेगा नहीं। कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। 87 देशों के 381 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक बार में लगी आग से 27 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 9 पुरुष और 18 महिलाएं शामिल हैं। 60 से अधिक लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री अनुतिन चरणविराकुल ने संवाददाताओं को बताया कि 27 शव बरामद कर लिए गए हैं। आग लगने के कारणों की जांच चल रही है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 से हराया। ये सिनर का लगातार

0: दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और पांचवा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। प्रातः के 7:05 हुए हैं। स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत आइए सुनते हैं दांतों का पायरिया रोग विषय पर जानकारी।
2: पायरिया रोग के मुख्य कारण दो समझे जाते हैं, जिसमें पहला कारण है दांतों की सफाई का अभाव और दूसरा खान पान की अनियमितताएं। दांतों का आकार कुछ ऊंचा नीचा और असमान होता है और इनके बीच कुछ खाली स्थान भी रहता है। खाने पीने के उपरांत खाद्य पदार्थ का कुछ अंश इनके बीच फंसा रह जाता है। यदि इसे स्वच्छ न किया जाए तो ये सड़ने लगता है। इससे दांतों पर मैल जमना, दांत पीले या काले पड़ना, दांतों से मवाद आना, मुंह से दुर्गंध आना आदि कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं। यही कारण है जिससे दांतों में कीड़े लगना, दांतों में कैविटी बनना, दांतों का हिलना और टूटना आदि कष्ट उत्पन्न होते हैं। जहां तक खान पान का सवाल है, खाने पीने के पदार्थों का सीधा प्रभाव दांतों पर पड़ता है। भोजन में कैल्शियम, फ्लोराइड और विटामिन सी व डी की कमी से दांत कमजोर पड़ जाते हैं। इससे दांतों का डेंटिन व इनेमल कमजोर हो जाता है। जो लोग तंबाकू खाते हैं अथवा पीते हैं, उनके दांतों पर एक पीली सी पपड़ी पड़ जाती है जिसे टार्टर कहते हैं। इससे दांतों का इनेमल कमजोर पड़कर नष्ट हो जाता है। गर्म खाना खाने के फौरन बाद फ्रिज का ठंडा पानी पीने से दांतों के डेंटिन और इनेमल में दरारें पैदा हो जाती है, जिनमें कीटाणु फलने फूलने लगते हैं। दांतों के खराब होने और पायरिया रोग के लिए पीने के पानी की महत्वपूर्ण भूमिका है। पानी में थोड़ी मात्रा में फ्लोराइड होना लाभदायक है, किंतु इसकी अधिक मात्रा दांतों को भुरभुरा बना देती है, जिससे वे आसानी से टूटने लगते हैं। कब्ज और दांतों के रोगों से भी सीधा संबंध है। ये एक अंतहीन वृत्त है जिसमें पेट खराब होने से दांत खराब तथा दांत खराब होने से पेट खराब हो जाता है। पायरिया रोग से बचाव के लिए सबसे पहला काम है दांतों की सफाई। प्रतिदिन प्रातःकाल और रात्रि को सोने से पहले दांतों की सफाई आवश्यक है। सफाई के लिए उचित तरीका यह है कि नीचे की ओर ब्रश करते हुए ब्रश चलाना चाहिए। इसके लिए अच्छे किस्म के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए तथा समय समय पर उसे कीटाणु रहित करते रहना चाहिए। उंगली से मसूड़ों की मालिश भी करनी चाहिए। गलत प्रकार से ब्रश करने से मसूड़ों को हानि पहुंच सकती है, जो कि पायरिया का कारण भी बन सकता है। दांत साफ करने के लिए नीम अथवा बबूल की दातून का प्रयोग भी अच्छा है। टूथपेस्ट अथवा मंजन अच्छी किस्म का लेना चाहिए। आज के विज्ञापन के युग में किसी वस्तु की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना एक कठिन काम है। यदि मंजन का प्रयोग किया जाए तो वो बारीक और नरम होना चाहिए, अन्यथा दांतों के इनेमल को क्षति पहुंच सकती है। हफ्ते में एक या दो दिन थोड़े से सरसों के तेल के साथ सादा नमक से दांत साफ करना उपयोगी रहता है। जामुन, मौलश्री अथवा कचनार की छाल की राख से दांत मांजने से दांतों से खून अथवा मवाद आना बंद हो जाता है। यदि दांतों पर टार्टर हो तो दांतों के चिकित्सक से उसे साफ करवा देना चाहिए। दांतों के स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भोजन आवश्यक है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि इसके लिए महंगा अथवा गरिष्ठ भोजन किया जाए। दांतों को स्वस्थ रखने के लिए भोजन में पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक तत्वों का समावेश करना चाहिए। इसके लिए भोजन में आंवला, नींबू, गाजर, मूली, बादाम, मूंगफली, पालक, मक्खन, घी, गुड़, दूध, दही, छाछ, संतरा, केला, कच्चा नारियल आदि का प्रचुरता से प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे दांतों को आवश्यक मात्रा में चूना, फ्लोराइड, विटामिन सी और डी आदि प्राप्त होते रहें। खट्टे, मीठे, मिर्च मसाले वाले पदार्थों का अधिक सेवन न करें। जूठे अथवा गंदे पदार्थों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः तथा सायंकाल नियमित रूप से शौच के लिए जाएं। दांतों का पायरिया रोग एक जीर्ण व्याधि है। न तो ये एक दिन में होती है और न ही इसे एक दिन में कोई ठीक कर सकता है। अतः इसकी चिकित्सा धैर्य पूर्वक तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि रोग पूर्णतः निर्मूल न हो जाए।
1: स्वास्थ्य चर्चा में अभी आप सुन रहे थे दांतों का पायरिया रोग विषय पर जानकारी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। प्रातः के 7:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं खेती की बातें।
3: किसान भाइयों नमस्कार।

0: किसान भाइयों, खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं खेती बाड़ी को और अधिक लाभकारी कैसे बनाएं। किसान भाइयों, भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अधिकांश जनसंख्या खेती पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पर निर्भर रहती है। किसान भाइयों, आज बढ़ती लागत और मौसम में बदलाव, साथ ही साथ बाजार की अनिश्चितता के कारण किसान भाइयों के सामने अनेक चुनौतियां हैं अधिक उत्पादन की, अधिक लाभ कमाने की। तो भाई, आधुनिक तकनीकों और बेहतर योजना और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर हमें खेती बाड़ी करनी चाहिए, जिससे हमारे किसान भाई अपनी खेती बाड़ी को अधिक लाभकारी बना सकते हैं। किसान भाइयों, हमें अपनी मिट्टी की जाँच करानी चाहिए, उससे हमें ये पता लगेगा कि हमारी मिट्टी में किस पोषक तत्व की आपूर्ति हमारे किसान भाइयों को करनी है। भैया, उर्वरकों का सही उपयोग किया जाना नितांत ही आवश्यक होता है, क्योंकि भैया जो हमारी फसलों में लागत आ रही है उस लागत को उर्वरकों के संतुलित उपयोग से कम किया जा सकता है। किसान भाइयों, हम अधिक लाभकारी अगर अपनी खेती को बनाना है तो मुख्यतः भैया उन्नत और प्रमाणित बीजों का चयन करना होगा, जो कि रोग रोधी किस्में हों और भाई जिनमें रोग कीट ना लगते हों। किसान भाइयों, अच्छी गुणवत्ता वाले बीज अधिक अंकुरण, रोग प्रतिरोधक क्षमता और बेहतर उपज देने की उनके अंदर गुणवत्ता होनी चाहिए। किसान भाइयों, समय पर हमें अपनी फसलों की बुआई करनी है, ताकि भाई हम समय से अपनी फसलों की सिंचाई निकाई गुड़ाई करके भाई फसलों की गुणवत्ता में सुधार कर सकें। किसान भाइयों, अब बात आती है कि जब हम कोई भी फसल अपने खेत में लगाते हैं तो भैया आजकल हमारे किसान भाइयों का सिंचाई पर अधिक खर्च होता है, क्योंकि वो सीधा पानी चला देते हैं। तो भाई हम जो है ऐसे सिंचाई के संयंत्र लगाने हैं, चाहे भैया ड्रिप इरिगेशन हो या स्प्रिंकलर सिंचाई विधि हो, क्योंकि हमें जल का भी बचाव करना है, साथ ही साथ भाई समय का भी बचाव करना है। किसान भाइयों, आप अपने खेतों में अपनी फसलों में ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं। ये भाई अत्याधुनिक तकनीकों में आती है और इससे भैया काफी जल की बचत भी होती है। किसान भाइयों, साथ ही साथ समय की बचत होती है, कम पानी में अधिक क्षेत्रफल की सिंचाई हो जाती है। किसान भाइयों, जैविक खाद, गोबर की खाद और हरी खाद का उपयोग हम अपने खेतों में करें तो भाई हम अपनी मिट्टी को लंबे समय तक उपजाऊ बना सकते हैं। किसान भाइयों, खेती को लाभकारी बनाने के लिए फसल विविधीकरण बहुत ही आवश्यक है। भाई केवल एक ही फसल पर निर्भर रहने के बजाय यदि हम फल, सब्जियां, दलहन, तिलहन, मसाले, औषधीय पौधों की खेती करें तो भाई हमारे जो है आय के नए नए स्रोत बनेंगे, और जैसा हमारे यहाँ बाजार डिमांड है उसी हिसाब से हम अपनी फसलों का उत्पादन करें। साथ ही साथ इसके अलावा भैया आप सह व्यवसाय में मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, डेयरी मुर्गी पालन कर सकते हैं, मत्स्य पालन कर सकते हैं और बकरी पालन जैसे सह व्यवसाय करके अपने खेती बाड़ी को अधिक लाभकारी बना सकते हैं। किसान भाइयों, आज के समय में हमारे किसान भाइयों के पास बड़े फोन हैं, जिससे हमारे किसान भाई बाजार की, मौसम की जानकारी लेकर अच्छा उत्पादन तकनीक, अच्छे बीजों की जानकारी ले सकते हैं, साथ ही साथ भाई अपनी उपज को मंडी तक ले जाकर अच्छा लाभ अपनी फसलों से कमा सकते हैं। किसान भाइयों, हमें वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना होगा खेती में, और भाई सह फसल अपनानी होगी। इंटरक्रॉपिंग बहुत ही जरूरी है, क्योंकि भाई जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है और जोत की भूमि हमारी कम होती जा रही है, तो भाई हमें इंटरक्रॉपिंग करके एक फसल के साथ दूसरी फसल लेकर, और भाई दूसरी फसल लेने से हमें उसके लिए अलग से किसी तरह की कोई भी एक्स्ट्रा भैया हमें चार्ज यानी के कोई उर्वरक या सिंचाई या अन्य कोई काम नहीं करना होगा, और भैया हमारी एक समय में दो फसलों का उत्पादन हमारे किसान भाइयों को मिल सकता है। भाइयों, वैज्ञानिक खेती करें, आधुनिक तकनीक, जल संरक्षण, फसल विविधीकरण और उचित विपणन को अपनाएं तो खेती न केवल अधिक उत्पादन देगी बल्कि भैया उस समय हमारे किसान भाइयों की आय भी बढ़ेगी। तो किसान भाइयों, आज तो हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं, कल फिर खेती और खेती से जुड़े अन्य विषयों के साथ अवश्य उपस्थित होंगे। किसान भाइयों, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। आज रात 9:30 पर कार्यक्रम पब्लिक स्पीक दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कार्यक्रम जिले की हलचल प्रातः 9:15 पर हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7:31 पर सुनिएगा सूचना और मनोरंजन पर आधारित कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। धरती गाती है कार्यक्रम में प्रातः 9:25 पर हम आपको सुनवाएंगे भीम सिंह के स्वर में रागनी। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का 1326वां भाग सुनवाया जाएगा दोपहर 11:30 पर। दिन में 12:05 पर शास्त्रीय संगीत में सुनिएगा पंडित मणिराम का गाया राग पटदीप। परिवार जगत में दोपहर 1:15 पर सुश्री निष्ठा धीमान से ज्योतिपाल की बातचीत का विषय होगा छात्रों के कैंपस प्लेसमेंट और कॉरपोरेट करियर के लिए टिप्स। दिन में 1:45 पर लोकधारा में हम आपको सुनवाएंगे रतन सिंह के गाए जौनसारी लोकगीत मेरा सपना उन्नत भारत। क्रम में संध्या 5:00 पेयजल समस्या को दूर करने के लिए शुरू की गई सरकारी योजनाओं में हर घर नल योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना पर चर्चा की जाएगी। शाम 5:15 पर युववाणी के कुछ खास है आज क्रम में चर्चा का विषय होगा हर दिन एक नया चेंज। बूझो तो जाने क्रम में फिल्म कुछ कुछ होता है से संबद्ध प्रश्न पूछा जाएगा। क्रैश कोर्स पैसा वसूल में जानकारी का विषय होगा डीप फेक क्या है। साथ ही श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित क्रम रहेगा गपशप अड्डा। कृषि जगत में संध्या 6:05 पर आप सुनेंगे जिला सहारनपुर के विकास खंड बलिया खेड़ी के गांव नंदी फिरोजपुर के सफल किसान श्री सेठ पाल सिंह से अंकित सैनी की बातचीत। बातचीत का विषय होगा सिंघाड़ा उत्पादन में अधिक लाभ। विविधा में शाम 6:45 पर सुश्री सुषमा अग्रवाल की वार्ता प्रसारित की जाएगी जिसका विषय होगा हिंदी साहित्य की वर्तमान स्थिति एवं प्रासंगिकता। संध्या 7:32 पर सुगम संगीत में आदित्य कुमार शर्मा की गजलें की गई गजलें और भजन सुनवाए जाएंगे। सवेरे 8:45 पर गोल्डन हिट्स कार्यक्रम में आप फिल्मी गीत सुनेंगे। इसके अलावा फिल्मी गीत आप सुनेंगे सुबह 10:00 गीत तुम्हारे कार्यक्रम में, सुबह 11:00 चित्रपट संगीत कार्यक्रम के तहत, दोपहर 12:30 पर मिड डे मेलोडी के अंतर्गत नई फिल्मों से कार्यक्रम में, दिन में 2:30 पर, शाम 6:55 पर छाया गीत के अंतर्गत, रात 8:00 गीत संध्या कार्यक्रम में, रात 8:30 पर एक ही फिल्म से क्रम के तहत भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में, रात 10:00 और रात 10:30 पर आपकी फरमाइश कार्यक्रम में फिल्मी गीत सुनवाए जाएंगे। ये थी कार्यक्रमों की जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों के संबंध में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।
2: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
3: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
2: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
3: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
2: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
3: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।

0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश भर में पौधरोपण महाभियान के तहत लगाए गए 35 करोड़ से अधिक पौधे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सरकार ने उठाए महत्वपूर्ण कदम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का करेंगे लोकार्पण। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, आगामी 22 जुलाई को श्री राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति पर होगा फैसला। और सरकार ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर आज पूरे देश में घोषित किया एक दिन का राष्ट्रीय शोक। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भर में पौधरोपण महाभियान एक पेड़ माह के नाम के तहत कल 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पवित्र त्रिवेणी के पौधों को रोपकर इस महाभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
2: यूपी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी वृद्धि हुई है। नए नए एक्सप्रेसवे, हाईवे, सड़कों का एक लंबा जाल बिछा है। नए नए उद्योग आए हैं। शहरीकरण में भी नई नई कॉलोनियां बनी हैं, बसी हैं। सबसे ज्यादा भौतिक विकास की गति को तेज करने में योगदान देने वाले राज्य के रूप में यूपी ने अपने आप को स्थापित किया है। लेकिन सबसे ज्यादा भौतिक विकास के साथ साथ पर्यावरण की दृष्टि से बड़े राज्यों में यूपी ने अपने बनाच्छादन को भी विस्तार देने में सफलता प्राप्त की है।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विकास वाटिका की स्थापना, वानिकी आधारित कैलेंडर का विमोचन और मौसी का पौधा लगाकर हरित उत्तर प्रदेश के संकल्प को भी आगे बढ़ाया। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को पौधे और चेक प्रदान किए। कार्यक्रम में प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना भी मौजूद थे। प्रदेश भर में चलाए गए पौधरोपण महाभियान के क्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल जनभवन परिसर में सफेद चंदन का पौधा रोपित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि सभी को प्रकृति के संरक्षण और स्वस्थ जीवन पद्धति को अपनाने का संकल्प लेना चाहिए।
3: कार्यक्रम के दौरान जन भवन की नक्षत्र वाटिका में कुल 29 चंदन के पौधे लगाए गए। पौधारोपण अभियान में जन भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ बालिका गृह की लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। राज्य ने इस वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा पौधे भी लगाए। उत्तर प्रदेश में इस साल अब तक कुल 40,29,00,000 पौधे लगाए जा चुके हैं। ये अभियान 27 विभागों के आपसी सहयोग से चलाया गया, जिसमें वन विभाग ने 15.5 करोड़ पौधे लगाने का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा किया। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रेशमा तिवारी।
1: कल प्रदेश भर में जन प्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने पौधरोपण अभियान में हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट।
4: पौधरोपण महाअभियान के तहत उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने बाराबंकी में कहा कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान पर्यावरण संरक्षण और माँ के सम्मान से जुड़ा महत्वपूर्ण जन अभियान है। आगरा के सिंगंद्रा में स्थानीय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने पौधारोपण कर इस अभियान की शुरुआत की। बागपत में केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी और केपी मलिक ने वृक्षारोपण किया। कानपुर नगर में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, देवरिया में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, इटावा में राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने पौधारोपण किया। समाचार कक्ष से फजल इनाम।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे। कल से वाहन इस एक्सप्रेसवे पर दौड़ने लगेंगे।
5: 63 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे लखनऊ और कानपुर के बीच की यात्रा

0: के समय को मौजूदा 3 घंटे से घटाकर केवल 45 मिनट कर देगा। इस एक्सप्रेसवे पर दुपहिया वाहनों को जाने की अनुमति नहीं होगी। यह भारत का पहला बैरियर मुक्त एक्सप्रेसवे भी बनेगा, जिसमें टोल प्लाजा से 500 मीटर पहले ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे और फास्टैग रीडर लगाए गए हैं, ताकि वाहनों को रोके बिना टोल टैक्स काटा जा सके। हादसे की स्थिति में AI सक्षम कैमरे तुरंत NHAI नियंत्रण कक्ष को सूचित कर देंगे। इस एक्सप्रेसवे को राष्ट्रीय राजमार्ग लखनऊ कानपुर उन्नाव लालगंज के साथ साथ गंगा एक्सप्रेसवे आउटर रिंग रोड से भी कनेक्ट किया गया है। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कल अयोध्या में बताया कि आगामी 22 जुलाई को श्री राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होगी, जिसमें मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO की नियुक्ति, समितियों और उप समितियों के भविष्य सहित कई प्रशासनिक विषयों पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि CEO ट्रस्ट के अधीन ही काम करेंगे।
2: मुख्य प्रबंधक अधिकारी होंगे तो वह ट्रस्ट के अधीन प्रबंधन का कार्य देखेंगे, और यह तो ट्रस्ट पर निर्भर करेगा कि वह किस प्रकार का डेलीगेशन CEO को करते हैं, और जैसा डेलीगेशन करेंगे वैसे ही फिर CEO जो है वो अपना स्टाफ वहां पर व्यवस्था के करेंगे, लेकिन सब कुछ ट्रस्ट के अधीन है।
1: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। यह योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। एक रिपोर्ट।
3: EPFO की एमनेस्टी योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: योजना का लाभ लेने के लिए पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन भेजना होगा। भारत सरकार ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। इस दौरान पूरे देश में उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। आगामी अंक के लिए सुझाव इस महीने की 24 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। प्रदेश में कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ से जुड़े मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि राज्य के तराई और पूर्वांचल के कई जिलों में 3 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से लेकर मध्यम वर्षा होने का अनुमान है।
4: मानसून का तराई बेल्ट में शिफ्ट हो गया है, जिसके वजह से उत्तर प्रदेश के जो तराई क्षेत्र हैं, जैसा कि लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, कुशीनगर, देवरिया में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। बाकी जगह की बात करें तो स्पेशली पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर बादलों की आवाजाही रहेगी तथा कुछ जगहों पर छिटपुट वर्षा की संभावना है। तो कुल मिला के सिलसिला 2 से 3 दिनों तक रहेगा।
1: इस बीच बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भर में पौधरोपण महाभियान के तहत लगाए गए 35 करोड़ से अधिक पौधे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सरकार ने उठाए महत्वपूर्ण कदम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का करेंगे लोकार्पण। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने कहा, आगामी 22 जुलाई को श्री राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति पर होगा फैसला। और सरकार ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर आज पूरे देश में घोषित किया एक दिन का राष्ट्रीय शोक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
5: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
6: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
7: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में तिथि विशेष पर जानकारी शामिल रहेगी। इसके अलावा चर्चा के विषय होंगे वर्षा जल संचयन कर आपदा को अवसर में बदलें। चर्चा की जाएगी घर से निकलते समय मौसम विभाग के पूर्वानुमान का रखें ध्यान। इसके अलावा चर्चा का विषय होगा बरसात के मौसम में फंगल इन्फेक्शन से बचें। कार्यक्रम में समाचार पत्रों की सुर्खियां शामिल रहेंगी और फिल्मी गीत भी सुनवाए जाएंगे। दोस्तों, जीवन की बिल्कुल शुरुआती जरूरतों में हवा, पानी और खाना बहुत अहम माना जाता है। हवा यानी ऑक्सीजन अगर न मिले तो कुछ मिनटों में ही जीवन समाप्त हो सकता है। इसके बाद आता है पानी। पानी के बगैर 2-3 दिन से ज्यादा जीवित नहीं रहा जा सकता। अन्य प्राणियों को छोड़कर अगर सिर्फ इंसान की बात की जाए तो पीने के अलावा भी पानी का इस्तेमाल नहाने धोने, खाना पकाने, खेती और औद्योगिक कामों में खूब होता है। वैसे देखा जाए तो पृथ्वी पर पानी की कोई कमी नहीं है। जमीन की सतह का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, जिसमें लगभग 97.5% पानी है जो कि खारा है और पीने योग्य नहीं है। पीने या उपयोग करने लायक मीठा पानी केवल 2.5% है। इसमें से भी अधिकांश पानी ग्लेशियरों और बर्फ के रूप में जमा है। मानव उपयोग के लिए वास्तव में उपलब्ध पानी पृथ्वी के कुल जल का 1% से भी कम है। इस मीठे पानी का लगभग 30% हिस्सा भूजल के रूप में मौजूद है। अब जरा सोचो, इंसानों की बेतहाशा बढ़ती हुई आबादी बिना किसी गौर व फिक्र के इस भूमिगत जल का जैसा दुरुपयोग कर रही है, उससे जलहीनता का संकट बहुत दूर नहीं लगता। इसके अलावा एथेनॉल के निर्माण में पानी का बेहिसाब उपयोग तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग के अत्यधिक विस्तार से डेटा सेंटरों में कूलिंग के लिए पानी की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। एक बड़े डेटा सेंटर में प्रतिदिन लाखों गैलन पानी की खपत होती है, जो एक छोटे शहर की आबादी के लिए

इस्तेमाल किए जाने वाले पानी के बराबर है। ये सारे तथ्य एक बड़ी आपदा का संकेत देते हैं। इस भीषण आपदा में वर्षा जल संचयन एक अवसर हो सकता है। अपनी छतों, खेतों और आसपास के खुले स्थानों के पानी को वैज्ञानिक तरीकों से सहेज कर हम न केवल जल संकट दूर कर सकते हैं, बल्कि बाढ़ और भूजल क्षरण जैसी समस्याओं से भी मुक्ति पा सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में कंक्रीट के कारण पानी जमीन में नहीं जा पाता और जल भराव का कारण बनता है। इसके लिए छतों के पानी को पाइप के जरिए फिल्टर करके जमीन के अंदर बने सोक पिट में डालें ताकि भूजल स्तर बढ़ सके। इसी तरह ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में खेतों का पानी बहकर बर्बाद हो जाता है, जिससे मिट्टी का कटाव भी होता है। इससे निपटने के लिए अपने खेतों में मेड़बंदी, फार्म, पॉन्ड या छोटे चेक डैम बनाएं। इससे पानी खेत में ही रुकता है, नमी बढ़ती है और फसल के लिए अतिरिक्त पानी भी मिल जाता है। जब हम बारिश के पानी को सहेजना शुरू करते हैं तो सड़कों और रिहायशी इलाकों में पानी का जमाव कम होता है, जिससे जलभराव की समस्या से भी मुक्ति मिल जाती है। तो आइए क्यों ना बरसात के इस मौसम में आपदा को अवसर में बदल डालें।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।

0: डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया दिमागी बुखार से बचेगी।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: साथियों, इस आधुनिक युग में जब सूचनाओं का प्रसार तीव्रता के नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है, तब हमें भी सजग होते रहते हुए इनका सदुपयोग अवश्य करना चाहिए। सुदूर अंतरिक्ष में भेजे गए उपग्रहों की मदद से मौसम से संबंधित जानकारी मौसम विभाग को लगातार प्राप्त होती रहती है। मौसम, बारिश, तूफान और तापमान से जुड़ी सटीक जानकारी भारत मौसम विज्ञान विभाग हमें देता है। यही जानकारी सूचना प्रणाली के माध्यम से जनता तक लगातार पहुंचती है। जहां हम सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक गतिविधियों में रुचि रखते हुए हर समय अपडेट रहते हैं, वहीं हमें भौगोलिक स्थितियों के पूर्वानुमानों को भी ध्यान में रखना चाहिए, ताकि अचानक हुए मौसम में बदलाव से हम मुश्किल में न पड़ जाएं। यदि हम मौसम विभाग के पूर्वानुमानों पर नज़र रखें तो अपनी यात्राओं की योजना बनाने में हमें मदद मिल सकती है। अचानक होने वाली वर्षा या बर्फबारी की पूर्व सूचना अगर प्राप्त हो जाती है तो हम यात्रा की कठिनाइयों से सरलता से निपट सकते हैं। खराब मौसम से संबंधित जानकारी अगर पहले ही मिल जाए तो आवश्यकता के अनुसार यात्रा के कार्यक्रम में बदलाव भी किया जा सकता है, या उस जानकारी के अनुरूप अपने आप को ढाला जा सकता है। आसपास और दूरस्थ मौसम का अपडेट हमारी मोबाइल स्क्रीन पर मौसम विभाग के माध्यम से लगातार प्रदर्शित होता रहता है। इन आधुनिक सेवाओं से अपने जीवन को सरल बनाने में हमें सहायता मिलती है और हम आने वाली दिक्कतों से बच जाते हैं। विज्ञान आधुनिक मानव के लिए वरदान बन चुका है। इन सूचनाओं के माध्यम से बड़ी आपदाओं से भी बचाव संभव हुआ है। श्रोताओं, प्राकृतिक जीवन चक्र बना रहे इसके लिए कुदरत ने मौसमों का प्रावधान किया है। हमारे देश की विविधता को समय समय पर मौसमों का बदलता क्रम पूर्णता प्रदान करता है। हर नए मौसम का आगमन हमें भाव विभोर कर देता है। यहाँ तक कि हमारे कई पर्व और त्यौहार भी किसी न किसी मौसम के आगमन के सूचक हुआ करते हैं। इस समय बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। याद रखिएगा और सावधान हो जाइएगा कि आनंदित कर देने वाले इस मौसम के कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं। हम सभी जानते हैं कि लगातार बढ़ती गर्मी के बाद बारिश सुकून लेकर आती है, लेकिन साथ में लाती है ढेर सारी बीमारियां और इन्फेक्शन का खतरा। बरसात के मौसम में भीगने से बचने के कितने ही साधन मौजूद क्यों ना हों, कभी ना कभी भीगने से बचना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए बारिश में भीगने की वजह से या फिर काफ़ी देर तक पानी में रहने के कारण फंगल इन्फेक्शन आपके शरीर में जगह बना लेता है। कई बार तो ये इन्फेक्शन काफ़ी तकलीफ देह होता है। ऐसे ही में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम बारिश के दिनों में खुद को इन्फेक्शन और फंगल जैसी बीमारियों से बचा कर रखें। ऐसी स्थिति में हमें कुछ उपाय करने होंगे, जैसे सूती या फैब्रिक वाले कपड़े पहने ताकि स्किन को सांस लेने का मौका मिल सके। ढीले ढाले कपड़े पहने जिससे हवा शरीर तक पहुंच सके। ऐसे कपड़े आपकी त्वचा को सूखा रखते हैं और इसे फंगस से बचाते हैं। नियमित रूप से अपने हाथ एंटी फंगल साबुन से धोएं, खासकर बारिश में भीगने के बाद ऐसा ज़रूर करें। अपने नाखूनों को छोटा और साफ रखें ताकि बारिश के इस मौसम में आप इन्फेक्शन से बच सकें।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए

0: आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
0: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
0: akashvaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
0: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: आइए श्रोताओं, अब जान लेते हैं आज के दिन हो चुकी प्रमुख घटनाओं के बारे में। आज सोमवार 13 जुलाई है, मौजूदा साल 2026 का 194वां दिन। श्रोताओं, कृष्णा सरीन, जिन्हें बॉलीवुड में बिना राय के नाम से जाना गया, 60 के दशक की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक थी। 1951 की फिल्म काली घटा से अपना फिल्मी करियर शुरू करने वाली बीना राय ने 18 वर्षों के अपने फिल्मी सफर में सिर्फ 28 फिल्मों में ही काम किया। 1960 में बनी फिल्म घूंघट के लिए उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। 1968 में बनी अपना घर अपनी कहानी उनकी अंतिम प्रदर्शित फिल्म थी। बीना राय का जन्म 13 जुलाई 1931 को हुआ था। भीष्म नारायण सिंह का जन्म 13 जुलाई 1933 को झारखंड के पलामू जिले के गांव उदयगढ़ में हुआ था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त भीष्म नारायण 1967 में पहली बार बिहार विधानसभा के लिए चुने गए। 1976 में वे राज्यसभा के लिए चुने गए। उन्होंने केंद्र में संसदीय कार्य, आवास, श्रम, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा संचार मंत्री के रूप में कार्य किया। कई राज्यों के राज्यपाल रहे भीष्म नारायण सिंह। अंतिम समय तक राजनीति और सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहे। रेडियो सुनने के शौकीन प्रकाश मेहरा 13 जुलाई 1939 को बिजनौर में जन्मे थे। एक दिन घर से 13 रुपए चुराकर सिनेमा में काम करने के लिए मुंबई आ पहुंचे। काम नहीं मिला तो बिजनौर के ही कल्लू नाई ने सहारा दिया। वहीं कुछ निर्माता निर्देशकों से पहचान हुई, फिर कुछ फिल्मों की कहानी लिखी। समाधि और मेला फिल्मों का निर्देशन किया। उसके बाद प्रकाश मेहरा फ्लॉप होते अमिताभ से फिल्म जंजीर को लेकर मिले और जंजीर की सफलता के बाद दोनों ही बॉलीवुड में स्थापित हो गए। हिंदी और अंग्रेजी की आधुनिक कहानीकार और उपन्यासकार सुनीता जैन का जन्म 13 जुलाई 1941 को अम्बाला में हुआ था। शिक्षा और साहित्य का पद्मश्री प्राप्त करने वाली सुनीता जैन अंग्रेजी और हिंदी में बेहतरीन कविताएं लिखती रही हैं। उनकी 70 से भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें 20 कविता संग्रह, हिंदी में 5 उपन्यास और 4 कहानी संग्रह शामिल हैं। सभी विधाओं में जितना अधिकार पूर्वक निरंतरता के साथ उन्होंने लिखा है, वो विस्मित करता है। भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 13 जुलाई 1974 को खेला था। यह ऐतिहासिक मैच इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स के हेडिंगले मैदान पर खेला गया था। इस मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए कप्तानी की थी अजीत वाडेकर ने। इस मुकाबले में भारतीय टीम को 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। प्रसिद्ध नर्तक और कोरियोग्राफर अस्ताद देबू गुजरात के नवसारी में 13 जुलाई 1947 को जन्मे थे। उन्होंने कथक के साथ कथकली के भी शास्त्रीय नृत्य रूपों का प्रशिक्षण प्राप्त किया और भारत में आधुनिक नृत्य के प्रणेता बने। उन्होंने कथक और कथकली को मिलाकर एक अनूठी नृत्य शैली पेश कर ख्याति बटोरी। उन्होंने 70 से ज्यादा देशों में एकल युगल और सामूहिक नृत्य प्रस्तुतियां इसी शैली में दी। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कोल्हापुर में जन्मी समाजशास्त्री और नारीवादी स्कॉलर शर्मिला रेगे पुणे विश्वविद्यालय और IIT बॉम्बे में समाजशास्त्र की प्रोफेसर रहीं। देश के नारीवादी विमर्श में उन्होंने जाति, वर्ग, लिंग, धर्म और कामुकता को केंद्र में लाने का काम किया। शर्मिला को सन 2006 में इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज मद्रास द्वारा नारीवादी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था। विद्यार्थियों के बीच बेहतरीन शिक्षा के रूप में जानी जाने वाली शर्मिला रेगे का 13 जुलाई 2013 को निधन हो गया था। लुधियाना के निवासी यशपाल शर्मा 1983 की विश्व चैंपियन भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य थे। विश्व कप के सेमीफाइनल में उन्होंने 61 रन की बेजोड़ पारी खेली थी, जिसके दम पर भारत फाइनल में पहुंचा था। 13 अक्टूबर 1978 को पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले यशपाल को उनके 7 साल के क्रिकेट करियर में कभी कोई गेंदबाज वनडे क्रिकेट में 0 पर आउट नहीं कर सका। 2021 को आज ही के दिन भारतीय क्रिकेट टीम के इस बल्लेबाज का निधन हुआ था। ये थी इतिहास के पन्नों में दर्ज आज की तिथि की प्रमुख घटनाएं। और अब एक दृष्टि सुर्खियों पर डाल लेते हैं। फारस की खाड़ी के एक छोटे से देश कतर के पूर्व शासक शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख अहमद को एक दूरदर्शी नेता बताते हुए उनके निधन पर दुख प्रकट किया है। इस आशा का समाचार दैनिक अमर उजाला ने अपने देश दुनिया पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। समाचार में बताया गया है कि भारत सरकार ने शेख हमद के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए 13 जुलाई को एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। एक पेड़ मां के नाम। सिर्फ पौधे लगाने का सरकारी अभियान नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा, हरियाली और जल संरक्षण का सामाजिक संकल्प बन गया। इस कार्यक्रम पर विस्तृत समाचार देते हुए दैनिक जागरण ने सुर्खी लगाई है, पूरा हुआ हरियाली का महासंकल्प, प्रदेश में रोपे गए 35.27 करोड़ पौधे। दैनिक हिंदुस्तान में प्रकाशित समाचार के अनुसार भारतीय महिला क्रिकेटर यास्तिका भाटिया ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। यास्तिका क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान में शतक जड़ने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार, पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में होंगे लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के तीन प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए और यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स खिताब बरकरार रखा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे।
4: पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 राज्य विधानसभा ने 29 जून को पारित किया था। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद यह विधेयक अब कानून बन गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत असामाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति या भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की संभावना वाले व्यक्ति को अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। निवारक हिरासत के आदेश राज्य सरकार, पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या सरकार द्वारा अधिकृत DIG रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किए जा सकते हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिस कर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट।
5: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण में एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
3: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
6: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय

0: राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन करते हुए इन भारतीय छात्रों ने देश को गौरवान्वित किया है। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत पिंडाले, नई दिल्ली के रिशद गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने 87 देशों के 381 प्रतिभागियों के बीच रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि भारत के ओलंपियाड कार्यक्रम की सुदृढ़ता को रेखांकित करती है, जिसका नेतृत्व टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के राष्ट्रीय केंद्र होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा किया जाता है। पिछले एक दशक में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक भारतीय प्रतिभागी ने पोडियम फिनिश में जगह बनाई है। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भारत 2022 के बाद दूसरी बार इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच की मेजबानी कर रहा है।
2: इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लोकार्पण करेंगे, जो AI आधारित वित्तीय अपराध जांच, मीडिया फोरेंसिक और क्राइम सीन मैनेजमेंट पर केंद्रित है। इसके साथ ही ऑनलाइन साक्ष्य जुटाने में सक्षम एशिया की पहली स्वदेशी साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस सम्मेलन में 30 से अधिक वैश्विक कंपनियों की अत्याधुनिक तकनीकों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसके बाद दोपहर को सहकार से समृद्धि का संकल्प आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्री दहगाम में कृषि उपज मंडी समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नवनिर्मित सब यार्ड का उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: भोपाल में आज MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के विजन को भी साझा करेंगे। कॉन्क्लेव में देश विदेश की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, स्टार्टअप, उद्योग संगठनों और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6 लेन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: यह सेवा पर्यटन और सिविल विमानन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से चलाई जाएगी। आज से ही आम लोग इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। इसके तहत राज्य सरकार के अनुदान से अब पर्यटक पटना जॉय राइड के लिए 2100 रूपए, राजगीर के लिए 4000 रूपए, वाल्मीकि नगर के लिए 5000 रूपए और कैमूर के लिए 6000 रूपए में टिकट बुक कर सकते हैं। यह सेवा 18 जुलाई से प्रत्येक शनिवार और रविवार को शुरू होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सविता पारीक।
0: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र में वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य हमले शुरू किए हैं। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले राष्ट्रपति के निर्देश पर ईरानी सेना के जहाजों पर हमले के जवाब में किए गए हैं। खाड़ी क्षेत्रों में पहले से ही तनाव व्याप्त था और इन ताजा हमलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का कल निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के उत्तरी पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार के अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश और अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में राष्ट्रीय जल मिशन की अपर सचिव और मिशन निदेशक अर्चना वर्मा के साथ जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
6: धन्यवाद विशाल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जहाजों की आवाजाही को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच फिर सैन्य टकराव आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, जंग फिर शुरू, हॉर्मूज बंद। अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, जॉर्डन और यूएई को बनाया निशाना। वहीं नव भारत टाइम्स ने लिखा है, ओमान के पास व्यापारी जहाज पर हमला, 10 भारतीय बचाए गए, एक लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, क्षेत्र में जहाजों को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री 30 दिन जेल में रहे तो होना चाहिए निलंबन, जनसत्ता सहित कई अखबारों में है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने की सिफारिश, मानसून सत्र में पेश हो सकती है समिति की रिपोर्ट। नए वोटर के लिए माता पिता का एसआईआर ब्यौरा अनिवार्य, दैनिक जागरण के अनुसार मतदाता सूची में पहली बार नाम जुड़वाने वाले नए मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने लागू किया नया प्रावधान। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया न्यूजीलैंड यात्रा पर अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, वैश्विक भू राजनीतिक संकटों के दौर में दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय केवल द्विपक्षीय रिश्तों का विस्तार नहीं है, बल्कि ये तेजी से बदल रहे हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई भू राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं की स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी है। आने वाला दशक दोनों देशों के संबंधों को हिंद प्रशांत के सबसे सशक्त और भरोसेमंद साझेदारियों में बदल सकता है। उत्तराखंड के गांवों से बढ़ते पलायन पर राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, देव भूमि से रूठे देव, पर्यटकों को बुला रहे पहाड़ पर अपने लोगों से टूट रहा नाता, राज्य के 15% गांव अब निर्जन, पलायन करने में युवा आगे।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित 2 नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। 2 न्यू एंटी क्राइम लॉज पास्ड बाय वेस्ट बंगाल असेंबली कम इनटू फोर्स इन द स्टेट टुडे। ISRO successfully carries out 3 major tests of Gaganyaan crew module systems. 5 Indian students win gold medals at 56th International Physics Olympiad 2026. India secures world number one rank jointly with other countries. IMD forecasts heavy rainfall over northeast India, West Bengal and Bihar during next 2 to 3 days. US launches fresh strikes on Iran. And Yannick Sinner beats Alexander Zverev to retain Wimbledon men's singles title. And now the news in detail. In West Bengal, two new anti-crime laws come into force in the state today. State Governor Arun Ravi has given his assent to the bill related to the control of anti-social activities. In June this year, the Assembly passed the stringent anti-crime bills, the West Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill 2026 and the West Bengal Maintenance of Public Order Amendment Bill 2026. More from our correspondent.
8: Under the West Bengal Public Safety and Control of Antisocial Activities Act 2026, a person involved in antisocial activities or one who is likely to engage in such activities in the future may be placed under preventive detention. Such a person can be detained for a maximum period of 1 year. The state government says the new law will enable quicker and stricter action against antisocial activities, riots, attacks on police personnel and organized crime. Chief Minister Shubhendu Odhikari has earlier stated that violence or disruption of public order in the name of protest will not be tolerated. He also expressed hope that the new law will play an important role in ensuring the safety and security of women and children. Sandeep Andashgupta, Akashvani News, Kolkata.
7: The Indian Space Research Organization says it has successfully carried out 3 major tests of the Gaganyaan crew module systems. More from a correspondent.
9: The first test pertained to ensuring an upright position for the crew module after splashdown in the sea, considered one of the most important crew safety requirements. To do this, a stored cold gas-based uprighting system was developed and tested. The second test involved examining the separation of the umbilical mechanism that serves as a link between the crew module, where astronauts live, and the service module, which provides power and propulsion. The third test validated the structural integrity of the crew module during the apex cover separation event. Yashasvi Kiryal, Akashvani News, Delhi.
7: 5 Indian students have won gold medals at the 56th International Physics Olympiad 2026, which was held at Bucaramanga in Colombia from 4th to 12th of this month. With the exceptional performance, India reaffirmed the growing stature in science education and excellence at the international level. We have a report.
1: Delivering an extraordinary performance at the 56th International Physics Olympiad, these young physicists have brought immense pride to the nation. The gold medal winners are Kanishk Jain from Pune, Siddhesh Anand Bendale from Indore, Rishit Garg from New Delhi, Shrey Suraya from Mumbai and Swarit Joshi from Ahmedabad. With this achievement, India secured the first position jointly with Russia, China, Kazakhstan, South Korea and Taiwan among 31 students from 87 countries. The achievement reflects the strength of India's Olympiad program, spearheaded by the Homi Bhabha Center for Science Education, which is a national center of the Tata Institute of Fundamental Research. With Anand Kumar, Swamya Sharan for Akashwani News, Delhi.
7: Union Home Minister Amit Shah is scheduled to attend the inaugural ceremony of the 11th Interpol Digital Forensic Expert Group meeting, alongside the first International Investigators Crime Competition and Summit at the National Forensic Sciences University campus in Gandhinagar today. Our correspondent reports that the prestigious global forum will have participation from top dignitaries, including Chief Minister Bhupendra Patel and law enforcement delegates from 47 countries.
2: During the event, Mr. Shah will unveil 3 pioneering center of excellence focusing on AI-powered financial crime investigation, crime scene management, and India's first media forensic center. He will also launch Asia's first indigenous cyber forensic investigation van, a Make in India mobile laboratory capable of real-time on-site evidence recovery. A major highlight of this event is the high-tech exhibition featuring cutting-edge cybersecurity tools from over 30 global giants, including Google and Cellebrite. Aparna Khunt, Akashwani News, Ahmedabad.
7: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Defense Minister Rajnath Singh, Union Minister of Road Transport and Highways Nitin Gadkari, along with Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, will inaugurate the Lucknow-Kanpur Expressway today afternoon. They will inspect the expressway and inaugurate it at kilometer 49 in Unnao. A report.
4: 63 kilometer long, 6-lane Lucknow-Kanpur Expressway with India's second longest elevated corridor is also country's first expressway built with automated and intelligent machine-guided construction technology. Equipped with AI-based speed enforcement, emergency call boxes at every 2 kilometers and two integrated 24/7 control rooms, the expressway is designed for speeds of up to 120 km per hour and is expected to reduce travel time between Lucknow and Kanpur to just 35 to 40 minutes. A car journey between the two cities will cost ₹275 and two-wheelers are not allowed on it. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
7: Efforts to accelerate investment in Madhya Pradesh is gathering pace as a major event is being held in Bhopal today. It will attract leading technology companies, investors, startups, industry bodies and educational institutions from India and abroad. Our correspondent has filed this report.
3: The MP Tech Growth Conclave 3.0 will be held in Bhopal today. Chief Minister Dr. Mohan Yadav will inaugurate the event. The main focus of the conclave is to promote investment in global capability centers, data centers and the semiconductor sector. The Chief Minister will also share the state government's vision for technology-based industrial development. Abhinav Goyal, Akashwani News, Bhopal.
7: In Bihar, heli and air tourism services are being launched today. Chief Minister Samrat Chaudhary will inaugurate it from Patna. In the first phase, the destinations included under the initiative are Valmiki Nagar in West Champaran district, Ma Mundeshwari in Kaimur district and Rajgir in Nalanda district. More from a correspondent.
5: The service will be operated jointly by the Department of Tourism and Department of Civil Aviation. From today, people can make bookings online. Under the scheme, with financial support from the state government, tourists can book tickets at subsidized rates. The state government will provide a subsidy of up to ₹15,422 per ticket. The helicopter tourism service will commence on 18th July and will operate every Saturday and Sunday. Savita Parikh, Akashwani News, Patna.
7: The India Meteorological Department has forecast isolated heavy to very heavy rainfall over northeast India, West Bengal and Bihar during next 2 to 3 days and isolated heavy falls over east Uttar Pradesh during 4 to 5 days. Fairly widespread to widespread rainfall is likely over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura till the 18th of July. The weatherman said subdued rainfall activity is likely over the plains of northwest, west central and over south peninsular India during next 6 to 7 days. The United States has launched a fresh round of military strikes against Iran. U.S. Central Command CENTCOM said the operation is intended to further degrade Tehran's ability to target civilian mariners and commercial vessels transiting the Strait of Hormuz. In a post on X, CENTCOM said the strikes were carried out on the direction of the commander-in-chief to hold the Iranian forces accountable. The latest strikes come amid heightened tensions in the Gulf region. According to Iran's press TV, three explosions were heard in the southern Iranian cities of Jask, Bandar Abbas and Sirik following the U.S. strikes. U.S. President Donald Trump asserted that Strait of Hormuz remains open to commercial traffic, dismissing Iranian claims of control. He also signaled a complete collapse of recent diplomatic efforts with Iran, revealing that a tentative agreement with Tehran has been shattered by Iranian military strike against commercial vessel. Meanwhile, New Delhi has reiterated its call for immediate de-escalation of tensions in West Asia region after attack on a commercial ship GFS Galaxy carrying Indian crew members off the coast of Oman yesterday. Condemning the attack, the External Affairs Ministry said in a statement that out of 11 Indian nationals on board, 10 have been rescued so far, while one is reportedly missing. The ministry said the Indian embassy in Oman is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. In Thailand, at least 27 people have been killed in a fire that tore through a bar in Bangkok. The deceased include 9 men and 18 women. More than 60 people are being treated in hospital. Firefighters were called to the scene just after midnight last night and discovered patrons fleeing through the flame-enveloped front door of the venue. On to sports. In tennis, top seed Italy's Jannik Sinner retained his Wimbledon men's singles title, beating second seed Germany's Alexander Zverev 6-7-7, 7-6-2, 6-3, 6-4 in the final at the All England Club London

रवि के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे जोगी फिल्म का गीत। आवाजें थी मोहम्मद रफी और साथियों की, गीत शकील बदायूनी ने लिखा था।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

गोपी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण और संगीत था कल्याण जी आनंद जी का।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम,
2: और ये
3: मेरी गुड़िया के
4: नाम। दादी आपके नाम?
5: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो
4: क्या
5: आरबीआई कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आशा भोसले के स्वर में आप सुन रहे थे साहिर लुधियानवी का लिखा गीत। रवि ने इस गीत की धुन तैयार की थी नील कमल फिल्म के लिए।

ظالم ایک ہستی ہے، مذہب ظلم پرستی ہے، یہ دنیا

यहूदी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा था और धुन थी शंकर जयकिशन की। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं बंदिनी फिल्म का गीत। सचिन देव बर्मन की आवाज़ है और संगीत भी उन्हीं का है। गीतकार हैं शैलेंद्र।

बंधिनी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सचिन देव बर्मन की आवाज़ में। इसी के साथ फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर। कुछ ही पलों में कार्यक्रम जिले की हलचल हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बलिया और फिरोजाबाद जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बलिया जिले की हलचल, आलेख और स्वर है विनय कुमार का।
1: बलिया जनपद में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में 8 जुलाई 2026 को जननायक चंद्रशेखर स्मृति दिवस के अवसर पर कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र कुमार शुक्ला, विश्वविद्यालय के अधिकारी, प्राध्यापकों एवं विद्यार्थियों ने जननायक चंद्रशेखर की स्मृतियों को नमन किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस अवसर पर चंद्रशेखर नीति अध्ययन केंद्र एवं शोध पीठ के तत्वाधान में लोक स्मृतियों में चंद्रशेखर विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र कुमार शुक्ल ने कहा कि चंद्रशेखर जी ने भारतीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। चंद्रशेखर जी ने जो संकल्प लिया, दृढ़ इच्छा शक्ति से उसे पूर्ण किया। चंद्रशेखर जी के व्यक्तित्व से विद्यार्थियों को सीख लेनी चाहिए और अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण के भाव से कार्य करना चाहिए। संपूर्ण जनपद में अनेक जगह कार्यक्रम कर श्रद्धांजलि दी गयी। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अनुराधा राय ने बताया कि
2: चंद्रशेखर जी के साथ मेरी बचपन की एक अमिट स्मृति अंकित है। जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाई के दौरान हमें चंद्रशेखर जी को सुनने और उनसे मिलने के लिए पास के गांव में ले जाया गया। गांव के लोगों की समस्या को सुनकर बेहद ही सरल और स्वाभाविक भोजपुरी में उन्होंने कहा कि आपकी समस्या का निवारण निश्चित होगा। ना कोई बड़े वादे, ना ऊंचा मंच, ना महंगे वस्त्र, एक सामान्य भारतीय व्यक्ति की प्रतिछाया चंद्रशेखर जी।
1: बलिया जिले में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में 29 जुलाई 2026 को प्रस्तावित दीक्षांत समारोह में उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल के संभावित आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र कुमार शुक्ल के साथ जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह, पुलिस अधीक्षक ओम वीर सिंह एवं मुख्य विकास अधिकारी ओजस्वी राज ने विश्वविद्यालय परिसर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विश्वविद्यालय में दीक्षांत से पहले अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा 10 गांव गोद लिया गया है, जिसमें गांव के शिक्षा, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए समाज कार्य विभाग द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन समय समय पर किया जाता है। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग के विभागाध्यक्ष एवं निदेशक शैक्षणिक डॉक्टर पुष्पा मिश्रा ने बताया कि
3: जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के अष्टम दीक्षांत समारोह के उपलक्ष्य में समाज कार्य विभाग द्वारा 7 जुलाई से 10 जुलाई तक विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए गांवों में प्राथमिक, उच्चतर प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए चित्रकला, भाषण प्रतियोगिता एवं कहानी लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बच्चों में रचनात्मक अभिव्यक्ति की क्षमता, भाषाई दक्षता, आत्मविश्वास तथा देशभक्ति की भावना का विकास करना था।
1: बलिया में दानवीर भामाशाह की जयंती विकास भवन सभागार में राज्य कर विभाग द्वारा व्यापारी कल्याण दिवस आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के परिवहन मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं दानवीर भामाशाह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक गीत संगीत की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। साथ ही भामाशाह के चित्रों एवं लघु फिल्म के माध्यम से उनके जीवन, व्यक्तित्व और राष्ट्र सेवा में दिए गए योगदान को उपस्थित लोगों के सामने प्रदर्शित किया गया। मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने जिले के 10 प्रमुख करदाताओं को भामाशाह सम्मान से सम्मानित किया। इसके अलावा विभिन्न नए उद्यमियों एवं करदाताओं को भी सम्मानित कर उनके योगदान की सराहना की। कार्यक्रम में बलिया के उद्यमियों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP के तहत सत्तू और बिंदी के आकर्षक स्टॉल लगाए। वहीं खादी ग्राम उद्योग विभाग एवं सूचना विभाग द्वारा भी प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें विभागीय योजनाओं और उत्पादों की जानकारी दी गई। बलिया जनपद में संचारी रोगों की रोकथाम एवं जन जागरूकता के उद्देश्य से संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया गया। जिला अस्पताल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभय नारायण राय एवं कार्यवाहक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर संतोष चौधरी ने अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी को संचारी रोगों से बचाव की शपथ दिलाई गई तथा जन जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभय नारायण राय ने बताया कि अभियान के दौरान डेंगू मलेरिया दिमागी बुखार समेत अन्य संचारी रोगों के लक्षण वाले मरीजों की पहचान और समय पर उपचार पर विशेष जोर दिया जाएगा। वेक्टर वार डिजीज के नोडल अधिकारी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने बताया कि 31 जुलाई तक चलने वाले दस्तक अभियान के तहत आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर ILI इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस फाइलेरिया कालाजार कुष्ठ रोग सहित अन्य संचारी रोगों के बचाव के प्रति जागरूक करेंगे।
0: बलिया जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं फिरोजाबाद जिले की हलचल। आलेख और स्वर है लियाकत अली का।
4: फिरोजाबाद में जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर बब्बू सारंग ने घटना से 40 दिन के अंदर ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसका सभी ने सम्मान करते हुए तारीफ की जा रही है। 1.5 वर्ष के मासूम की हत्या करने वाले को दोषी ठहराते हुए सजाए मौत की सजा खुले न्यायालय में सुनाई। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव प्रियदर्शी ने बताया कि 30 मई 2026 को दिन दहाड़े 2:30 बजे जितेंद्र पाठक और विराज ने फिरोजाबाद के थाना शुकाहबाद क्षेत्र यादव कॉलोनी में मासूम बच्चे की हत्या कर दी थी। उन्होंने बताया कि ये घटना जिले में चर्चा का विषय बनी हुई थी। पुलिस ने मात्र 6 दिन में आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया और मात्र 1 माह 9 दिन में न्यायालय ने फैसला आ गया। DGC राजीव प्रियदर्शी ने बताया कि
5: 1.5 वर्ष के बच्चे इस विराज अभियुक्त जो है निर्मम हत्या की थी। DM साहब जनपद फिरोजाबाद और SSP साहब विशेष निर्देशन था, उसी के तहत माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने सारे गवाह और बहस के उपरांत उस विराज को मृत्यु दंड की सजा से मुकर्रर किया है।
4: फिरोजाबाद जिले में तेज आंधी और वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और अलग अलग हादसों में जन एवं पशु हानि हुई है। पिछले दिनों फरियाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चिड़रई गांव में तेज आंधी और तूफान के दौरान हुए एक दर्दनाक हादसे में 4 ग्रामीणों की असमय मृत्यु हो गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के अनुसार मौसम अचानक खराब होने और तेज हवा चलने के कारण गाँव के पास ही स्थित एक पुराना और विशाल पेड़ जड़ से उखड़ कर जमीन पर जा गिरा। जिस समय ये घटना घटी उस समय पेड़ के नीचे से गुजर रहे एक ऑटो और एक मोटरसाइकिल चपेट में आ गए। इस दुखद हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम पसर गया था। प्रशासन की ओर से मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया गया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के साथ पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है। फिरोजाबाद में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। शासन द्वारा दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं के तहत बच्चों को सरकारी स्कूलों में प्रवेश दिए जा रहे हैं और निजी स्कूलों में भी ऑनलाइन आवेदन करने की पर फ्री शिक्षा दिए जाने का काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बच्चों को शासन द्वारा पैसा भी उपलब्ध कराया जा रहा है। शासन की मंशा है कि कोई भी शिक्षा से वंचित नहीं रहे और गरीब मजदूर के बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसी राह पर चलते हुए फिरोजाबाद के जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार परिहार शासन के आदेशों का पालन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि
6: सरकारी स्कूल नजदीक नहीं होते हैं तो प्राइवेट स्कूल में भी बच्चे हमारे एडमिशन ले सकते हैं। उसके तहत सरकार ने जो है RTE एक्ट के तहत प्रावधान किया हुआ है। जो जनरल के लोग हैं 1 लाख से इनकम कम है वो, साथ ही साथ जैसे SC ST के लोग हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए जो है मार्च में फॉर्म अप्लाई करने के लिए आता है और अप्लाई करके वो लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही साथ उसके लिए जो बच्चे वहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो RTE एक्ट के तहत जो है गवर्नमेंट उसके लिए सब्सिडाइज जो है उन्हीं के खाते में प्रोवाइड करा देती है।
4: फिरोजाबाद में स्वशासकीय राज चिकित्सा महाविद्यालय में डॉक्टर योगेश कुमार गोयल प्रधानाचार्य के मार्गदर्शन में आम जनमानस को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयासों को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। यहां किडनी रोगियों को बेहतर त्वरित और निःशुल्क उपचार प्रदान करने के उद्देश्य से लगातार स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसी जन कल्याणकारी क्रम में चिकित्सालय परिसर में डायलिसिस विभाग में मुख्य अतिथि सदर विधायक मनीष ससिया द्वारा 5 नई आधुनिक डायलिसिस मशीनों का लोकार्पण किया गया। इस नए विस्तार के बाद अब फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस विभाग में कुल मशीनों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में 5 नई डायलिसिस मशीनें लगने से अब गरीब मरीजों को भी इलाज के लिए आगरा या दिल्ली जैसे बड़े शहरों में दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। 25 मशीनों की इस संयुक्त क्षमता से मरीजों को समय पर विश्व स्तरीय इलाज पूरी तरह निःशुल्क मिलेगा। मशीनों की संख्या बढ़ने से अब प्रतिदिन डायलिसिस कराने वाले किडनी रोगियों की क्षमता में भारी इजाफा होगा, जिससे स्थानीय और ग्रामीण क्षेत्र के जरूरतमंद मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी।
0: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज़ पर। प्रातः के 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं भीम सिंह के स्वर में रागनी।

0: आकाशवाणी नजीबाबाद से प्रत्येक मंगलवार को
1: शाम 6:05 पर कृषि जगत कार्यक्रम में सुनिए
0: गुणवत्ता युक्त बासमती धान उत्पादन हेतु
1: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा
0: साप्ताहिक आयोजित कार्यक्रम
1: बासमती

0: दिमाग की बुखार से बचने की।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं भीम सिंह के स्वर में रागनी।

पधारे शबरी के घर राम। ये रागनी आप सुन रहे थे भीम सिंह के स्वर में। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं इन्हीं की आवाज में ये रागनी।

भीम सिंह की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये रागनी। इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर। सुबह के 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत है आपके अनुरोध पत्रों और व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का यह पहला गीत।

0: मन्ना डे और साथियों की आवाज़ों में आप सुन रहे थे सीमा फिल्म का गीत। शब्द रचना थी शैलेंद्र की और संगीत रचना शंकर जयकिशन की थी। इस गीत को पसंद करते थे आप सब श्रोता लक्ष्मीबाई अनाज मंडी रोड वंदना नगर इंदौर से, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, संजनापरी खर्चे, मालती स्वाति प्रयाग चौधरी और उनके परिवार के सदस्य।
1: और श्रोताओं, इसी गीत को सुनने की फरमाइश कर रहे थे मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोदपुरी, वीपी, राजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, कैलाशपुरी, नीलमपुरी, रामा और पाली।
0: मेन बाजार नेटोर से फरमाइश करते थे एम जुल्फकार राही, एम मुमताज राही, एम जुनैद राही, अल सबा गुल, गुल फिशारानी, मोहम्मद अयान फरीदी और मोहम्मद कैफ फरीदी।
1: इसी गीत को सुनने की फरमाइश की थी राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार, बिट्टू कुमार मित्रगण और परिवारजनों ने।
0: पसंद किया था इस गीत को पंजू सराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी, सईद मुख्तार अंसारी और असद अंसारी ने।
1: शाही मार्केट सिहारा जिला बिजनौर से इसी गीत को पसंद करने वाले हैं आशिफ चौधरी, बेगम रिहाना, आराफा चौधरी, अदीप चौधरी और कादिर चौधरी।
0: दौलतबाग मुरादाबाद से फरमाइश करते थे जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी और साइमा नदीम।
1: ग्राम पोस्ट भंडरा थाना श्रीनगर जिला महोबा उत्तर प्रदेश से भारत रैकवार अभिषेक, गोलू, गोविंद, हरकिशन, नैन्सी, प्रियांशु, कुसुम और समस्त रैकवार परिवार ने भी इसी गीत को सुनने की फरमाइश की थी।
0: स्टार रेडियो श्रोता संघ रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से अनुरोध करते थे जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार।
1: इसी गीत को सुनने की फरमाइश मैसेज के माध्यम से हमारे पास भेजी है दतरंगी के भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीत वर्मा और रुद्र वर्मा ने।

0: बम्बई का बाबू, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। बोल मजरू सुल्तानपुरी के थे और धुन थी सचिन देव बर्मन की। इस गीत को पसंद करते थे बोर्ड सरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांश साहू।
1: इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश मैसेज के माध्यम से हमारे पास भेजी थी नई दिल्ली टैगोर गार्डन से रविंद्र सिंह छाबड़ा ने।
0: ये पत्र था पुराना तालाब डुमराव से। अनुरोध करते थे वलीउल्लाह अंसारी, अस्मा नाज अंसारी और उनकी बेटी सोनम। सारिमपुर बक्सर से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा अंसारी और मोहम्मद समी अंसारी।
1: बम्बई का बाबू फिल्म का गीत सुनने की फरमाइश की थी नाला सोपारा बम्बई से मोहम्मद आसिफ शेख, बेगम रूमा, माहिरा शेख, नौमान शेख, सुलेमान शेख और शेख मोहम्मद कलीम ने।
0: इंदिरा विहार दिल्ली से आप थे डब्लू अंसारी और बेबी अंसारी। छठिया पोखरा डुमराव से फरमाइश करने वाले श्रोता थे लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती।
1: मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवार, नजमा बेगम नाज और भाभी सरिता गौतम ने फरमाइश की थी रेलवे रोड गंज डुंडवारा से।
0: डाबर तालाब लोनी से रजा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन, मरियम और बुशरा ने भी इसी गीत के लिए अनुरोध किया था।
1: और इसी गीत को सुनने की फरमाइश लिखकर भेजी थी मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर ने मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से।
0: कटोरा तालाब डुमराव से आप थे जलील अंसारी, वलीमा डोमन और उनके परिवार के सदस्य।
1: उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश ने भी इसी गीत को सुनने की फरमाइश की थी।
0: ग्राम बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आप थे योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज नीलेश और अंजलि सारवा।
1: मगनपुर झारखंड से अब्बास आलम, अहमद अली और लाडली ने भी इसी गीत को सुनने की फरमाइश मैसेज के माध्यम से हमारे पास भेजी थी।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे अपनापन फिल्म का गीत। युगल स्वर था लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने। पसंद किया था गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा राठौड़ ने।
1: और फरमाइश लिखकर भेजी थी इसी गीत को सुनने के लिए कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा और सीटी दीवाना ने।
0: शहबाजपुर कलां से अनुरोध किया था शहबाजपुर कलां कस्बा पाकबाड़ा से अनुरोध किया था मज़ाहिर हुसैन अंसारी, बेगम रईसा नाज, मुजक्किर बाबू, मजहर आसिम और सुमैया महक ने।
1: इसी गीत को सुनने की फरमाइश की थी दाऊद सराय सहारनपुर से अनवर साबरी, शन्नो साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी और जरीफ अंसारी ने।
0: नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसौर।

0: बलवीर सिंह ने।
1: कोकिलवाड़ा औराई जिला मुजफ्फरपुर से आप थे मोहम्मद फैसल शेख और नुसरत जहानाज। शेख टोली समस्तीपुर से फरमाइश करते थे मोहम्मद शाहनवाज परवेज और मुसरत जहानाज।
0: मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतमाल मध्य प्रदेश से जगदीश धाकड़, नाइमा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़ ने भी इसी गीत को सुनने की फरमाइश की थी।
1: अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी गव्य और सुच्चा पाठक ने भी इसी गीत को पसंद किया था।
0: पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत ने भी यही गीत सुनने की फरमाइश की थी।
1: कंवर कॉलोनी बड़वा से आप थे प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति और शिवानी श्रीमाली।
0: नगर पंचायत बढ़ापुर बिजनौर उत्तर प्रदेश से एम ताहिर और एम उजैफ ने भी इसी गीत को सुनने की फरमाइश लिखकर भेजी थी।

0: जेलर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा था और धुन थी मदन मोहन की। इस गीत को पसंद करते थे हमारे ये सब श्रोता। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार के सदस्यों में मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक्करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता।
1: सप्तरंग श्रोता परिवार।

0: कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश दले और जीविका दले।
1: कटरा चांद खां मौर्य मंदिरी वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से फरमाइश करते थे अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, वेदराम मौर्य, कैलाश मौर्य, मौर्य सुनील, खुशबू एरोही, स्वाति और मौर्य परिवार के अन्य सभी सदस्य
0: सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना, लव्या आरव खुराना और एस के पप्पी ने MLB रोड ग्वालियर से फरमाइश इसी गीत के लिए लिखकर भेजी थी।
1: बीड़ शहर से आप थे प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया, केशव पटेल और राम निवास अग्रवाल।
0: अहमदपुर खैगांव खंडवा से कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली, समर फूलमाली और वैदिका फूलमाली ने भी यही गीत सुनने की फरमाइश की थी।
1: रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, दत्तरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चर डोंगरी पिपरिया से फरमाइश करने वाले श्रोता थे दुर्गा राम साहू।
0: दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा ने भी इसी गीत को सुनने की फरमाइश की थी।
1: ये पत्र आया था ड्राइवर कॉलोनी निजामाबाद से, फरमाइश करते थे शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, शेख वहाब और नूर जहां बानो। बदलापुर मुंबई से आप थे बंटी गवहाणकर और सुभाष पोतेवार।
0: कस्बा गुन्नौर उत्तर प्रदेश से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शहनाज, शरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी ने भी इसी गीत को सुनने की फरमाइश की थी।

0: चौकीदार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा था और धुन थी मदन मोहन की। इस गीत के लिए फरमाइश की थी दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी, जैबुन्नसा बेगम, अकरम सैफी और आबाद खान ने।
1: गांव जाखौद राजस्थान से यही गीत सुनने की फरमाइश कर रहे थे शंभूदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदर लाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और पूजा खटक।
0: आदर्श नगर मलोट से आप थे राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा।
1: पप्पू श्रोता क्लब मेन रोड फारबिसगंज बिहार से प्रकाश कुमार पप्पू, नैतिक पीहू कुमार बिमल और नवरतन हाता, बाड़ीहाट पूर्णिया बिहार से ममता रानी, छवि अनोखी, अर्पिता, दीक्षा देव, देवांशु और डब्लू जी।
0: ये पत्र आया था आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से। फरमाइश करते थे अभिजीत गवाणकर राही, सरिता गवाणकर, एकांश गवाणकर और उनके परिवार के सदस्य।
1: नंगलखेड़ा फगवाड़ पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा और राहुल शर्मा ने भी यही गीत सुनना चाहा था।
0: इसी गीत के लिए ये पत्र आया था बदलापुर मुंबई से। फरमाइश करने वाले श्रोता थे सिद्धांत, प्रणीता और अर्जुन गवाणकर।
1: फाइव स्टार रेडियो श्रोता संघ जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक, सुशांत नायक और दोस्त सुरेश चौरसिया ने भी यही गीत सुनने की फरमाइश की थी।
0: आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से फरमाइश करते थे वैशाली शैलेश, सुमित और कुमारी धवनी।
1: सहारनपुर से आशा नारंग, सुरेश नारंग और सोनल पाठक ने भी यही गीत सुनना चाहा है।

0: लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में आप सुन रहे थे साहिर लुधियानवी का लिखा गीत। जयदेव ने इस गीत की धुन तैयार की थी हम दोनों फिल्म के लिए। पसंद थी आप सब श्रोताओं की। गरीब नवाज कॉलोनी वंदना नगर इंदौर से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विक्की रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक, संजना परी और ललिता नारायण।
1: जेवरा हिसार से यही गीत सुनने की फरमाइश की थी वीरेंद्र भियाण, शमशेर सुरेंद्र, मनोज भियाण और आपके पूरे परिवार ने।
0: ये पत्र आया था ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से। अनुरोध करते थे मोहम्मद रफीक पंवार, मोहम्मद साकिब पंवार, मोइन छोटू पंवार और मोहम्मद हसनैन पंवार।
1: गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से यह गीत सुनने की फरमाइश कर रहे थे मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, तानिश शेख, अमन अफरीदी और राधा नामदेव।
0: बाजार चौक ग्राम दीवाल से इस गीत को पसंद किया था शंकर लाल गंगराड़े, वनिता गंगराड़े, छोटू, पूजा, रोशनी और अजय गंगराड़े ने।
1: इसी गीत को सुनने की फरमाइश कर रहे थे मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन, अनम यशफ और रसीद वारसी।
0: अहमदपुर खैगांव खंडवा से आप थे कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली, समर और वेदिका फूलमाली।
1: नंबर 16 वार्ड गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से पूजा रघुवंशी, नंदिनी रघुवंशी, बबीता, शोभा कुमारी, वंदना मराठा, देविका चौधरी, लड्डू चौधरी, स्वाति, प्रज्ञा चौधरी और आपका पूरा परिवार भी यही गीत सुनने की फरमाइश कर रहे हैं।
0: ये पत्र था मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली से। अनुरोध करने वाले हमारे श्रोता थे पन्नीलाल सागर, बेनी सिंह मासूम, धर्मवीर मनमौजी, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश, रूबी भारती, रचना भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, ममता चौधरी, ओमवती भारती, खनक, नकुल, नैन्सी और सारांश।
1: इसी गीत को सुनने का अनुरोध किया था आकोट से विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे, विजय, शुभम, पवन जरिए और संजीव डोबेराव ने।

0: इस गीत को शाही मार्केट से आ रहा बिजनौर से आसिफ चौधरी, अराफात चौधरी, आदिब चौधरी और कादिर चौधरी।
1: और इसी गीत को सुनने की फरमाइश की थी गांव खरकड़ा चौबीसी से गोलू कांगड़ा, सागर कांगड़ा, सीताराम कांगड़ा, अंशिका बोट और तमन्ना कांगड़ा ने।
0: कस्बा शीशगढ़ से गुड्डू इदरीसी और मोहम्मद फरहान इदरीसी ने भी इसी गीत को पसंद किया था।
1: मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायडे, विजय तायडे, जिंगाव विदर्भ से बसंत राव भोजने और सुनंदा भोजने ने भी इस गीत को सुनने की फरमाइश की थी।
0: मॉडल टाउन करनाल से आप थे सुधीर नूतन, संदीप गोगलानी और सुनीता शर्मा।
1: राही नगर गंज डुंडवारा से शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा और अन्नू खान ने भी इस गीत को सुनने की फरमाइश की थी।
0: गोला बाजार बक्सर से अनुरोध करते थे श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित।
1: नाज पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज नाज, सलमान नाज, असद अरहाम और आपके साथ मोहम्मद आलम हाशमी ने भी यही गीत सुनने की फरमाइश की थी।

आशा भोसले के स्वर में आप सुन रहे थे आज और कल फिल्म का गीत। गीतकार थे साहिल लुधियानवी, धुन रवि की थी। पसंद करते थे इस गीत को गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले। जिला मुरादाबाद संबल रोड बस्तौर से अतर सिंह सैनी, मुन्नी पवित्रा, अजय सैनी, आंचल विक्की, आकांक्षा, आकाश, आयुषी, आराध्या, छवि, दक्ष, रुद्र, काव्या, कमानी सिंह।

0: और उनके परिवार के सदस्य, मझोली से हीरावती देवी और सैनी परिवार के सदस्य।
1: बलकेश्वर कॉलोनी आगरा से श्रीमती सरिता चौरसिया, सुमित चौरसिया, वीर और अबीर। नवाबगंज कानपुर से सुजाता चौरसिया और पंकज चौरसिया, पीहू और दिया चौरसिया ने भी यही गीत सुनने की फरमाइश की थी।
0: गांव चौहलदा बागपत से आप थे संजय ढींगिया, नमन मुस्कान और कुणाल। औरंगाबाद से राजेश साबले, पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश।
1: मुजफ्फरनगर बिहार से आप थे आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार।

0: चित्रलेखा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। गीत लिखा था साहिर लुधियानवी ने और धुन रोशन की थी। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं अब दिल्ली दूर नहीं फिल्म का गीत सुधा मल्होत्रा के स्वर में। गीतकार हैं शैलेंद्र और धुन है दत्ताराम की। दोनों गीतों की मिलीजुली फरमाइश कुछ इस तरह से है। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर बिरक जैतेक बिरक और मीका बिरक।
1: ग्राम लोहड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव इंद्रपाल यादव राघवेंद्र अरविंद रागिनी रिया रेनु दिव्यांशी और आराधना।
0: आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी मेराज जहां और गुलाम साबिर राही।
1: दिलावर खान हसीना बानो एलिजा नायब और लड्डू हैं रघुवीर नगर दिल्ली से।
0: और ये पत्र है खुर्जा से तिलक राज अरोड़ा प्रकाश अरोड़ा चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा का। तो आप सबकी पसंद पर सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत।

0: श्रोताओं, हीर रांझा फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत लिखा था कैफी आज़मी ने और संगीत दिया था मदन मोहन ने।
1: सुनो ना,
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है, हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
0: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। श्रोताओं लीजिए, इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं मदर इंडिया फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाज़ में। शब्द रचना है शकील बदायूनी की और संगीत दिया है नौशाद ने।

श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आइए, अब हम आपको सुनवा रहे हैं राजपूत फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। शब्द रचना है आनंद बख्शी की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

राजपूत फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। और श्रोताओं, इस कार्यक्रम में अब अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मैं चुप रहूंगी से। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत दिया है चित्रगुप्त ने।

0: चित्रपट संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आइए श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाते हैं खानदान फिल्म का ये नगमा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत दिया है रवि ने।
1: मैं सुनाता हूँ तुझे

खानदान फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। और श्रोताओं, आइए इस कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवाते हैं उपकार फिल्म से। आवाज़ है मन्ना डे की, गीत लिखा है इंदिवर ने और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

श्रोताओं, उपकार फिल्म के इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। दिन के 11:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मैं हूं विमलेश
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार और जय जोहार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है पोटियां कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है। जिस प्रकार प्रकृति सबसे प्रेम करती है, वैसा ही प्रेम हमें प्रकृति के प्रति भी रखना चाहिए।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है NR प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का, राजा जी नगर बेंगलोर से लिखा है। लिखते हैं,
2: सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता।
0: आप आगे लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आज उमंग कार्यक्रम सुना, सिलिका पर आपका विषय उत्कृष्ट था। प्रस्तुति का तरीका वाकई सराहनीय है, चरण दर चरण समझाने का तरीका, सिलिका क्या है या सिलिकॉन से कैसे भिन्न है और इसका सामान्यतः उपयोग कहाँ होता है, साथ ही साथ हमारे दैनिक जीवन में इसका व्यापक उपयोग वाकई अद्भुत है। विषय और प्रस्तुति दोनों ही शानदार थे।
2: सिलिकॉन घाटी में रहते हुए भी मुझे सिलिका और सिलिकॉन के सरल अंतर का पता नहीं था, इस उपयोगी जानकारी के लिए धन्यवाद।
0: आगे आप लिखते हैं, सबसे बढ़कर हमेशा की तरह आप दोनों की प्रभावशाली आवाज हर किसी के मन में तुरंत उतर जाती है, यही आपकी प्रस्तुति का असली प्रभाव है।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद NR प्रसाद जी और अखिला जी।
0: अगला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन।

0: सल्यूट करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामण शेंडे जी, प्रणय, प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने जी का।
0: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
1: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का।
0: धन्यवाद आप सबका भाग लेने के लिए। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
1: तो श्रोताओ, हमारा पहला प्रश्न था कि मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों।
0: श्रोताओ, इसका जवाब जान लेते हैं। मातृ वृक्ष उन पेड़ों को कहते हैं जो जंगल में बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें धरती पर दूर दूर तक फैली होती हैं और वे अपनी जड़ों द्वारा अन्य छोटे पेड़ पौधों को पोषण पहुंचाते हैं।
1: जी, और हमारा दूसरा प्रश्न था पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए।
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं। तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता है। कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियां झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर निर्भर करती है। कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है। साथ ही साथ कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीड़ों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है।
1: जी, हमारा अगला प्रश्न था क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
0: जी, इसका जवाब भी जान लेते हैं। बहुत से पेड़ हो सकते हैं ऐसे, लेकिन क्लोनल पेड़ का सबसे सरल उदाहरण है बरगद और नॉन क्लोनल पेड़ का उदाहरण है आम का पेड़।
1: जी, अश्वताओ, हमारा अंतिम प्रश्न था, हमने आपसे पूछा था जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उस समय क्या क्या कर रहा होता है, कोई दो उदाहरण दीजिए।
0: जब हम किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उसी समय हमें ठंडक पहुंचा रहा होता है और हमारे लिए हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर रहा होता है।
1: जी, तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है कंगारू के कितने पैर होते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कंगारू के कितने पैर होते हैं।
1: 8800440559 पर जो हमारा IBRS नंबर है और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर आप हमारे संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIET NCERT को फॉलो करना ना भूलें।
0: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
1: तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है सरितपुर की कहानी।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बाढ़ आने के विभिन्न कारणों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की रक्षा करना हमारी अहम जिम्मेदारी है।
2: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारी फसल बर्बाद,
3: सारी फसल बह गई।
4: साथियों नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि प्राकृतिक आपदा कहते किसे हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। प्राकृतिक आपदा कहते हैं उस स्थिति को जो प्रकृति की शक्तियों के कारण धीरे धीरे या फिर अचानक घटित होती है, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, तूफान और सुनामी वगैरह। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बाढ़ की। तो आइए सुनते हैं एक लघु लेकिन जानकारी से भरपूर कहानी, कहानी सरितपुर की। साथियों, बहुत समय पहले की ये बात है। हिमालय की तलहटी में एक शांत और बड़ा ही प्यारा सा गांव था जिसका नाम था सरितपुर। ये गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ था। नदी का नाम था सरिता। गांव के लोग नदी को अपनी मां की तरह मानते थे। जब वो नदी के किनारे जाते तो उनका मन प्रसन्नता से भर जाता। वो गाने गुनगुनाने लगते थे। नदी उनके खेतों को पानी देती, बच्चे उसके पानी में खेलते

0: और तो और, वो नदी मछलियों और जलचरों का घर भी तो थी, और इस गांव की चर्चा चारों तरफ थी। नदी भी बहुत खुश थी। समय बीतता गया, गांव की जनसंख्या बढ़ती गई, और उस गांव में खेत और फलों के बहुत से बगीचे तो थे ही, इसलिए लोग बाहर से भी उस गांव में काम की तलाश में आने लगे और धीरे धीरे वहां बसने लगे।
1: लो भाई, पहुंच गए सरेदपुर। वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य है चारों ओर। भाई मेरा तो जी चाहता है कि यही बस जाऊं।
2: सचमुच, हरे भरे पेड़, चारों ओर पहाड़ और दूर दूर तक फैले हुए खेत।
1: और वो सामने देखो बहती हुई नदी। कितना साफ पानी है।
0: इसी तरह धीरे धीरे गांव की आबादी बढ़ती चली गई। आबादी बढ़ी तो आवास की जरूरतें बढ़ी। लोगों ने नदी के किनारे अपने अपने घर बना लिए, और फिर वही हुआ जो आमतौर पर होता है। नदी के किनारे बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे, और अब घर बनाने के लिए वहां के पेड़ भी काटे जाने लगे।
1: अरे काट काट काट, बताइए मेरा भाई क्या देख रहा, काट।
3: अरे मैंने आज 10 पेड़ काट डाले।
0: धीरे धीरे कल कारखाने लगने लगे। अब हुआ ये कि लोग अपना कचरा, कारखानों का कचरा और प्लास्टिक वगैरह भी नदी में ही डालने लगे। कारखानों की जल निकासी के लिए उन्होंने नाले बना लिए, और नालों का गंदा पानी और कचरा भी नदी में बहकर आने लगा। किसी को ये ख्याल नहीं आया कि नदी कचरे से भरती चली जा रही है। पेड़ों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है मृदा या मिट्टी के कटाव को रोकने की, लेकिन अब वहां की मिट्टी ढीली हो गई थी। सरिता यानी नदी अब अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रही थी।
4: सुनो मेरे बच्चों, मुझे गंदा ना करो। इन प्यारे प्यारे पेड़ों को मत काटो। सुन लो मेरी बात, यदि मैं नहीं रहूंगी तो एक दिन तुम भी नहीं रहोगे।
0: तो साथियों, ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसी गांव में पेड़ काटे जा रहे थे, आसपास ही नहीं, दूर दूर के सभी स्थानों पर ऐसा ही हो रहा था। लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते, उनकी लकड़ियां लाभ कमाने के लिए शहरों में भेज देते।
1: अरे काट काट काट, हाँ तो और काट, 10 से क्या बनेगा भाई, 420 चाहिए।
5: सही कह रहे हो, शहर भी तो भेजने हैं और पैसे कमाने हैं।
0: गर्मियों का मौसम था, लोग कहते
2: उफ, इस साल तो बहुत गर्मी पड़ रही है।
1: अरे ऐसी गर्मी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
6: अरे मर गए इस बार गर्मी में, जान लेडीज गर्मी ने।
0: साथियों, पेड़ कटे तो गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी तो पर्वतों के ग्लेशियर पिघलने लगे, और फिर पहाड़ों से जल का भारी सैलाब नीचे की ओर आने लगा। और अब सुनते हैं नदी का हाल। नदी में जब कचरा नहीं था तो वो अपने तटों के बीच ही बहती थी, लेकिन अब चूंकि कचरे के भर जाने से नदी छिछली हो गई थी तो वो अपने तटों से बाहर बहने लगी। इसी बीच पहाड़ों पर भारी बारिश होने लगी, पेड़ कट गए थे इसलिए मिट्टी भी बहकर आई, नदी का जलस्तर बढ़ गया, और फिर पानी गांवों में घुसने लगा। पानी ने खेतों को ढक लिया, बहुत से घर बह गए और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई।
7: अरे अरे हमारे घर के सारे सामान बह जाएगा,
8: लगता है नदी क्रोधित हो गई है।
1: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारी फसल बर्बाद,
8: सारी फसल बह गई।
9: आए भैंसों को ऊपर ले जाना होगा। सारा सामान उसे भी तो ऊपर ले जाना होगा।
5: चलो जल्दी ऊपर।
9: अरे हमें भी तो ऊपर चलना होगा उनके साथ। चलो चलो जल्दी चलो
5: चलो चलो।
9: ये पानी है चारों तरफ, ध्यान से जाना, सांप वाप ना आ जाए।
5: ध्यान से संभल कर।
0: वैसे बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है जिसके कई भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे भूमि के तल का नीचा होना, कई कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश का होना वगैरह। लेकिन इसके मानव जनित कारण भी होते हैं, जी हाँ, जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हैं, जैसे प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, हिमनदों या ग्लेशियरों का ज्यादा पिघलना और इसकी वजह से समुद्रों का जल स्तर बढ़ना। वैसे बाढ़ आने के पीछे हम मनुष्यों की भूमिका भी कोई कम नहीं है। तो ध्यान दीजिए, पेड़ों को काटकर, नदियों में कचरा डालकर प्रकृति का संतुलन न बिगाड़ें। अंत में सुनते हैं सरितपुर गांव की नदी की कहानी इस कविता में। और हाँ साथियों, ये कहानी सिर्फ सरितपुर की नहीं है, लगभग दुनिया की अधिकांश नदियों की यही कहानी है।
10: नदी थी प्यारी, सबकी थी वो नदी दुलारी, बच्चों संग वो खेलती थी, कल कल गीत सुनाती थी। लोगों ने नदी को सताया, उसमें उन्होंने कचरा गिराया, उन्होंने काटा पेड़ों को, साथ नदी का नहीं निभाया। फिर तो नदी में उफान है आया, सबका मन बहुत घबराया, लोगों की आशाएं टूटी, बाढ़ बनकर नदी भी रूठी, मचा चहुं ओर हाहाकार, अब तो मानव करो विचार, अब तो मानव करो विचार।
11: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार मुनीश शर्मा, कीमती आनंद, पूनम श्रीवास्तव और शशांक शर्मा। शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। श्रोताओं, आपको अवश्य ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है एक गांव की कहानी।

0: यह बात बहुत पुरानी है। आज से लगभग 200 वर्ष पहले गढ़वाल की पहाड़ियों में एक गांव बसा था। गांव का नाम था रैणी। चारों ओर ऊंचे-ऊंचे पहाड़, घने जंगल, झरझर बहते झरने और नदी नाले थे। घाटियों में बहती हुई हवा फूलों की सुगंध को चारों ओर फैला देती थी। बहुत ही सुंदर था यह गांव। इस गांव के लोगों का काम था खेतीबाड़ी करना और पशु पालना। उनकी सारी जरूरतें जंगल से ही पूरी होती थी। दिन भर जंगलों और खेतों में काम करने के बाद लोग जब शाम को अपने घर वापस आते तो उनके नृत्य और लोक गीतों की मधुर आवाज सारे पहाड़ों में गूंजने लगती। जंगल ही इनका सब कुछ था। उन्हें जंगल से वैसा ही लगाव था जैसा अपने परिवारजनों से था। जंगल के पेड़ उनके जीवन का अंग थे। उन्हें लगता कि पेड़ अक्सर कहते हैं।
1: मैं पेड़ हूं, सदियों से मैं खड़ा जीवन देने के लिए। मैं ही बसंत और वर्षा दाता, हवा का अमृत मैं ही।

0: रैणी गांव के लोगों का जीवन बड़े ही संतोष से बीत रहा था। इसी गांव में गौरा देवी नाम की एक युवती रहती थी। वो बड़ी बहादुर और मेहनती थी। गांव के और लोगों की तरह वो भी दिन भर जंगल में ही रहती, जलाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी करती, फल फूल कंदमूल और शहद इकट्ठा करती।
1: गौरा, अरे ओ गौरा, अरे कहां निकल गई है तू? अकेली जंगल में दूर मत जा।
2: अरे चाची, मैं यहीं तो हूँ। अरे चाची,
1: हाँ,
2: यहाँ आकर तो देखो।
1: हाँ हाँ,
2: कितने सारे छत्ते लगे हैं मधुमक्खियों के।
1: हाँ,
2: सबको यहीं पे बुला लो चाची।
1: हाँ हाँ,
2: सात आठ छत्ते तो होंगे ही।
1: अरे ओ रेवती,
2: अरे सुनो तो, श्यामा।
3: हाँ चाची।
2: किंदौरी।
3: हाँ चाची।
2: और
1: हाय हाय, ये नाम तो मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ। हाँ प्रसन्नी,
4: अरे सब इधर आओ, जरा सुनो तो, ये गौरा क्या कह रही है?
3: आ रही हूँ चाची।
2: हाँ चाची।
5: क्या है चाची?
1: अरे
5: क्या हुआ?
1: कोई घबराने वाली बात नहीं है रे।
5: हाँ?
1: वो गौरा कह रही है कि सामने वाले पेड़ों पर मधुमक्खियों के छत्ते लगे हैं।
5: हाँ? छत्ते? क्या मतलब?
1: हाँ हाँ छत्ते, वो भी दो तीन नहीं, बड़े बड़े सात आठ छत्ते लगे हैं। हाँ
5: सात आठ छत्ते, कमाल है।
3: अरे फिर तो मजा आ गया।
5: यानी अगर सारा शहद निकाल ले तो दो गगरी भर तो हो ही जाएगा।
6: अरे हम कितने दिनों से खोज रहे थे शहद, अब तक कहीं नहीं मिला, और आज मिला है तो
3: छप्पर फाड़ गए।
5: तो आओ पहले शहद ही निकाल लेते हैं।
6: हाँ हाँ, क्यों नहीं, शहद निकालने के बाद दांतों भी तोड़ लेंगे।
3: अरे आज गुलर भी तो तोड़ने हैं।
2: हाँ ठीक है, चल चलते हैं।

0: तो ऐसा था वहां का दैनिक जीवन। जंगल में चीड़, देवदार, बांस, भैमल, असीन, तूण, तिमल और धौड़ के पेड़ थे। पुरुष खेतों में काम करते और स्त्रियां जंगलों में। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह गौरा अपनी सहेलियों के साथ जंगल में गई। गौरा और उसकी सहेलियां गूलर के फलों को इकट्ठा करने के लिए जंगल में काफी दूर निकल गईं। घूमते घूमते वो अलकनंदा नदी के किनारे पहुंची।
1: अरे गौरा, ये आवाज कैसी आ रही है?
2: आवाज? हाँ, आवाज तो आ रही है। अरे लगता है कोई पेड़ काट रहा है। मुझे तो कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। वो देख गौरा। अरे हाँ, वो साल के बड़े पेड़ के पास।
1: हाँ वही,
2: न जाने कौन लोग हैं।
1: पता नहीं कौन लोग हैं।
2: अरे धीरे धीरे बोलो, कहीं वो हमारी आवाजें ना सुन ले। चलो और नजदीक चल के देखते हैं।
1: चलो खाकी पैंट, सिर पर टोपी और हाथों में बंदूक भी है। ये गांव के लोग तो नहीं लगते।
2: अरे मुझे तो ये शहर के लोग लगते हैं, जो पेड़ काटने आए।
1: अरे अरे देखो तो, उन्होंने बहुत सारे पेड़ों को काटकर अलग से इकट्ठा भी कर रखा है।
2: हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग यहाँ चोरी से आकर अक्सर पेड़ काटते हैं। ऐसा है कि हम इन्हें जरूर रोकेंगे।
1: बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
2: मगर कैसे? भला इतने

0: अरे हथियारबंद लोगों को कैसे रोका जा सकता है? और वो हमें जान से भी तो मार सकते हैं।
1: अरे भले ही हमें जान की बाजी लगानी पड़े, इन्हें हर कीमत पर रोकना ही है। मगर इस समय इनके सामने जाना खतरे से खाली नहीं है। चलो ऐसा करते हैं, गांव चलकर और लोगों को भी बुला लाते हैं। सुनो सुनो, मगर जिस रास्ते से हम आए हैं वो तो बहुत लंबा पड़ेगा। सामने वाले पहाड़ को पार करके चलते हैं। अच्छा। वो रास्ता छोटा लगेगा। हाँ,
2: तो बस फिर क्या था, गौरा देवी अपनी सभी सहेलियों के साथ फौरन अपने गांव की ओर चल पड़ी। कटीली झाड़ियों में उनके कपड़े फट गए, खरोंचे लगी, प्यास के मारे उनका बुरा हाल हो गया, पथरीली जमीन से पांव लहूलुहान हो गए। मगर बिना रुके वो दौड़ती रही, दौड़ती रही। उनके सामने एक ही लक्ष्य था, अपने पेड़ों को बचाना। थकी हारी जब वो गांव में पहुंची तो दोपहर हो चुकी थी। पुरुष काम करने खेतों में गए हुए थे, इसलिए एक भी पुरुष उस समय गांव में नहीं मिला।
3: हाय राम, यहाँ तो कोई भी नहीं है, अब क्या करें गौरा?
0: अरे गांव में मर्द नहीं है तो क्या हुआ, औरतें और बच्चे तो है ना, हमें उन्हीं को लेकर चलना होगा।
4: हाँ, ठीक है, ठीक है।
5: मगर ये औरतें और बच्चे।
0: अरे यार मगर मत कर, क्या पेड़ हमारे भाई नहीं है? हम सब बहनें मिलकर अपने पेड़ भाइयों को बचाएंगी।
4: हाँ, बचाएंगी। हाँ,
0: नहीं तो

0: जब उन्हें काटा जा रहा है तो आओ अपने प्राणों की आहुति देकर इनकी रक्षा करें। लेकिन हम क्या करें, इनके पास तो हथियार है।
1: अरे डरो मत, भागकर हर बहन एक एक पेड़ से चिपक जाए ताकि ये पेड़ न काट सके। भागो, चलो पकड़ लो प्राणों को, हथियार को।
2: अरे अरे हटो ना, अरे कहां से आई है, अरे औरतें कहां से आ
0: गई।
3: इधर जंगल में ये हो रहा था और उधर आसपास के गांवों में ये खबर आग की तरह फैल गई। गांवों से लोग हथियार लेकर वहां आने लगे। जब पेड़ काटने वालों ने देखा कि अब उनकी दाल नहीं गल सकती तो फिर क्या था, उन्होंने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी और सर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए।
4: चिब्बू भाग ले यहां से,
5: भाग के बाद में बाल काट लेंगे।
3: सभी ने गौरा देवी और स्त्रियों के साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की।
6: वाह भैया, गौरा ने तो
7: बहुत कमाल का काम कर दिया। ऐसी ऐसी चिपकी पेड़ से किसी ने छोड़ा ही नहीं पेड़ को। अरे क्या बात, गौरा बहुत कमाल कर दिया। मिट्टी जीतती
0: है, हम सबका कर्तव्य है।
3: दोस्तों, इसी रैणी गांव से शुरुआत हुई चिपको आंदोलन की, जो आज सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया है।
8: एक गांव की कहानी अभी आपने सुना। ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हम आपसे आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
9: और विमलेश को
8: कुसुमलता,
9: जगबंधु,
8: चेतना
9: और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
8: नमस्कार, नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। अब सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी। श्रोताओं, आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। दोपहर 12:05 पर हम आपको सुनवाएंगे पंडित रामलाल मिश्र द्वारा सारंगी पर बजाया राग भीम पलासी। आपके साथ तबले पर संगत करेंगे निखिल कुमार मुखोपाध्याय। फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिडडे मेलोडी आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:15 पर हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम परिवार जगत में आज चर्चा का विषय होगा परीक्षा के बाद भविष्य की राह। साथ ही हम आपको सुनवाएंगे निष्ठा धीमान से ज्योति पाल की बातचीत। इस भेंटवार्ता का विषय होगा विद्यार्थियों के कैंपस प्लेसमेंट और कॉरपोरेट करियर के लिए टिप्स। लोकधारा कार्यक्रम के अंतर्गत रतन सिंह की आवाज में आज जौनसारी लोकगीत आप सुनेंगे दोपहर 1:45 पर।

नई हिंदी फिल्मों के गीत हम आपको सुनवाएंगे दोपहर 2:30 पर कार्यक्रम नई फिल्मों से के अंतर्गत। शाम 5 बजे कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत के अंतर्गत आज जानकारी के विषय होंगे हर घर नल योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना।

शाम 5 बजे युवा श्रोताओं के दैनिक कार्यक्रम युववाणी में आज के क्रम रहेंगे, बूझो तो जाने, कुछ खास है आज, गपशप अड्डा, क्रैश कोर्स पैसा वसूल और कहानी के उस पार। किसान श्रोताओं के दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत में आज चर्चा का विषय होगा सिंचाई की नई तकनीकी से पानी की बचत। साथ ही जानकारी दी जाएगी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के विषय में। किसान श्रोता इस कार्यक्रम में सुनेंगे सफल किसान सेठपाल सिंह से अंकित सैनी की बातचीत। इस भेंटवार्ता का विषय रहेगा सिंघाड़ा उत्पादन में अधिक लाभ कैसे कमाएं।

शाम 6:45 पर कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे सुषमा अग्रवाल की वार्ता, जिसका विषय होगा हिंदी साहित्य की वर्तमान स्थिति और प्रासंगिकता। सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत शाम 7:32 पर आप सुनेंगे आदित्य कुमार शर्मा की आवाज में भजन और गजल। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संध्या आप सुनेंगे रात 8:00। 8:30 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से, रात 10:00 कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, और रात 10:30 पर फिल्मी गीत आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश के अंतर्गत। श्रोताओं, यह थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों के विषय में। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12:05 हुए हैं। अब सुनिए पंडित रामलाल मिश्र के द्वारा सारंगी पर बजाया राग भीम पलासी। तबले पर संगत कर रहे हैं निखिल कुमार मुखोपाध्याय।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंडित रामलाल मिश्र द्वारा सारंगी पर बजाया राग भीम पलासी। तबले पर संगत कर रहे थे निखिल कुमार मुखोपाध्याय। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। श्रोताओं, मिड डे मेलोडी कार्यक्रम में आइए हम आपको सुनवाते हैं ये पहला नगमा अमृत फिल्म से। आवाज है मोहम्मद अजीज की, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना अमृत फिल्म का ये गीत मोहम्मद अजीज की आवाज में।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
0: मिड डे मेलोडी कार्यक्रम में श्रोताओं, आइए हम आपको सुनवाते हैं जगजीत सिंह की आवाज में ये गीत दुश्मन फिल्म का। शब्द रचना है आनंद बख्शी की और संगीत दिया है उत्तम सिंह ने।

0: दुश्मन फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना जगजीत सिंह की आवाज में।
1: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026 हेतु प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। ये प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के उन बच्चों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त की हों। सभी इच्छुक अभ्यर्थी एवं संस्थाएं योग्य बच्चों के नामांकन सिफारिशें केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर भेज सकते हैं। पोर्टल है https://awards.gov.in। नामांकन भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। विशेष रूप से बालिकाओं, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा दिव्यांग बच्चों में से प्रतिभाशाली बच्चों को चिन्हित कर उनके नामांकन हेतु प्रोत्साहित किया जाए। अधिक जानकारी हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल अथवा संबंधित विभाग से संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त।
0: श्रोताओं, मिड डे मेलोडी कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं पवित्र पापी फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में। गीत लिखा है प्रेम धवन ने और संगीत भी दिया है प्रेम धवन ने ही।

किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आपने सुना पवित्र पापी फिल्म का ये गीत। और श्रोताओं, आइए अब आपको सुनवाते हैं पेंटर बाबू फिल्म का ये गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ में। संगीत है उत्तम जगदीश का और गीत लिखा है मनोज कुमार ने।

महेंद्र कपूर को अभी आपने सुना पेंटर बाबू फिल्म से, और कार्यक्रम का आखिरी गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत लिखा है राजा मेहंदी हसन खान ने और संगीत दिया है मदन मोहन ने। फिल्म का नाम है वो कौन थी।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम मिड डे मेलोडी अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर का 1 बजने को है, कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पश्चिम बंगाल में 2 नए अपराध रोधी कानून आज से लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे है। इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने ऐसा झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ट की ओर से दायर याचिका के बाद किया है। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सभी मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए मात्र 1 महीने में 4 नई खेप के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इनमें नवीनतम जहाज INS महेंद्रगिरी, जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया, 6th नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है, इसे इस महीने की 11 तारीख को शामिल किया गया था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टर्स और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। ये इंटर्नशिप कथित तौर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित बताई गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजेस पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। वियतनाम के फुक क्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय

0: अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन तक देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और उत्तराखंड में भी अगले 2 दिन तक सामान्य बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has congratulated the Indian contingent for winning gold medals at the 56th International Physics Olympiad 2026 held at Bucaramanga, Colombia. In a social media post, Mr. Modi said their feat reflects yet another example of the limitless potential of the nation's Yuva Shakti and their passion towards science and research. The Prime Minister further noted that it is equally commendable that in the last decade, Indian students have performed exceptionally well in the various editions of this platform. The government today informed that 4 new generation indigenous naval platforms were inducted into the Indian Navy in just 1 month to strengthen the country's maritime defense. The latest addition is INS Mahendragiri, the 6th indigenously designed Nilgiri class stealth frigate, which was inducted on the 11th of this month. A report.
2: On 21st of last month, the Indian Navy inducted 3 indigenously designed and built platforms, namely INS Dunagiri, INS Sansodhak and INS Agraya. These frigates are built under Project 17A for multi-mission roles, including anti-air, anti-surface and anti-submarine warfare. Project 17A is the Indian Navy's advanced stealth frigate program to build 7 next-generation guided missile warships equipped with advanced stealth features, enhanced survivability, a reducer radar signature and a high degree of automation. These warships are capable of undertaking the full spectrum of maritime operations across all dimensions of naval warfare. Built with a high indigenous content, these platforms reflect the vision of Atmanirbhar Bharat and strengthen the country's defense manufacturing ecosystem. With Pallavi Parmar, this is Ankit Kumar, Akashwani News, Delhi.
1: The mortal remains of the 15 Indian tourists who lost their lives in the boat capsize incident near Phu Quoc Island in Vietnam will be repatriated from Ho Chi Minh City to India today by Vietnam Airlines flight. The Indian Embassy in Vietnam, in a social media post, said the flight is scheduled to depart from Ho Chi Minh City at 6 p.m. local time and is expected to arrive at Mumbai's Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport at 9:35 p.m. Indian Standard Time. In West Bengal, 2 new anti-crime laws have become effective from today. Governor R. N. Ravi has given his assent to the bill related to the control of anti-social activities. The State Assembly passed the 2 stringent anti-crime bills, the West Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill and the West Bengal Maintenance of Public Order Amendment Bill. Under the West Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Act 2026, a person involved in antisocial activities or one who is likely to engage in such activities in the future may be placed under preventive detention. Such a person can be detained for a maximum period of 1 year. Secretary in the Ministry of Panchayati Raj Vivek Bharadwaj today emphasized the need for collective action to make the country self-reliant in water management. He was addressing the inaugural session of National Level Training of Master Trainers Program on Water Budgeting and Water Security Planning by Gram Panchayats in New Delhi. Mr. Bharadwaj said meaningful change can be achieved when everyone comes together to work towards a common goal. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, has claimed responsibility for missile and drone strikes on U.S. military bases in Jordan, Bahrain and Kuwait as part of its ongoing Eye for an Eye operation. The attacks were described as retaliation for recent U.S. strikes on Iranian military targets. According to Iran State News Agency, the operation targeted the Prince Hassan Air Base in Jordan, Sheikh Isa Air Base in Bahrain, and Ali Al Salem and Ahmad Al Jaber Air Bases in Kuwait. The IRGC claimed it damaged fuel depots, ammunition storage facilities, air defense systems and radar infrastructure. The development comes after CENTCOM launched a major wave of offensive precision strikes across multiple locations in Iran yesterday. The Intermeteorological Department has forecast isolated heavy to very heavy rainfall over northeast India, West Bengal and Bihar during the next 2 to 3 days, and isolated heavy falls in east Uttar Pradesh over 4 to 5 days. Benchmark domestic equity indices erased their early losses and were trading on a flat note during the afternoon session today. The Sensex advanced 61 points to 77,631, while the Nifty added 5 points to 24,211 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रेस चैनल है।
4: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानों से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और लखनऊ के रुकने पार्लियामेंट ने आज लखनऊ के केजीएमयू के 22वें यौम तासीस प्रोग्राम को खिताब किया। वजीर दिफा ने कहा कि केजीएमयू ने मुल्क को ऐसे डॉक्टर्स दिए हैं जिन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री और डॉक्टर बीसी राय जैसे एजाज से नवाजा गया है। उन्होंने कहा कि आज डिग्री हासिल करने वाले तलबा एक मुस्तहकम रवायत का हिस्सा बनने जा रहे हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के वजीर नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह करेंगे। बाकी तफसील हमारे नामानिगार से।
5: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। एआई के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। दोनों शहरों के बीच कार से यात्रा करने पर टोल 275 रुपए होगा और इस पर दोपहिया वाहनों की अनुमति नहीं होगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
4: इसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज के करीब बनने वाले 4 लेन के फ्लाईओवर का भी आज संगे बुनियाद रखा जाएगा। हुकूमत हिंद ने कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा सानी के इंतकाल पर आज कौमी शोक का ऐलान किया है। इस दौरान मुल्क भर में उन तमाम इमारतों पर कौमी परचम आधा लहराएगा जहां कौमी परचम बाकायदगी से लहराया जाता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शेख हमद बिन खलीफा सानी के इंतकाल पर ताजियत का इजहार करते हुए कहा कि वो एक विजनरी रहनुमा थे। उन्होंने कतर को तरक्की और खुशहाली की नई बुलंदियों तक पहुंचाया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को ऑल इंडिया रेडियो के महाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में हिंदुस्तान और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये प्रोग्राम की 136वीं किस्त होगी। प्रोग्राम के लिए सामईन अपने ख्यालात और तजावीज टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भेज सकते हैं। आइंदा किस्त के लिए तजावीज इस माह की 24 तारीख तक कबूल की जाएगी। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने एमसीटी स्कीम 2026 का आगाज किया। इसके तहत मुस्तस्ना प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले इदारों को अपनी हैसियत को बाकायदा बनाने का एक बार मौका दिया गया है। यह स्कीम 6 माह तक नाफिजुल अमल रहेगी। पेश है एक रिपोर्ट।
6: ईपीएफओ की एमनेस्टी योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: मुस्तफीन को फायदा हासिल करने के लिए मुतालका इलाकाई दफ्तर में ईमेल के जरिए दरखास्त भेजनी होगी। राम मंदिर पेशकश घोटाला की तहकीकात तेज हो गई है। खसूसी तफ्तीशी टीम धर्मसेना के सदर और बाबरी मस्जिद इंदाम केस के मुजरिम संतोष दुबे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरीबन 1 घंटे तक पूछताछ की गई। इस मौके के लिए उन्होंने सीओसीटी के लिए दफ्तर बुलाया गया। पूछगछ के दौरान ایس آئی ٹی نے ان کے الزامات اور دستیاب حقائق کی تفصیل سے جانچ کی. سنتوش دوبے نے بتایا کہ ایس آئی ٹی نے ان سے کچھ دستاویزات کی درخواست کی تھی جنہیں وہ آج دوپہر 12 بجے سی او سی ٹی آفس کے ذریعے ایس آئی ٹی کو فراہم کریں گے. وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا کہ یوگی آدتیہ ناتھ کی قیادت میں رام مندر سے متعلق کسی بھی معاملے میں انصاف ہوگا. انہوں نے کہا کہ وزیر اعلی کے نوٹس لینے کے بعد اب انہیں یقین ہے کہ ایس آئی ٹی کی تحقیقات اصل مجرموں تک پہنچے گی اور پورے معاملے کو بے نقاب کرے گی. دریاسنا رام مندر میں چڑھاوے کی چوری معاملے میں تمام 8 ملزمین کو آج ویڈیو کانفرنسنگ کے توسط سے عدالت میں پیش کیا جائے گا. ریاست کے کئی اضلاع میں بارش کا سلسلہ جاری ہے. لکھنؤ کے موسمیاتی مرکز کے ماہر موسمیات محمد دانش نے بتایا کہ ترائی علاقوں اور پوروانچل علاقے کے کئی اضلاع میں 3 دن تک گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے درمیانی بارش ہونے کی توقع ہے.
7: مانسون کا ترائی بیلٹ میں شفٹ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اتر پردیش کے جو ترائی چھیتر ہیں جیسا کہ لکھیم پور کیری بہرائچ بلرام پور کشی نگر دیوریا میں مدھیم سے بھاری ورشا ہونے کی سمبھاونا ہے. باقی جگہ کی بات کریں تو اسپیشلی پوروی اتر پردیش کی بات کریں تو وہاں پہ بادلوں کی آواجاہی رہے گی تتھا کچھ جگہوں پہ چھٹ پٹ ورشا کی سمبھاونا ہے. تو کل ملا کے سلسلہ 2 سے 3 دنوں تک رہے گا.
4: دریاستہ بارش اور بیراجوں سے پانی چھوڑنے کی وجہ سے ریاست میں کئی ندیوں کے سطح آب میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئی. اگلا بلٹن دوپہر 2 بجے ایف ایم پر نشر کیا جائے گا.
8: میڈیم ویو 314.47 میٹر ارتھات 954 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی کے نجیب آباد کیندر سے بول رہے ہیں. دوپہر کا 1:15 ہوئے ہیں. اب پرستوت ہے کارکرم پریوار جگت.
9: نمسکار شروتاؤں, آپ سن رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ کارکرم پریوار جگت اور میں ہوں آپ کی ریڈیو سکھی دیپتی مہیشوری. شروتاؤں, جولائی کا مہینہ اپنے ساتھ نئی شروعات کی خوشبو لے کر آتا ہے. اس ماہ میں لگ بھگ سبھی ودھیالیوں اور مہاودھیالیوں میں نیا شیکشنک ستر آرمبھ ہو گیا ہے. ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ کے پریکشا پریڑام گھوشت ہو چکے ہیں. انیک ودھیارتھیوں نے اپنے پسندیدہ پاٹھیکرموں میں پرویش لے لیا ہے. کچھ ودھیارتھی ابھی پرویش پرکریا میں ہیں. वहीं नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणामों की प्रतीक्षा अभी भी लाखों विद्यार्थी कर रहे हैं. ऐसे समय में विद्यार्थियों के मन में एक ही सवाल उठता है, अब आगे क्या? क्या वो परीक्षा में सफल हो पाएंगे? क्या उन्हें मनचाही मंजिल मिल पाएगी? क्या उनके सपने पूरे होंगे? इन्हीं सब प्रश्नों के कारण वे चिंतित रहते हैं. यही वो समय होता है जब हर बच्चे को अपने भविष्य की दिशा तय करनी होती है. किंतु दोस्तों, कोई भी परीक्षा जीवन का परिणाम नहीं होती. परीक्षा केवल हमें ये बताती है कि हमने किसी विषय को कितना समझा, परंतु ये कभी तय नहीं करती कि हम जीवन में कितनी ऊंचाइयां छुएंगे. परीक्षा हमारे ज्ञान का एक छोटा सा मूल्यांकन है, हमारे पूरे व्यक्तित्व का नहीं. दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं जैसे ही परीक्षाओं के परिणाम घोषित होते हैं, घर परिवार और समाज में अंकों की चर्चा शुरू हो जाती है. किसके कितने प्रतिशत आए, किसे कौन सा कॉलेज मिला, किसका चयन हुआ, किसका नहीं. ऐसे माहौल में कई बार विद्यार्थी स्वयं की तुलना दूसरों से करने लगते हैं. लेकिन याद रखिए, हर विद्यार्थी की क्षमता, उसकी रुचि, उसकी जीवन यात्रा अलग होती है. इसलिए तुलना नहीं बल्कि अपनी प्रगति पर ध्यान देना आवश्यक है. यदि आपका परिणाम आपकी अपेक्षा के अनुसार आया है तो ये खुशी की बात है. आप अपनी इस सफलता से प्रेरणा लेकर और मेहनत कीजिए और अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर जुट जाइए. और यदि परिणाम मनचाहा नहीं भी आया तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है. जीवन हमें हमेशा दूसरा अवसर देता है. कई बार एक बंद दरवाजा ही हमें उस राह की ओर ले जाता है जो हमारे लिए अधिक उपयुक्त होती है। इसलिए श्रोताओं, आप कभी निराश मत होइए और आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि आज के समय में करियर के विकल्प पहले से कहीं अधिक व्यापक हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक या प्रशासनिक सेवाओं के साथ साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, डेटा विज्ञान, डिजाइन, पत्रकारिता, पर्यटन, खेल, कृषि, पर्यावरण, उद्यमिता और अनेक नए क्षेत्रों में भी उज्जवल संभावनाएं मौजूद हैं। लेकिन किसी भी क्षेत्र में उसका चयन केवल इसलिए ना करें कि दूसरे लोग वही कर रहे हैं। अपने मन की आवाज सुनिए, अपनी रुचि को पहचानिए, अपनी क्षमता को समझिए, क्योंकि जिस कार्य में आनंद मिलता है, सफलता प्राप्त करने की संभावना सबसे अधिक वही होती है। विद्यार्थियों को भविष्य में सफलता प्राप्त करने के कई और भी मंत्र हैं, जिनकी चर्चा कार्यक्रम में अभी हम आपसे करेंगे, किंतु लेते हैं पहले छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं जरूरी संदेश।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम,
1: इतनी भी क्या जल्दी थी।
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम,
2: और ये
3: मेरी गुड़िया के नाम।
4: पर दादी
0: हाँ
4: आपके नाम?
5: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो
4: क्या
6: आरबीआई कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम परिवार जगत में। श्रोताओं, विद्यार्थियों के लिए आज केवल डिग्री प्राप्त करना ही काफी नहीं है। बदलते समय में संवाद कौशल, नई तकनीक सीखने की क्षमता, अनुशासन, समय का सदुपयोग और निरंतर सीखने की आदत भी उनके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। प्रिय विद्यार्थियों, पढ़ाई के साथ साथ अपने व्यक्तित्व के विकास पर भी ध्यान दीजिए। अच्छी पुस्तकें पढ़िए, समाचारों से जुड़े रहिए, नई तकनीक सीखिए और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। मैं अभिभावकों से भी एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी, अपने बच्चों की तुलना किसी और से ना करें। हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है, उसे अपनी रुचि के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर दीजिए। आपका विश्वास और आपका प्रोत्साहन उसके आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयां दे सकता है। श्रोताओं, जीवन की सबसे सुंदर बात है कि यहाँ सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है। इसलिए परिणाम चाहे जो भी हो, सीखना कभी मत छोड़िए। याद रखिए, सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, सफलता उस यात्रा का नाम है जिसमें हम हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाते हैं। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी विद्यार्थियों से यही कहना चाहेंगे कि अपने सपनों पर विश्वास रखें, धैर्य रखें, मेहनत करें, सही दिशा को चुनिए और पूरे मन से आगे बढ़िए। हो सकता है मंजिल तक पहुंचने में थोड़ा समय लगे, लेकिन यदि आपके कदम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे तो सफलता निश्चय रूप से आपका स्वागत करेगी। और अंत में महान वैज्ञानिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का प्रेरक विचार याद आता है कि सपने वे नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो आइए अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखिए, अपने इरादों को मजबूत रखिए और हर चुनौती का सामना पूरे विश्वास के साथ कीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद हर छात्र का सपना होता है कि उसे एक अच्छा कैंपस प्लेसमेंट मिले और वो अपने करियर की शुरुआत आत्मविश्वास के साथ करे। लेकिन केवल डिग्री ही सफलता की गारंटी नहीं है। सही तैयारी, प्रभावशाली संवाद कौशल, सकारात्मक व्यक्तित्व, टीम वर्क, समय प्रबंधन और इंटरव्यू में आत्मविश्वास, ये सभी बातें सफलता की सीढ़ियां बनती हैं। इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर आज हमारा मार्गदर्शन करेंगे हमारे विशिष्ट वक्ता, जो अपने अनुभव और उपयोगी सुझावों के माध्यम से विद्यार्थियों को बताएंगे कि वे प्लेसमेंट की तैयारी कैसे करें, इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन कैसे करें और कॉर्पोरेट जगत की अपेक्षाओं पर कैसे खरे उतरे। तो आइए बिना देर करे सुनते हैं एक भेंटवार्ता जिसका विषय है छात्रों के प्लेसमेंट और कॉर्पोरेट करियर के लिए टिप्स, जिसके अंतर्गत हमारी सम्मानित वक्ता निष्ठाधीमान से बातचीत कर रही है ज्योति पाल।
9: आज का समय केवल डिग्री हासिल करना ही काफी नहीं है, बल्कि सही स्किल्स, आत्मविश्वास और सही दिशा भी उतनी ही जरूरी है। कॉलेज और उद्योग जगत के बीच इस दूरी को कम करने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर। आइए जानकारी लेते हैं युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने की इस प्रक्रिया में क्या क्या चुनौतियां और अवसर हैं। इन सब की जानकारी के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है निष्ठाधीमान जी को। निष्ठा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
10: बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
9: मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप अपने बारे में और अपने कार्य क्षेत्र के बारे में हमें और हमारे श्रोताओं को बताएं।
10: जैसे कि आप सबने सुना है कि मेरा नाम निष्ठा धीमान है और मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो देहरादून से हुई है 10th इंटू, फिर मैंने ग्रेजुएशन करा है, दैट इज बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम ग्राफिक एट अहिल यूनिवर्सिटी. देन आई मूव टू दी मास्टर डिग्री फॉर माय एमबीए फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड देन आई ज्वाइन द कंपनी नोन बाय ब्रिटिश टेलीकॉम फॉर 6 months. ड्यू टू फैमिली इश्यूज आई लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन एंड आई ज्वाइन द कंपनी इन देहरादून इटसेल्फ, दैट इज टेकी माइंस एंड इन US. एंड फिर मेरे को मीन्स ये है कि मैंने एजुकेशन इंडस्ट्री में जाना चाहा, सो मेरे को एक प्रोफाइल अपने आप को सूट करिए, दैट वाज ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट. सो मैंने जो फर्स्ट ज्वाइन जो करा है एजुकेशन में, दैट वाज देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, दैट आई ज्वाइंड फॉर 2 years आई वर्कड ओवर देयर. फिर उसके बाद मैंने शिवालिक कॉलेज में जॉब करा है अराउंड अ ईयर. फिर आफ्टर गेट मैरिज सो आई ज्वाइंड बिजनौर कॉलेज, दैट फॉर डे फॉर 1.5 years आई वर्कड ओवर देयर एज अ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर प्लस एज अ पीडीपी ट्रेनर.
9: एंड प्लेसमेंट ऑफिसर की मुख्य जिम्मेदारियां क्या होती हैं?
10: जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेनली है बेसिकली बच्चों को ट्रेन करना इंटरव्यूज के लिए और उनका जो टेक्निकल इश्यूज है वो उस चीजें रिजॉल्व करने के लिए, बच्चा कहाँ वीक है. फिर जब वो बच्चा तैयार हो जाता है सारी चीजें एप्टीट्यूड रीजनिंग और स्किल डेवलपमेंट में आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आता है, जब वो डेवलप हो जाता है तो फिर हम बच्चों को प्लेसमेंट के लिए इन्वॉल्व करते हैं.
9: तो आज के समय में कंपनियां डिग्री से ज्यादा किन स्किल्स को महत्व देती हैं?
10: बेसिकली जो डिग्री तो है ही, स्टूडेंट को जो है अराउंड मींस जैसे कि 100% हर स्टूडेंट को देना चाहिए, 50% अपना एकेडमिक्स को देना चाहिए और 50% अपना टेक्निकल स्किल्स के लिए देना चाहिए. टेक्निकल स्किल्स में और स्किल्स में, स्किल्स हमारे 2 sets के होते हैं, दैट इज सॉफ्ट स्किल्स एंड सेकेंड इज टेक्निकल स्किल्स. टेक्निकल स्किल्स में बच्चे का मेन डोमेन आ जाता है, जो बच्चा थ्योरेटिकल स्टडी कर रहा है उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में इन्वॉल्व करना और फिर उसको कम्युनिकेशन स्किल्स एक मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है हर एक जॉब का, चाहे आप गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन करो चाहे आप प्राइवेट के लिए करो, कम्युनिकेशन इज वेरी मस्ट.
9: अगर एक स्टूडेंट है तो उसमें क्या कमी आपको दिखाई देती है?
10: जो कमी जो मैंने ऑब्जर्व करी है वो स्टूडेंट मींस अगर हम एक मींस फॉर एग्जांपल हम एमबीए कोर्स को लेके चलते हैं, राइट? सो एमबीए में जो है अराउंड 70% जॉब के लिए अप्लाई करेंगे और जो 30% है या तो वो अपना ओन बिजनेस करेंगे या फिर पेरेंटल बिजनेस करेंगे या फिर कुछ कुछ हायर स्टडीज के लिए भी जाते हैं क्योंकि सबका अलग ही डोमेन होता है. स्टूडेंट्स में जो कमी जो मैंने देखी है वो बेसिकली है कि बच्चा इजीली जो है जैसे कि AI है,
9: मतलब उसके माइंड में ये रहता है कि एमबीए गया और हमारा प्लेसमेंट बहुत इजीली हो जाएगा.
10: राइट.
9: तो इसको ये ना समझ के कि हम एमबीए हमने कर लिया और हम फ्री हो गए, हमारा प्लेसमेंट तो हो ही जाना है, इसको श्योर ना हो और कड़ी मेहनत करें.
10: बिल्कुल.
9: चार इंटरव्यू में सफल होने के लिए छात्रों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
10: जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपका, सबसे जो मेन इम्पोर्टेंस है वो है आपका सॉफ्ट स्किल्स और कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए और बच्चों को क्लैरिटी होनी चाहिए कि बच्चा किस प्रोफाइल में जाना चाहता है.
9: ये क्लैरिटी तो उसको होनी ही चाहिए. अच्छा, मान लीजिए स्टूडेंट

0: भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है या डिग्री ले रहा है तो उसके मार्क्स कम हैं, उसने अच्छे से तैयारी नहीं की, उसके मार्क्स कम आए हैं, तो क्या अच्छी नौकरी पाने का हकदार है वो?
1: बिल्कुल है।
0: अच्छा,
1: हाँ जी,
0: वो कैसे?
1: बेसिकली देखो, स्टूडेंट्स कंपनीज का जो है क्राइटेरिया होता है परसेंटाइल का, पर कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो परसेंटाइल पे वर्क नहीं करती। मेरा ही एक मीन स्टूडेंट था, उसकी अराउंड एमसीए में 50 परसेंटाइल थी, बट आज के टाइम पे वो सैमसंग आरएनडी में वर्क कर रहा है। तो बच्चा जिस तरीके से अपने आप को रेडी करेगा, जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहता है, बच्चा उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर करता चला जाएगा। क्योंकि जैसे ही जैसे बच्चा इंटरव्यू देगा तो उसको अपनी डाउनफॉल पता चलेगी कि वहां वो कहाँ पे लैग कर रहा है बेसिकली।
0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है,
1: हाँ जी बिल्कुल।
0: तो ऐसे में स्टूडेंट्स कौन सी नई स्किल्स को सीख सकता है या उसको सीखनी ही चाहिए?
1: देखो बेसिकली जो है एआई जो है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और डेवलप तो वो ह्यूमन बीइंग नहीं कर रहा है,
0: बिल्कुल
1: राइट। तो
0: बिल्कुल
1: आजकल का जो सिनारियो है, जो बच्चा देख रहा है कि एआई से जो है जॉब जा रही है, ठीक है, ये हम एक छोटा सा डोमेन ले लेते हैं, बट अगर आप बड़े उस पे बात करो तो क्यों ना हम एआई पे ज्यादा वर्क करें। अब जैसे कि कोर्सेज में भी एआई के स्पेशलाइजेशंस आ चुके हैं, काफी सारी कंपनी सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी करा रही हैं एक एआई का, तो बच्चों को उस तरफ इन्वॉल्व होना चाहिए और हर चीज एक लर्निंग फेज में सीखनी चाहिए, क्योंकि
0: श्योरिटी है इसमें।
1: टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, राइट। तो चेंज को एडॉप्ट करना चाहिए,
0: उसे भागे नहीं, उसे सीखे, उसके
1: बिल्कुल
0: साथ चले।
1: लर्निंग फेज पे हमेशा रहना चाहिए, चाहे वो एक्सपीरियंस हो चाहे वो फ्रेशर स्टूडेंट हो।
0: बिल्कुल।
1: हाँ
0: अच्छा,
1: जी
0: छोटे शहरों के स्टूडेंट्स को कुछ दिक्कतें आती हैं?
1: देखो, दिक्कतें तो सभी को आती हैं,
0: जी।
1: ठीक है, बट जो छोटे शहरों से आते हैं स्टूडेंट्स, और वो बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत लैक करते हैं, और सेकेंडरी होता है उनका मदर टंग इन्फ्लुएंस, एमटीआई। तो अगर वो उस चीज पे वर्क करेंगे स्टूडेंट, तो बेसिकली वो एक अच्छी जॉब भी पा सकेंगे और अपना करियर भी सेट कर सकेंगे।
0: बिल्कुल।
1: बच्चों को एक इंथुसियाज्म होना चाहिए, लर्निंग होना चाहिए कि हाँ हमें सीखना है।
0: चाहे वो छोटे शहर का हो या बड़े शहर
1: बिल्कुल
0: का, तो उसको सीखना है तो बिल्कुल आगे बढ़ेगा वो।
1: बिल्कुल।
0: अच्छा, कॉलेज के दौरान छात्र खुद अपने आप को प्लेसमेंट के लिए किस तरह से तैयार करे?
1: प्लेसमेंट के लिए बेसिकली जो है सबसे मेन मोटिव है, जैसे कि इंटरव्यूज अब कैटेगराइज हो चुके हैं, अराउंड 7 to 8 rounds हर एक कंपनी लेती है, या फिर मिनिमम 4 interviews तो है ही। तो बेसिकली जो है फर्स्ट ऑफ ऑल वो कम्युनिकेशन पे वर्क करे अपना, पब्लिक स्पीकिंग पे वर्क करे, और कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए, ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे, या फिर प्रॉब्लम अपनी सॉल्व करनी चाहिए। अब काफी सारी एप्स भी आ चुकी हैं जो हमारी कम्युनिकेशन को एनहांस कर रही हैं, राइट। तो वो छोटी छोटी कोर्सेज या फिर कुछ कुछ अपने आप को ही मोटिवेट करके लर्निंग में फेस लेके आना चाहिए खुद को। बिल्कुल।
0: अच्छा, पहली नौकरी के समय छात्र किन-किन बातों का ध्यान रखें?
1: पहली जॉब में बच्चों को ये देखना चाहिए कि मेरे को ये करना है, और हर एक जो भी हमारा जो मैनेजर है या टीम लीडर है, जो भी हमको असाइन करेगा, ठीक है, हमको सीखना है लर्निंग फेज पे, अपने सीनियर से भी सीखना है। अगर कुछ चीज़ सॉल्व नहीं हो रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए, राइट। नेट से भी हेल्प ले सकता है, एआई का जमाना है तो एआई के थ्रू सारी चीजें इंसान अपने आप भी सीख सकता है प्रैक्टिकल के साथ साथ।
0: बिल्कुल। पॉजिटिविटी पेरेंट्स की कितनी जरूरी है बच्चे के करियर में?
1: देखो पेरेंट्स तो जो है एक बच्चों का मेंटल पीस होता है, ठीक है।
0: जी
1: पेरेंट्स अगर बच्चों का मेंटल पीस और बच्चों से बातें जितना करेंगे, जितना
0: हाँ
1: बच्चा उनसे फ्रेंडली जोन में आएगा, उसी तरीके से बच्चों को कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है, और हेल्दी एनवायरनमेंट होगा तो स्टूडेंट भी हेल्दी रहेगा और उसका जो करियर है वो भी काफी हेल्दी रहेगा।
0: उस पे कोई
1: बच्चों को करियर गाइडेंस में सबसे पहले पेरेंट्स का ही रोल होता है।
0: बिल्कुल
1: अगर वो अच्छे से पेरेंट्स को गाइड करेंगे तो नॉर्मल
0: हाँ
1: सी बात है, बच्चा अच्छी ही बात पे जाएगा।
0: बिल्कुल। अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी महत्वपूर्ण है और इसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है?
1: कम्युनिकेशन देखो हम लोगों को स्कूल से ही बोला जाता है कम्युनिकेट इन इंग्लिश, ठीक है, कि फाइन लग जाएगा कम्युनिकेट करो इंग्लिश में। तो बच्चों को इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करना चाहिए। इनफैक्ट पेरेंट्स को भी जो अभी मींस जिनको नहीं आती है इंग्लिश, उनको भी थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए। आजकल सबके पास स्मार्टफोन्स है, राइट, घर में, तो उनको भी सीखना चाहिए। जिस तरह से पेरेंट्स कम्युनिकेट करेंगे, स्टूडेंट भी उसी तरीके से कम्युनिकेट

0: करेंगे, ठीक है। बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहली बात है न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर अपने रीडिंग में लेके आए, सेकेंडरी मैगजीन्स पढ़ें, ठीक है, मोटिवेशनल कोट्स पढ़ें और मोटिवेशनल स्टोरीज आती हैं वो स्टडी करें, उससे स्टूडेंट मोटिवेट भी होगा और लर्निंग भी होगी। जिस तरीके से बच्चा कम्युनिकेट करता जाएगा इंग्लिश में, तो इंग्लिश अपने आप ही एनहांस होती रहेगी, और जितना सोशल एक्टिव रहेगा बच्चा, उस तरीके से उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी गेन होगा।
1: बिल्कुल, तो मदर टंग तो हिंदी है ही हमारी,
0: हाँ जी,
1: बट इंग्लिश भी हमको आनी चाहिए, ये टेक्निकल लैंग्वेज है, इसको हमें आनी ही चाहिए।
0: बेसिकली देखो, इंग्लिश हम हिंदी हमारी मदर टंग है, राइट, मींस इंग्लिश हमारा कोई कंपल्शन नहीं है कि इंग्लिश आनी ही चाहिए। इंग्लिश हम बेसिकली, इंग्लिश एक आपकी ग्लोबल लैंग्वेज है, राइट। जब हमारी ग्लोबल लैंग्वेज है, राइट, जैसे कि हम इंडिया में ही रह रहे हैं, अगर हम साउथ रीजन में जाएंगे तो बेसिकली वो नहीं समझ सकते हमारी हिंदी, बट वो इंग्लिश इजिली समझ जाते हैं। तो इसीलिए अगर हमको दूसरे लोकेशंस में भी जाना है अपना करियर बनाते हुए, तो आपको सारी ही लैंग्वेजेस आनी चाहिए, बल्कि इंग्लिश नहीं, फ्रेंच भी आनी चाहिए, स्पैनिश भी आनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो है सारी कंपनीज यूएस बेस्ड हो चुके हैं और सारे ही क्लाइंट्स यूएस हैं, यूएस बेस्ड हैं। तो जिस तरीके से अगर हम यूएस को या फिर कोई भी यूरोपियन कंट्रीज को अगर लेते हैं, तो जो एक मेन मोटिव, जो हमारा एक डोमेन रहेगा, वो कम्युनिकेशन थ्रू इंग्लिश ही रहेगा।
1: बिल्कुल, रिज्यूम बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखें?
0: जो सबसे पहले तो आ जाता है उसमें करियर ऑब्जेक्टिव, राइट। करियर ऑब्जेक्टिव में वो अपना करियर बेसिकली डिस्क्राइब करेगा, राइट। सेकेंडरी आ जाती है उसकी क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन के बाद आ जाता है आपका स्किल सेट। स्किल सेट आपका दो टाइप का होगा, एक होगा आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और सेकेंडरी होगा आपका टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स में आपकी कंप्यूटराइज जितने भी स्किल सेट आता है वो मेंशन करना है, और जो स्किल्स होगा आपका, तो जो दूसरा वाला स्किल बताया है, दैट इज आपका सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स में आपका कम्युनिकेशन आ जाएगा, गोल ओरिएंटेशन आ जाएगा, वीकनेस भी स्टूडेंट्स मेंशन करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे पास स्ट्रेंथ है तो वीकनेस भी ऑटोमेटिकली आएगी ही आएगी, पर उस वीकनेस को आपको किस तरीके से ओवरकम करना है वो उस चीज को बच्चों को पता होना चाहिए। सेकेंडरी आ जाता है आपका, फिर आता है करिकुलम, जो भी आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करी है स्कूल, कॉलेजेस या किसी भी रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन में, और जितने भी बच्चों ने इंटर्नशिप्स करी है, जितने भी सेमिनार्स अटेंड करे हैं, सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए उसमें, एज अ फ्रेशर की बात बता रही हूँ मैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो है एडिशनल, जो आपकी डिटेल्स हैं, दैट इज योर पर्सनल डिटेल्स, वो आ जानी चाहिए। इस तरीके से मींस जो है रिज्यूमे आपका सेट हो जाता है। और स्टूडेंट्स से मैं एक बात और कहना चाहूंगी, राइट, जिस जब भी बच्चा कॉलेज में एडमिशन ले, राइट, तो उसको चाहे वो फर्स्ट ईयर में ही है, उसको इंटर्नशिप खुद ही सर्च करनी चाहिए, अगर कॉलेज वाले जो कॉलेज है वो सेकेंड ईयर से प्रोवाइड करते हैं या फिर थर्ड ईयर से प्रोवाइड करना शुरू करते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग स्टूडेंट को फर्स्ट टाइम में ही अपना इंटर्नशिप करना चाहिए, सो देट वो टेक्निकल नॉलेज, थ्योरेटिकल के साथ साथ टेक्निकल नॉलेज भी गेन करे।
1: मार्केटिंग और एचआर में अपना करियर बनाना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखो, अगर मार्केटिंग और एचआर में बनाना है, राइट, तो फर्स्ट पॉइंट है कि आपकी कन्विंसिंग पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। किस तरह से आप किसको कन्विंस कर सकते हो, राइट, इन अ पॉजिटिव वे। और सेकेंड है आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होनी चाहिए, चाहे वो रिटन हो चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन हो।
1: ओके, इन बातों का बच्चे ध्यान रखें।
0: बिल्कुल,
1: हम एक रैपिड फायर राउंड चला रहे हैं, आपको वन वर्ड में हमें आंसर देना है।
0: ओके,
1: तो आप हमें बताएं, डिग्री या स्किल्स?
0: बोथ,
1: दोनों जरूरी है। दोनों में से क्या जरूरी है, पैशन बच्चे में या पैकेज?
0: पैशन होगा तो पैकेज भी मिलेगा मैम।
1: गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब?
0: फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट विद प्राइवेट जॉब।
1: ओके,
0: प्राइवेट जॉब करते करते अगर आप कंटिन्यू गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करेंगे तो देट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर ईच एंड एवरीवन।
1: बिल्कुल, इंग्लिश या कॉन्फिडेंस?
0: बोथ मैटर्स,
1: दोनों जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क?
0: हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए मैम,
1: दोनों जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: रिज्यूम या पर्सनालिटी?
0: पर्सनालिटी विल बी डिस्क्लोज इन योर रिज्यूमे, राइट।
1: मार्क्स या टैलेंट?
0: टैलेंट विद मार्क्स।
1: ओके, दोनों जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: AI या ह्यूमन स्किल्स?
0: बोथ आर इम्पोर्टेंट, बिकॉज AI is already been developed by human resource.
1: Human. आप सफलता के लिए एक शब्द?
0: Every day should be a learning day.
1: हर दिन हम कुछ सीखें। चाबी हमारी यही है कि हर दिन हमें कुछ ना कुछ सीखना है।
0: देखो अगर आज हम हार्ड वर्क करेंगे राइट हाँ। तो इन रिटर्न हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा राइट
1: हाँ बिल्कुल। युवाओं के लिए प्रेरणादायक संदेश आपका क्या होगा?
0: प्रेरणादायक संदेश बेसिकली ये है, करते रहिए, डू समथिंग एवरी डे। हर एक दिन को आप एक लर्निंग डे के अकॉर्डिंग आप कंटिन्यू करें।
1: करते रहिए, सीखते रहिए, आगे
0: मोटिवेटेड रहिए हाँ। और कॉन्फिडेंस लेवल और फोकस बनाए रखें।
1: तो श्रोताओं, सफलता केवल डिग्री से नहीं बल्कि सही कौशल, सकारात्मक सोच और लगातार सीखने की इच्छा से मिलती है। हमें पूरा विश्वास है कि आज की इस भेंटवार्ता से हमारे युवा श्रोता अपने करियर को दिशा देने के लिए प्रेरित होंगे। निष्ठा तिमान मैम, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैम।
2: अभी हम सुन रहे थे एक भेंटवार्ता। आशा करते हैं इस भेंटवार्ता से आप अवश्य ही लाभान्वित हुए होंगे। दोस्तों, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में मंजिल तक वही पहुंचता है जो हर परिस्थिति में सही राह को चुनता है। कभी रास्ते आसान होते हैं तो कभी चुनौतियों भरे, लेकिन हिम्मत, विश्वास और सकारात्मक सोच हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जब मन डगमगाने लगे तब कुछ गीत केवल मनोरंजन नहीं करते बल्कि जीवन का संदेश भी देते हैं। ऐसा ही एक प्रेरणादायक गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं जो हमें सही मार्ग पर चलने, अपने लक्ष्य पर अडिग रहने और हर कठिनाई का साहस के साथ सामना करने की सीख देता है। तो आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म सिम्बा से।

अभी हम सुन रहे थे एक प्रेरणादायक गीत। उम्मीद है इस गीत को सुनकर आपका मन नई ऊर्जा, उत्साह और विश्वास से भर गया होगा। इसी गीत के साथ समय हो गया है आपसे विदा लेने का, परंतु हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि बरसात का मौसम है और ऐसे मौसम में आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। थोड़ी सी सावधानियां रखकर आप बरसात के मौसम में स्वस्थ रह सकते हैं। जहां तक संभव हो साफ और

0: खुला या शुद्ध पानी ही पिएं। भोजन हमेशा ताजा और पौष्टिक खाएं। अपने हाथों की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें और घर के आसपास पानी जमा ना होने दें ताकि मच्छरों का प्रजनन ना हो। यदि बुखार, लगातार खांसी, उल्टी, दस्त या कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दें तो स्वयं दवा लेने के बजाय चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। श्रोताओं, छोटी छोटी सावधानियों को रखकर हम इस बरसात के मौसम का आनंद भरपूर ले सकते हैं और स्वस्थ भी रह सकते हैं। इसी जानकारी के साथ समय हो गया है आपसे विदा लेने का, परंतु जाने से पहले जानना चाहेंगे आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा। अपनी शिकायतें और सुझाव देने के लिए हमें पत्र अवश्य लिखिए। हमारा पता है कार्यक्रम परिवार जगत, द्वारा के निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन नंबर 246763। इसी के साथ आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। इसी के साथ मुझे यानी अपने साथी दीप्ति माहेश्वरी को दीजिए अनुमति कार्यक्रम परिवार जगत संपन्न करने की। नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम परिवार जगत। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्स पर। दोपहर का 1:45 हुए हैं। अब सुनिए लोकधारा कार्यक्रम के अंतर्गत रतन सिंह की आवाज़ में जौनसारी लोकगीत।

0: आकाशवाणी नजीबाबाद से प्रत्येक मंगलवार को
1: शाम 6:05 पर कृषि जगत कार्यक्रम में सुनिए
0: गुणवत्ता युक्त बासमती धान उत्पादन हेतु
1: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा
0: साप्ताहिक आयोजित कार्यक्रम

श्रोताओं, इसी जौनसारी लोकगीत के साथ कार्यक्रम लोकधारा अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़।

0: to US attacks on its military targets. And in women's cricket, hosts England to resume their second innings at 130-6 against India in historic one-off test at the Lords. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। वियतनाम में नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर आज रात विशेष विमान से भारत पहुंचेंगे। ईरान ने अपने सैन्य ठिकानों पर अमरीकी हमलों के जवाब में जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन आज भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज असम के विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और

0: गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने याचिकाओं की सुनवाई की। इससे पहले 13 जून को एसआई का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में किसी गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। तमिलनाडु सरकार ने उच्च न्यायालय के 27 मई के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें प्रशासन से 28 मई को बकरीद की पूर्व संध्या पर या किसी भी और दिन राज्य में गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने को सुनिश्चित करने को कहा गया था। राज्य सरकार ने इस आदेश को तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम 1958 के विपरीत बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। एआई के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री रक्षा को मजबूत करने के लिए मात्र 1 महीने में 4 नई पीढ़ी के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं। इनमें शामिल नवीनतम जहाज आईएनएस महेंद्रगिरी है जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 6वां नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आईएनएस महेंद्रगिरी को इस महीने की 11 तारीख को नौसेना में शामिल किया गया था।
2: पिछले महीने के 21 तारीख को स्वदेश में डिजाइन और निर्मित 3 प्लेटफॉर्म आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं और इन्हें वायु, सतह तथा पनडुब्बी रोधी अभियानों सहित बहुआयामी सैन्य अभियानों के लिए तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना का उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट कार्यक्रम है जिसके तहत अगली पीढ़ी के 7 गाइडेड मिसाइल युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है। उन्नत स्टेल्थ विशेषताओं और उच्च स्तर की स्वचालन प्रणाली से लैस ये युद्धपोत नौसैनिक युद्ध के साथ सभी आयामों में समुद्री अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। उच्च स्वदेशी कंटेंट के साथ निर्मित ये प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और देश के रक्षा विनिर्माण तंत्र को मजबूत करते हैं। ये सामूहिक रूप से समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं, ब्लू इकोनॉमी को समर्थन देते हैं और देश को एक अग्रणी समुद्री शक्ति के रूप में और मजबूत बनाते हैं। पल्लवी परमार के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश प्रौद्योगिकी विकास सम्मेलन का 3रा संस्करण आज भोपाल में हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने 178 करोड़ 70 लाख रुपए के कुल निवेश वाली 20 औद्योगिक इकाइयों का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी प्रौद्योगिकी और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पिछले वर्ष बार्सिलोना की उनकी यात्रा के बाद स्पेन, अमेरिका और कनाडा की कंपनियों ने राज्य में निवेश किया है।
3: अपने 2 वर्ष के अंदर जो लाख लगाई, ये केवल यहाँ का अभियान हमारे कुछ नहीं हुआ। अब मध्यप्रदेश में स्पेन, कनाडा, अमेरिका, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां ने एफडीआई के माध्यम से 28,200 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे प्रदेश के अंदर कर लिया है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ट की ओर से दायर याचिका के बाद ये संज्ञान लिया। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और

0: संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा योजना पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सब मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरण में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में आयोजित एक समारोह में बिहार हेलीकॉप्टर पर्यटन और हवाई पर्यटन सेवा योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सेवा के लिए एक ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
1: लोगों को बिहार दर्शन कराना है, ये सिर्फ शोकेस में नहीं रखना है, ये पूरी तरह ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पर डे हम बिहार दर्शन करा सके। बिहार की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का रोल हो तब समझिए गया कि टूरिज्म का रास्ता बदला। हम आम लोगों को सैर कराने का काम कर रहे हैं।
0: श्री चौधरी ने कहा कि साप्ताहिक हवाई पर्यटन सेवा को भविष्य में दैनिक सेवा में विस्तारित किया जाएगा। योजना के पहले चरण में पटना, वाल्मीकि नगर, मां मुंडेश्वरी और राजगीर को शामिल किया गया है। राज्य सरकार प्रति टिकट 15,422 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा 18 जुलाई से शुरू होगी और प्रत्येक शनिवार और रविवार को संचालित होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार इस कार्रवाई में जॉर्डन के प्रिंस हसन हवाई अड्डे, बहरीन के शेख ईसा हवाई अड्डे और कुवैत में अली अल सलीम और अहमद अल जाबेर हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। IRGC ने दावा किया है कि इससे ईंधन भंडार, गोला बारूद भंडारण प्रतिष्ठानों, वायु रक्षा प्रणालियों और रडार ढांचे को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने हुरमुज़ जलडमरू मध्य में आगे किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करने पर अमरीका को चेतावनी दी है। ये दावे अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आए हैं जिसमें ईरान में कई जगहों पर आक्रामक हमले किए गए थे। इन हमलों में कई सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में बाधा डालने की ईरान की क्षमता को कमजोर किया जा सके। अमरीका ने कहा है कि ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा और आवाजाही में स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए थे। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। न्यूजीलैंड के अभिनेता सैम नील का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे जुरासिक पार्क और द पियानो जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। महिला क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड की टीम आज चौथे दिन अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। भारत ने इंग्लैंड को 457 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने 269 रन की बढ़त बनाते हुए दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन पर घोषित कर दी। विकेटकीपर और बल्लेबाज यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इंग्लैंड पहली पारी में 170 रन पर ही सिमट गई थी। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक बारिश का अनुमान है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज सामान्य रूप से कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स 20 अंक बढ़कर 77,589 पर और निफ्टी 7 अंक गिरकर 24,200 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब पेश है कार्यक्रम नई फिल्मों से। श्रोताओं, नई फिल्मों से कार्यक्रम के अंतर्गत आइए, हम आपको सुनाने जा रहे हैं रॉक स्टार फिल्म का ये गीत, मोहित चौहान और सुनेडे डी मेलो की आवाज में, ए आर रहमान के संगीत निर्देशन में। ये गीत लिखा है इरशाद कामिल ने।

0: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी रागम आनंद की अटूट रसधार।
1: नई फिल्मों से कार्यक्रम के अंतर्गत आइए श्रोताओं, अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं हॉलीडे फिल्म का ये गीत अरिजीत सिंह की आवाज में। गीत लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत है प्रीतम का।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये गीत सुना आपने अभी हॉलीडे फिल्म से। और श्रोताओं, आइए अब आपको सुनवाने जा रहे हैं जुबिन नौटियाल की आवाज़ में ये गीत, मरजामा फिल्म का। गीत लिखा है कुणाल वर्मा ने और संगीत दिया है पायल देव ने।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से। श्रोताओं, आइए इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आशिकी 2 फिल्म का गीत मुस्तफ़ा जाहिद की आवाज़ में। गीत लिखा है संजय मासूम ने और धुन तैयार की है जीत गांगुली ने।

श्रोताओं, आशिकी 2 फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना मुस्तफ़ा जाहिद की आवाज़ में। और इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं के और क्षितिज तारे की आवाज़ में ये गीत, द ट्रेन फिल्म का। गीत के बोल लिखे हैं सईद कादरी ने और संगीत दिया है मिथुन ने।

मिड डे मील, क्षमा कीजिए, नई फिल्मों से कार्यक्रम के अंतर्गत। श्रोताओं, अब इस कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। फिल्म का नाम है तेरे इश्क में। आवाज है फहीम अब्दुल।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम नई फिल्मों से अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 3 बजे हैं, हमारी ये प्रसारण सभा अब यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव शाम के 5 बजे हैं। अब हमारे सांध्यकालीन सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते ही हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको नित जानकारी कराते हैं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के विषय में। तो आज इसी क्रम में हम पेयजल समस्या को दूर करने हेतु शुरू की गई सरकारी योजनाओं जैसे कि हर घर नल योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के विषय में चर्चाएं करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हर घर नल योजना के विषय में। जल जीवन के मिशन के अंतर्गत हर घर नल से जल योजना का उद्देश्य प्रत्येक घर में चालू नल कनेक्शन उपलब्ध कराना है ताकि घर की महिलाओं पर पानी लाने का बोझ कम हो सके। इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य सन 2026 तक देश के सभी नागरिकों को स्वस्थ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सतत जल आपूर्ति संपर्क प्रदान करना है। यह मिशन लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्यों के सहयोग से काम कर रहा है। राज्यों ने गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोगों के गांवों में घरों में नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए मौजूदा जल आपूर्ति योजनाओं के आधुनिकीकरण और संवर्धन पर जोर दिया है। महामारी के दौरान घरेलू नल कनेक्शन की व्यवस्था ने ग्रामीण परिवारों को पानी प्राप्त करने में सहायता प्रदान की, जिससे उन्हें पानी लेने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ लगाने से मुक्ति मिली। हर घर नल योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के हर परिवार को उनके घर में नल से शुद्ध और पर्याप्त पीने का पानी देना है। हर व्यक्ति को हर दिन 55 लीटर पानी मिलता है। यह योजना उत्तर प्रदेश के हर गांव में भी तेजी से लागू की जा रही है। महिलाओं को दूर से पानी लाने की मेहनत से छुटकारा मिलता है। दूषित पानी से होने वाले रोग जैसे पेट दर्द और दस्त कम होते हैं। योजना के तहत ग्रामीणों को मुफ्त में नल का कनेक्शन दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में इस योजना का बड़ा हिस्सा सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य की रोशनी से चलने वाली बिजली से चलता है। इससे बिजली का खर्च बचता है और पानी सस्ता मिलता है। पानी से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर 1916 का उपयोग कर सकते हैं। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के विषय में। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को वर्ष 2009 में ग्रामीण जलापूर्ति से संबंधित पूर्व योजनाओं को पुनर्गठित कर लागू किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को घरेलू उपयोग, खाना पकाने और पेयजल के लिए पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित पानी उपलब्ध कराना था। यह योजना केंद्र और राज्य सरकारों की साझेदारी में संचालित की जाती थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष रूप से उन गांवों को प्राथमिकता दी गई जहां पेयजल की उपलब्धता कम थी या जहां फ्लोराइड, आर्सेनिक, आयरन, नाइट्रेट जैसी जल गुणवत्ता संबंधी समस्याएं मौजूद थीं। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों की बड़ी आबादी लंबे समय तक सुरक्षित पेयजल सुविधाओं से वंचित रही। कई राज्यों में भूजल का अत्यधिक दोहन, जल स्रोतों का सूखना, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं ने पेयजल संकट को और गंभीर बना दिया। इसके अतिरिक्त अनेक गांवों में जल स्रोत मौसमी थे, जल गुणवत्ता से संबंधित समस्याएं बढ़ रही थी। महिलाओं और बच्चों को पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। जल जनित रोगों का खतरा अधिक था। इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक और टिकाऊ ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की शुरुआत हुई। ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, भूजल पुनर्भरण, वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण के माध्यम से जल स्रोतों को टिकाऊ बनाना, फ्लोराइड, आर्सेनिक, आयरन और अन्य प्रदूषकों से प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित जल उपलब्ध कराना, ग्राम पंचायतों और स्थानीय समुदायों को योजना के संचालन और रखरखाव में शामिल करना, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी पेयजल सुरक्षा स्थापित करना, ये सब इस योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं।
इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायतों और स्थानीय समुदायों को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। इसमें फ्लोराइड और आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में विशेष परियोजनाएं चलाई गईं। इसके अंतर्गत केवल पाइपलाइन बिछाने के बजाय जल स्रोतों को मजबूत करने पर भी बल दिया गया। जल योजनाओं को स्थानीय स्तर पर संचालित करने की अवधारणा को बढ़ावा मिला। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम ने ग्रामीण क्षेत्रों में कई सकारात्मक परिवर्तन लाए। स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होने से जल जनित रोगों में कमी आई। पानी लाने में लगने वाला समय कम हुआ, जिससे महिलाओं और बालिकाओं को शिक्षा और अन्य कार्यों के लिए अधिक समय मिला। जल उपलब्धता से जीवन स्तर में सुधार हुआ और ग्रामीण विकास को गति मिली। जल संकट कम होने से श्रम उत्पादकता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभ मिला। तो ये बात हुई राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के विषय में। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारियाँ पसंद आई होंगी। और अब चलते चलते आइए सुनते हैं ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 5:10 होने को हैं। प्रस्तुत है जानकारी आज की सभा के शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। पहले जानकारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों के विषय में।

कार्यक्रम पब्लिक स्पीक आज रात्रि 9:30 पर हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी सुनिएगा आज शाम 5:15 पर। किसान भाइयों के दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत में आज शाम 6:05 पर सफल कृषक श्री सेठपाल सिंह से अंकित कुमार की वार्ता का विषय होगा सिंघाड़ा उत्पादन से अधिक लाभ। विविधा क्रम में आज शाम 6:45 पर श्रीमती सुषमा अग्रवाल की वार्ता का विषय होगा हिंदी साहित्य की वर्तमान स्थिति और प्रासंगिकता। छायागीत सुनिएगा आज शाम 6:55 पर। सुगम संगीत में आज शाम 7:32 पर आदित्य कुमार

0: गीत संध्या कार्यक्रम सुनिएगा आज रात्रि 8 बजे, आज रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से भूले बिसरे गीत। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आज रात्रि 10 बजे, आज रात्रि 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अभी आप सुन रहे थे जानकारी कल आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में, और अब एक नजर कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों पर। कल रात्रि 10 बजे राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत कार्यक्रम खेल दर्पण हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना सुनिएगा कल सवेरे 6:05 पर, कल सवेरे 6:30 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान की संगीतमय प्रस्तुति। काव्यधारा क्रम में कल सवेरे 6:45 पर सुश्री अर्चना का काव्य पाठ सुनवाया जाएगा। सूरज के साथ साथ कार्यक्रम आप सुनेंगे कल सवेरे 7:31 पर, कल सवेरे 8:45 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम गोल्डन हिट्स गीत तुम्हारे। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल सवेरे 10 बजे। धरती गाती है कार्यक्रम में कल सवेरे 9:25 पर सोनल टोंक के गाए रुहेलखंडी लोकगीत सुनवाए जाएंगे। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे कल दिन में 11:30 पर। कार्यक्रम सैनिकों के लिए हम आपको सुनवाएंगे कल दोपहर 12:05 पर, कल दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। महिला जगत कार्यक्रम में कल दोपहर 1:15 पर डॉक्टर सुचि शर्मा की लिखी कहानी लिफाफा सुनवाई जाएगी। लोकधारा कार्यक्रम में कल दोपहर 1:45 पर सुभाष पांडे के गाए गढ़वाली लोकगीत सुनवाए जाएंगे। एक ही कलाकार कार्यक्रम सुनिएगा कल दोपहर 2:30 पर, मेरा सपना उन्नत भारत, ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे कल शाम 5 बजे। कल शाम 6:05 पर किसान भाइयों के दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत में बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मेरठ द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला के अंतर्गत डॉक्टर पिंटू कुमार से सुवेंद्र सिंह की बातचीत का विषय होगा बासमती धान से संबंधित रोग प्रबंधन। विविधा क्रम में कल शाम 6:45 पर मोहम्मद आरिफ की वार्ता का विषय होगा खेलों से समर्था नौनिहालों का भविष्य। छायागीत सुनिएगा कल शाम 6:55 पर। सुगम संगीत में कल शाम 7:32 पर शीलाधर के गाई चंद गजलें सुनवाई जाएंगी। गीत संध्या कार्यक्रम आप सुनेंगे कल रात्रि 8 बजे, और कल रात्रि 8:30 पर होगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। अभी आप सुन रहे थे आज की सभा के शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 5:15 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।
1: दोस्तों, समय हो गया है शाम के 5:15 और आपका अपना प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं हम युववाणी, और मैं हूं आज आपके साथ आपकी अपनी साथी शिवानी।
2: और शिवानी के साथ प्रोग्राम में रहूंगी मैं आपकी अपनी दोस्त और आज की वन ऑफ द होस्ट रुमान परवीन।
1: तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आज प्रोग्राम में क्या होने वाला है।
2: शुरुआत होगी पूजो तो जाने के सवाल के साथ, उसके बाद रहेगा हमारा डेली सेगमेंट कुछ खास आज।
1: साथ ही हम सुनेंगे आज से शुरू हो रही हमारी कहानी उसने कहा था, जिसका आज टाइटल है उसने कहा था, और आज अब सुनेंगे एपिसोड नंबर 1। और मंडे स्पेशल सेगमेंट क्रैश कोर्स पैसा वसूल में आपको मिलेगी फुल पैसा वसूल जानकारी।
2: और सेगमेंट गपशप अड्डा, जिसमें हम जुड़ेंगे आपसे कॉल्स के जरिए,
1: और कॉल करने के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 9457078288।
2: चलिए अब हम आपसे पूछते हैं आज का पूछो तो जाने का सवाल।
1: और सवाल है दोस्तों हमारा, कुछ कुछ होता है के निर्देशक कौन है, फिल्म कुछ कुछ होता है के निर्देशक कौन है।
2: सही जवाब आपको लिख भेजना है हमारे फेसबुक पेज आकाश।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
2: दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे। हमारे डेली सेगमेंट कुछ खास है आज के साथ,
3: जिसमें आज हम बात करेंगे हमारे रोज एक नया चेंज विषय पर।
2: दोस्तों, जिंदगी में हर दिन 24 घंटे देती है। अमीर हो या गरीब हो, या छात्र हो या व्यापारी हो, हर किसी के हिस्से में एक जैसा वक्त आता है।
3: फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई इस वक्त को बहाने बनाकर खर्च कर देता है और कोई उसी वक्त में अपने सपनों की नींव रख देता है।
2: दोस्तों, अगर आज सुबह आपकी आंख खुली है तो यकीन मानिए जिंदगी ने आपको एक और नया मौका दिया है, एक और नया चांस दिया है अपनी गलतियों को सुधारने का, अपने जो रिश्ते हैं उसे संवारने का, अपने सपनों को एक कदम और बढ़ाने का।
3: हम अक्सर सोचते हैं कि अब बहुत देर हो गई, अब मुझसे नहीं होगा, लेकिन सच तो ये है कि मंजिल तक पहुंचने वाले लोग किस्मत का इंतजार नहीं करते, वह अपने कदमों पर भरोसा करते हैं।
2: याद रखिए दोस्तों, हारने वाला इंसान कभी इसलिए नहीं हारता कि उसके पास ताकत कम थी। कई बार वो इसलिए हार जाता है क्योंकि उसने कोशिश करना छोड़ दिया। अगर दोस्तों आज आपकी मेहनत का फल नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेहनत बेकार हो गई। हो सकता है जिंदगी आपको और मजबूत बना रही हो।
3: तो दोस्तों, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि हर दिन सच में एक नया मौका है।
2: और अब प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट कहानी के उस पार के साथ, जिसमें आज आप सुनेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था, और जिसे प्रेजेंट किया है हमारी साथी रुमान परवीन ने। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं।
3: दोस्तों, कहानी के उस पार सेगमेंट के अंतर्गत आज आप सुनेंगे उसने कहा था कहानी का पहला भाग। बड़े बड़े शहरों में तांगा इक्का चलाने वाले लोग अक्सर बहुत तेज और रोखे लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं लोगों को रास्ते से हटाने के लिए। उनकी बातें सुनकर लोगों को काफी बुरा लगता है, लेकिन अमृतसर के बम्बो कार्ड चलाने वाले बिल्कुल अलग होते हैं। वो बहुत प्यार और इज्जत से लोगों को रास्ता देते हैं। तंग गलियों में भी वो बड़े इत्मीनान से आवाज लगाते हैं, बच्चों खालसा जी, आने दो लाला जी। अगर कोई बूढ़ी औरत बार बार कहने पर भी रास्ते से नहीं हटती तो भी वो गुस्सा नहीं करते और कहते हैं, हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्म वालिए, हट जा लंबी उम्र वालिए। इन बातों का मतलब यही होता है कि सामने वाले की भलाई हो और उसे कोई चोट ना लगे। यही अमृतसर वालों की मीठी और इज्जत देने वाली बोली थी। वहीं बम्बू कार्ट वालों की भीड़ के बीच एक दिन एक लड़का और एक लड़की दुकान पर मिले। दोनों सिख थे। लड़का अपने मामा के लिए दही खरीदने आया था, क्योंकि उसके मामा को बाल धोने थे। लड़की अपनी रसोई के लिए बड़ियां खरीदने आई थी। दुकानदार किसी दूसरे ग्राहक में व्यस्त था, इसलिए दोनों को कुछ देर इंतजार करना पड़ा। इसी बीच लड़के ने लड़की से पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? मगरे में। और तुम्हारा? मांझे में। यहाँ कहाँ रहती हो तुम? लड़की बोली, मैं अतर सिंह की बैठक में रहती हूँ, वे मेरे मामा हैं। अरे, मैं भी तो अपने मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। थोड़ी देर बाद दुकानदार ने उन दोनों को सामान दिया और दोनों साथ साथ चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद लड़के ने शरारत में पूछा, तेरी कुड़माई हो गई, यानी तुम्हारी सगाई हो गई? ये सुन के ही लड़की ने आंखें शर्माई, तत कहकर वो दौड़ कर चली गई। वो वहीं खड़ा रहा और उसे जाते हुए देखता रहा। इसके बाद कई दिन तक दोनों की मुलाकात कभी सब्जी वाले के यहाँ तो कभी दूध वाले के यहाँ तो कभी बाजार में हो जाती। हर बार लड़का हंसते हुए बस यही सवाल करता, तेरी कुड़माई हो गई, और हर बार लड़की शर्माते हुए थत कहकर भाग जाती। लगभग एक महीना इसी तरह बीत गया, लेकिन एक दिन जब लड़के ने फिर वही सवाल पूछा तो इस बार लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हो गई। लड़का चौंक गया, उसने जल्दी से पूछा, कब? लड़की ने अपने रेशमी कढ़ाई वाले दुपट्टे की ओर इशारा करते हुए कहा, कल, देखते नहीं है नया दुपट्टा। इतना कहकर वो हंसते हुए भाग गई। उसकी बात सुनकर लड़के का दिल टूट गया, उसे बहुत दुख हुआ। उदास गुस्से में वो घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने गुस्से में कई शरारतें कर डाली। एक लड़के को नाली में धक्का दे दिया, एक खोमचे वाले का सामान गिरा दिया, एक कुत्ते पर पत्थर फेंका, एक वैष्णवी स्त्री से भी टकरा गया जिसने गुस्से में उसे अंधा कहीं का, देख के तो चल। बहुत दुखी मन से आखिर वो अपने घर पहुंचा। यहीं कहानी का पहला भाग समाप्त होता है। ये एक छोटी सी घटना लहरा सिंह की पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा वादा बन जाती है। जानने के लिए सुनना ना भूले अगला भाग। तो अपने दोस्तों का जो इंतजार है उसे खत्म करना है शिवानी, क्या ख्याल है तुम्हारा?
2: हाँ रुमान, हमारे दोस्त जो है वो इंतजार कर रहे होंगे हमारे सेगमेंट गपशप अड्डा का।
3: तो फिर देखते हैं कि आखिर हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो।
4: हाँ जी नमस्कार मैम।
3: नमस्कार, आपका नाम?
4: मांगीलाल धाकड़ बोल रहा हूँ, मैं बड़ा गाँव जिला गुना मतगढ़ जी।
3: कैसे हैं आप?
4: मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हो?
2: जी हम भी बहुत अच्छे हैं।
3: और जी, क्या हो रहा है आजकल?
4: खेती बाड़ी का व्यवसाय है मेरा, किसान हूँ।
3: वैसे आजकल तो काफी बारिश हो रही है।
4: जी हमारे गुना जिला में बारिश हो गई है।
3: जी जी
4: जी मैम।
3: तो आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
4: मुझे वो वीर ज़ारा का सुनवा देना।
3: ठीक है, वीर ज़ारा का कौन सा सॉन्ग?
4: ये दो पल।
3: ठीक है, हम अभी आपकी फरमाइश पे आपको सुनवाते हैं ये गीत।
4: जी जी मैम।

0: तो शिवानी देखते हैं कि अगली कॉल आखिर हमारे पास आई किस की है। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: ग्राम सनोतिया, जिला गुना, मध्य प्रदेश से बहन जी आपका भाई मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं आप?
1: बस बहन जी, आपकी दुआ और भगवान की कृपा से मैं ठीक हूँ, और मैं इस बार से यही कामना करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे।
0: जी हम भी अच्छे हैं।
1: जी
0: और बताइए, आपके यहाँ मौसम कैसा हो रहा है?
1: मौसम बढ़िया मौसम है, चार रोज से बारिश थमी हुई है और थोड़ी गर्मी है। आसमान में बादल तो छाए हुए हैं, लेकिन जी, बारिश नहीं हो रही चार रोज से।
2: थोड़ी धूप धूप से तो राहत ही।
1: हाँ, धूप निकल या धूप छाव का वो चल रहा है, मतलब नेकमई धूप और नेकमई छाव।
0: जी जी, तो आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: आज तो बहन जी हमारी पसंद तो हम हर बार ही सुन रहे हैं
0: जी,
1: लेकिन आप मेरी पसंद पे कोई सा भी सॉन्ग आप सुनवा देना, वो मेरी पसंद बन जाएगी।
2: जी तो ठीक है, उम्मीद है हम जो आपको सॉन्ग सुनवाएंगे वो आपको पसंद आएगा।
1: तो, जी, जी जी
2: तो जी हम सुन,
1: तो बहन जी कुछ मित्रों को याद कर सकता हूँ?
0: बिल्कुल कर सकते हैं।
1: नरेश प्रजापति जी हैं, गजराज लोधी जी हैं, बसंती लाल जी हैं, और केसरी सिंह राजपूत जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, रामबाबू शर्मा जी हैं, और तमाम हमारे फूलचंद जी पाल जी हैं मनकारी से
2: जी, तो
1: मकसूद हुसैन साहब हैं, और मोहम्मद वकार फरीदी जी हैं, विष्णु अग्रवाल जी हैं, रानी अग्रवाल जी हैं, इन सभी को ये गाना डेडिकेट रहेगा।
0: जी बिल्कुल, तो चलिए हम सुनवाते हैं आपको ये गीत। शुक्रिया
1: जी।

0: या नहीं भी, लेकिन दोस्तों आखिर ये है क्या? आइए जानते हैं इसे आसान भाषा में। दोस्तों जरा सोचिए, आपके फोन पर किसी बड़े अभिनेता या कोई नेता या फिर किसी परिचित का एक वीडियो आता है। वीडियो देखकर लगता है सब कुछ बिल्कुल असली है, रियल है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो वीडियो नकली था। यही कमाल है डीप फेक तकनीक का। दरअसल दोस्तों डीप फेक एक ऐसी तकनीक है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद से काम करती है। इसमें किसी व्यक्ति की तस्वीरों, वीडियो और आवाज का विश्लेषण करके एक ऐसा नया वीडियो या ऑडियो तैयार किया जाता है जिसे देखकर या सुनकर असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए दोस्तों किसी व्यक्ति की इंटरनेट पर मौजूद कई तस्वीरें, वीडियो और उसकी आवाज AI को दे दी जाए। AI उन सभी चीजों को समझता है, उनसे सीखता है और फिर एक ऐसा नया वीडियो तैयार करता है जिसे देखकर लगता है कि वही व्यक्ति बोल रहा है, जबकि असलियत में उसने ऐसा कभी कहा ही नहीं, कभी बोला ही नहीं। लेकिन दोस्तों क्या डीप फेक हमेशा बुरा होता है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए तो इसका फिल्मों में शानदार विजुअल इफेक्ट्स बनाने, पुरानी फिल्मों को बेहतर बनाने, अलग अलग भाषाओं में डबिंग करने, शिक्षा में और रिसर्च जैसे कई क्षेत्रों में इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन हर तकनीक की तरह इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। कुछ लोग किसी की नकली वीडियो बनाकर अफवाह फैला सकते हैं, किसी की छवि खराब कर सकते हैं, लोगों से ऑनलाइन ठगी कर सकते हैं या सोशल मीडिया पर गलत जानकारी भी फैला सकते हैं। दोस्तों अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि डीप फेक को पहचाने कैसे? कुछ आसान संकेत इस तरह हैं, जैसे अगर वीडियो में होठ और आवाज का तालमेल ठीक ना हो, चेहरे के हाव भाव थोड़े अजीब लगे, आंखों की झपक या चेहरे की हरकतें अजीब दिखें, या फिर वीडियो कुछ ज्यादा ही सनसनीखेज लगे, तो बिना जांचे उस पर भरोसा मत कीजिए। और याद रखिए, आजकल AI इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि हर डीप फेक को सिर्फ देखकर पहचान पाना हमेशा आसान नहीं होता। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों जानकारी की पुष्टि करना। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। इसलिए हर वायरल वीडियो पर यकीन करने से पहले उसे परखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी सिर्फ एक क्लिक से गलत जानकारी लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। और दोस्तों डिजिटल दुनिया में सिर्फ स्मार्टफोन होना काफ़ी नहीं है, स्मार्ट यूज़र होना भी ज़रूरी है। और ज़रूरी है आप जागरूक रहें, सतर्क रहें। और दोस्तों उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट अपने क्रैश कोर्स पैसा वसूल में किसी नई जानकारी के साथ।
1: तो शिवानी, अब देखते हैं कि आखिर अगली कॉल आई किस लिसनर की।
2: हेलो
3: हेलो
4: हेलो
1: हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं?
4: जी दीदी, मैं ग्राम बिडोरा तहसील छवड़ा जिला दतिया से लोकेन गुर्जर बोल रहा हूँ।
1: कैसे हैं आप?
4: बिल्कुल दीदी बढ़िया है। और दीदी आप कैसे हो?
1: जी हम भी बहुत अच्छे हैं,
4: बहुत अच्छे हैं। तो धन्यवाद। और दीदी बारिश हो रही है आपके नजीबाबाद में?
1: नहीं बारिश तो नहीं हो रही है, आज तो नहीं हुई है।
4: तो दीदी हमारे तो जिला दतिया में अभी 2-3 दिन से पानी नहीं गिरा है, लेकिन गर्मी पड़ी है, उमस है और बादल छाए हैं, तो हो सकता है कि इंद्र देव की मेहरबानी हो जाए।
1: जी यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मौसम है।
4: जी दीदी जी,
1: तो लोकेंद्र जी आज आपने प्रोग्राम में कॉल लगाई है, तो कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
4: जी दीदी हमारी प्रेम कहानी ऐसी कुछ फिल्म का नाम है,
1: हमारी अधूरी कहानी।
4: हाँ बिल्कुल, इसका टाइटल सॉन्ग सुनना है।
1: बिल्कुल हम अभी आपको सुनवाते हैं खूबसूरत सा गीत।
4: कुछ दोस्तों को डेडिकेट कर सकते हूँ?
1: बिल्कुल कर सकते हैं आप।
4: तो दीदी पहले तो आप लोगों को जो कि आज इस कार्यक्रम में आप प्रस्तुति दे रही हो, आप दोनों को लिए डेडिकेट है दीदी। उसके बाद हमारे दोस्त हैं जयपाल यादव जी हैं, अंजलि जाटव जी हैं और सतीश भाई है, चांद मोहम्मद जी, मेहरबानी।
1: बिल्कुल, तो अब हम आप सभी की फरमाइश पे सुनवाते हैं गीत।
4: जी दीदी।

0: और अब देख लेते हैं सही जवाब देने वाले दोस्तों के नाम। जगदीश धाकर, जॉन डी क्रेस्टो, देवशंकर तामुरिया, नंद कुमार ठाकुर, सुरेश राठौड़, मोहम्मद रफीक पवार, पी एल सन्हावकर, भागवत चौबे, सुदर्शन शाह, दिनेश वर्मा, चंद्रभान राजवाड़े, मोहम्मद जावेद, महेंद्र मोदी, अशोक सिंह, रामचंद्र गुप्ता, आसिफ चौधरी, धर्मेंद्र छिपा, निसार सलमानी, राष्ट्रपाल गजभिये।
1: संजय ढींगिया, फागुराम यादव, राघव बघेल, राजकुमार दूधी, सोहन जोशी, हीरामानी वर्मा, दिग्दर्शन गौड़, बी.आई. धाकड़, मोहम्मद हसनैन पवार, रामकुमार रेवार, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, नबी हसन अब्बासी, शमसुल कुमार राही, बी कमाल, नरेश मल्होत्रा, विठल सुरोशे, बलवंत कुमार वर्मा, राजेश वर्मा, हेमंत कुमार, बबलेश पवार, गगनदीप ठांडी, जाकिर मंसूरी, अनिल बी गोट के, शेख मूसा, नाना लामसे, आकाश रस्तोगी, दुर्गाराम साहू, गंगा सिंह रावत, मोहम्मद अब्दुल ताज, लाल मोहम्मद अंसारी। और इसी के साथ दोस्तों अब देखते हैं कि आखिर हमारे पास अगली कॉल किस लिसनर की आई है।
0: हेलो,
2: हेलो, नमस्कार मैडम
0: नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं?
2: जी। मैं तो बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद उत्तर प्रदेश के। वो कल पर्यावरण दिवस मनाया गया था, तो पेड़ पौधे लगाइए। तो लगाया था, बहुत अच्छा लगा। देखें, बहुत पेड़ पौधे लगाना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। जिस बारिश के मौसम में चौमा कह रहे थे,
0: जी
2: बहुत अच्छा लगा। आपका प्रोग्राम सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, एक बाड़ी वाला। तो
0: जी
2: आप जो बढ़िया जानकारी देती है, तो
0: जी बहुत अच्छा लगा ये सुन के हमें। तो आज प्रोग्राम में
2: और
0: आपने
2: पेड़ पौधे मैंने वही कहना चाहता, पेड़ पौधे कोई हो, छोटा कोई हो, पेड़ पौधे लगाना चाहिए। क्योंकि अपना पेड़ पौधे नहीं लगाओगे, फिर बारिश होगी, गर्मी पड़ती है, कौन सर्दी
0: जी
2: पड़ती है,
0: जी
2: तो इन्हीं इन्हीं के वजह से यहाँ सब पर्यावरण का दिक्कत आ रही है।
0: जी जी
2: पेड़ पौधे जरूर लगाना।
0: आप हमें बताइए कि आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
2: आज मुझे अलविदा ना कहना है, तो ये जाते जाते ये गाना सुनवा दीजिए।
0: बिल्कुल,
2: बहुत
0: हम
2: फेवरेट, मेरा मेरा फेवरेट सॉन्ग है ये मैडम जी।
0: बिल्कुल हम अभी आपको सुनवाते हैं खूबसूरत सा गीत।

0: दोस्तों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम्स आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें जरूर बताइएगा अपने खत के जरिए। और खत लिखने के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम युववाणी अनुभाग, द्वारा के निदेशक, आकाशवाणी, नजीबाबाद, पिन कोड 246763।
1: इसी के साथ हमें व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं अपडेटेड रहने के लिए। हमारा फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @आकाशवाणी नजीबाबाद। साथ ही आप हमारे पुराने प्ले, कहानियाँ सब सुन सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जो कि है आकाशवाणी नजीबाबाद। इसी के साथ आप दीजिए अनुमति कार्यक्रम सम्पन्न करने की, मैं रुमान
0: और शिवानी को कार्यक्रम सम्पन्न करने की अनुमति। नमस्कार, नमस्कार।

युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 6 बजने को है, थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए और इसके लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायालय ने असम के विदेशी न्यायाधिकरणों से विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए ये बात कही। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष जांच दल से जांच संबंधी रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को इस मामले में 3 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्रियों को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधा योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 6 लेन का यह देश का दूसरा सबसे लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर है। इसकी लंबाई 63 किलोमीटर है। यह स्वचालित और रोबोटिक मशीनों की सहायता से निर्मित देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। इस एक्सप्रेसवे से लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर केवल 35 से 45 मिनट रह जाएगा। दोनों शहरों के बीच कार से यात्रा करने पर ₹275 टोल टैक्स लगेगा। एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहनों की अनुमति नहीं है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेजी से विकास होगा।
1: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस

0: प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही हैं और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी और सैनिक स्कूलों के बारे में जानकारी दी। एनसीसी के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कैडेट विनियम कार्यक्रम को राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की एक उत्कृष्ट पहल बताया। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान सहित एनसीसी की सामुदायिक सेवा पहलों की भी प्रशंसा की। भारत और जापान ने मुक्त खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान के टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के आठवीं दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान दोनों ने हुर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। हुर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान द्वारा किए गए हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन की लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर ही सिमट गई। भारत ने अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट पर 341 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: या अंकित कुमार की राम राम। और सुनाओ किसान भाइयों, कैसे हाल चाल हैं आपके? खैर देखो भैया, हाल चाल तो हमारे किसान भाई के भैया बढ़िया ही होंगे, और भैया हमारे किसान भाइयों की खेती बाड़ी भी ठीक ठाक चल रही होगी। और जो भैया हमारे पशु, हमारे किसान भाई ने भैया पशु पाल रखे हैं, उनका भी भैया हमारे किसान भाई जो अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। भैया उन्हें समय से भैया चारा दे रहे होंगे, पानी दे रहे होंगे, और भैया साथ साथ जो उनकी पशुशाला है भैया उसकी भी समय समय पर हमारे किसान भाई साफ सफाई भी कर रहे होंगे। क्योंकि देखो भैया ये जो समय चल रहा है वो बरसात का समय चल रहा है, और बरसात के समय में भैया पशुशाला के अंदर गंदगी होने से भैया मच्छर मक्खी ये सब पैदा होते हैं, जो भैया हमारे पशुओं को परेशान करते हैं। और भैया इन सब बातों से बचने के लिए हमें नियमित साफ सफाई करते रहना है, और भैया इसके साथ साथ अपनी खेती बाड़ी का भी विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है बरसात के समय में। क्योंकि बरसात देखो भैया शुरू हो गई है, और भैया हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमारे खेतों में पानी ना जमा हो। भैया पानी की निकासी हमें करते रहना है, उसकी उचित व्यवस्था हमारे किसान भाई को करनी है, जिससे भैया हमारे खेत में जल भराव ना हो, और भैया अपने खेत की हमें उचित मेड़बंदी भी जरूर करनी है। तो भैया इन सब बातों को अगर हमारे किसान भाई ध्यान रखेंगे तो उन्हें भैया लाभ मिलेगा। और भैया जब लाभ की बात आती है तो लाभ एक और चीज़ से भी मिलता है, वो है भैया समय समय पर धान की रुपाई करके। अगर हमारे किसान भाई समय पर अपना काम करेंगे तो समय पर जब काम करेंगे तो भैया हमारी जो फसल है वो अच्छी होगी। तो भैया अगर हमारे किसान भाइयों ने भैया नर्सरी की तैयार हो गई हो तो भैया वो अपने खेतों में इस समय धान की रुपाई कर सकते हैं, और धान की रुपाई का भैया ये उचित समय चल रहा। और भैया रुपाई करने से पहले अपने खेतों में हमारे किसान भैया देखो जब खेत तैयार करो तो उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद डालना, फिर भैया उसे अच्छे से पलटिंग कर देना, फिर भैया उसे खेत को जोत कर पानी भरकर अच्छे से रुपाई करो। और भैया इसके साथ साथ अपनी खेती के काम भी करते रहो, क्योंकि देखो वर्षा ऋतु हो ज़्यादा काम भैया इसमें होता नहीं है, तो भैया अपने खेतों की निगरानी जरूर रखो। और भैया ये समय भैया गन्ने के बढ़वार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भैया बरसात के समय में गन्ने की वृद्धि अच्छे से होती है, तो भैया उसके लिए हमारे किसान भाई गन्ना भैया हमारे जो खेत में अगर सीधा खड़ा रहेगा तो उसका उत्पादन गुणवत्ता दोनों अच्छी रहेगी। तो भैया गन्ने का सीधा खड़ा रहना बहुत जरूरी है, अगर खेत में भैया गन्ना गिर जाता है तो भैया उससे उत्पादन और गुणवत्ता दोनों प्रभावित होते हैं, तो उससे बचने के लिए भैया गन्ने की बंधाई करना जरूरी है। और भैया देखो वर्षा ऋतु में एक और फसल होती है जिसमें हमें लाभ मिलता है, और भैया हमारी आर्थिक स्थिति को भी सुधारती है, तो भैया वो है सिंघाड़ा। भैया सिंघाड़े की खेती कितनी महत्वपूर्ण हो, सिंघाड़ा उत्पादन से कितना लाभ हमें मिलता है, तो इसी संबंध में एक जानकारी हम लिख कर आए हैं, और जानकारी का विषय है सिंघाड़ा उत्पादन से लाभ। और जानकारी दे रहे हैं सफल किसान श्री सेठपाल सिंह, जो भैया कई वर्षों से इस व्यवसाय के साथ जुड़े हैं। तो भैया सुनते हैं उनसे की गई हो बातचीत। किसान भाइयों, जुलाई महीने का दूसरा सप्ताह चल रहा है और बारिश का समय भी शुरू हो गया है, और हमारे किसान भाइयों ने अपनी खेती किसानी के काम भी लगभग निपटा ही लिए हैं। हमारे किसान भाई अब धान की रोपाई करने में लगे हैं, और यह समय धान की रोपाई के साथ साथ कुछ ऐसी फसलों का भी है जो वर्षा ऋतु में होती हैं। उनमें से एक मुख्य फसल है सिंगाड़ा। तो सिंगाड़े की खेती हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कितना लाभ सिंगाड़े की खेती से हमें मिलता है, तो इस संबंध में हमने बात की सफल किसान भाई से, जो कई वर्षों से इस व्यवसाय के साथ जुड़े हैं और अच्छा लाभ कमा रहे हैं। तो बातों का सिलसिला शुरू करते हैं और उनसे जानते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। तो पहले तो आपको मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: अब आप अपना पूरा परिचय दीजिए हमारे किसान भाइयों को।
1: मेरा नाम सेठपाल सिंह है, पुत्र श्री बारू सिंह। मेरा गांव ननदी, फिरोजपुर ब्लॉक बलियाखेड़ी जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश का किसान हूँ।
0: जी सेठपाल जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जैसा कि आप जानते हैं जुलाई का महीना चल रहा है और बरसात भी शुरू हो गई है, और यह समय सिंगाड़े की खेती के लिए भी अनुकूल है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप सिंगाड़े की खेती कब और कैसे शुरू की?
1: चूंकि जुलाई का मौसम है, बरसात का मौसम है, धान की खेती के साथ साथ भी आपने चर्चा की है सिंगाड़े की खेती के ऊपर।
0: जी
1: देखिए, सिंगाड़े की खेती हम लगभग 94-95 से हम करते हैं, और हम जो सिंगाड़े की खेती करते हैं ये तालाब में जनरली लोग करते हैं
0: जी।
1: हम इसको नॉर्मल खेत में, प्लेन खेत में, जिस खेत में धान की रोपाई हम करते हैं उसी खेत में हम सिंघाड़े की खेती करते हैं। इसमें जिस तरीके से धान के खेत में उसकी मेड़ मजबूत करके हम पानी भरकर ट्रैक्टर से पडलिंग करने के बाद धान की रोपाई करते हैं, यही ठीक मेथड पूरा हम सिंघाड़े की खेती के लिए भी करते हैं। उसी तरीके से मेड़ मजबूत करके पानी भरकर सिंघाड़े की बेल की रोपाई उसमें कर देते हैं।
2: तो मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ कि सिंघाड़े की जब आपने खेती शुरू की तो आपको कौन कौन सी समस्या का सामना करना पड़ा, कैसे आपने उनका समाधान निकाला?
1: देखिए, जब हम लोगों ने शुरुआत की है हमने सिंघाड़े
2: जी
1: की खेती के बारे में, तो सब लोगों ने, घर वालों ने भी, सबने भी हमारा विरोध किया कि भाई सिंघाड़ा तालाब में होता, खेत में नहीं हो सकता।
2: जी जी
1: तो लेकिन हमारा प्रयास था, और इस प्रयास में हमारा जो सबसे ज्यादा टेक्निकल सहयोग मिला

0: में बड़ा सहयोग किया।
1: जी सेठपाल जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ। जैसे सिंगाड़े की खेती करने वाले हैं वो तालाब में करते हैं, और जब भी हम कोई फसल की खेती करते हैं तो उसमें भूमि का चुनाव बहुत जरूरी है, तो सिंगाड़े की खेती के लिए किस प्रकार की भूमि लाभदायक होती है?
0: देखिए ये बात सही है, जब हम चूंकि तालाब में पानी भरा रहता है बरसात में, तो गाँव में दाएं बाएं से इकट्ठा होकर के आता है, लेकिन वो गंदा रहता है। जब हम खेत में चुनाव करते हैं जमीन भूमि का, तो सबसे पहले जो हम लोगों ने भूमि का चुनाव किया था, तो हमारे खेत में दोमट चीकनी जो मिट्टी थी
1: जी
0: उस काम ने चुनाव किया था। लेकिन मैं आपसे एक बात बताऊं, हमारे खेत हिंडन नदी के बहाव के दोनों ओर है, और जो बिल्कुल रेतली जमीन थी, बिल्कुल रेतली, उसके बाद हम लोगों ने उस रेतली जमीन में भी सिंघाड़े की खेती की है, कर रहे हैं अभी भी। और उससे जो उसमें जो जीवांश कार्बन मिलता है, उस बाद में फूल पत्ती और बेलों के रूप में जो कंपोस्ट होता है, जो हमारी रेतली खेती जिसमें हम पानी भी नहीं रुक पाता था, आज उसी खेती में उसकी जीवांश कार्बन बढ़ा है, उसकी फर्टिलिटी बढ़ी है, और उसमें जैविक ऑर्गेनिक और नेचुरल खेती की तरफ हम बढ़े हैं। मैं हम किसी भी तरह की मिट्टी का चुनाव उसके लिए हम कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ कि किसी भी फसल के लिए बीज का चयन बहुत जरूरी है। आप बीज का चयन कैसे करते हैं? कौन कौन सी उन्नत किस्में आप लगाते हैं?
0: देखिएगा, सबसे पहले तो हमने जो सिंघाड़ा है, इसमें ऐसी कोई रिकमंड वैरायटी हमारे पास नहीं है। जो लोकल सीड हमारे पास था, लोकल जो बेल था, उसे ही लेकर के आए थे हम। लेकिन उसके बाद जब हम अपने खेत में लगाते हैं, तो जब हमारा सिंघाड़ा चलता है, तो एक पर्टिकुलर एरिया में हम उसको छोड़ देते हैं,
1: जी
0: उसको तोड़ते नहीं, और बाद में उसको जब पक जाता है, उसको निकाल करके ट्रीट करके उसी को हम फिर दोबारा उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो अभी तक इसमें कोई रिकमेंड वैरायटी तो ऐसी नहीं है, लोकल जो वैरायटी है उसी को हमने प्रमोट किया है।
1: जी जैसे लोकल वैरायटी लाल कठुआ और हरा कठुआ है, तो आप उसी प्रकार की खेती करते हैं?
0: देखिए इसमें दो ही वैरायटी है, एक लाल है और एक हरा है, और इसमें भी कुछ क्षेत्र में लाल सिंघाड़े की डिमांड कुछ ज्यादा होती है, कुछ क्षेत्र में हरे सिंघाड़े की। हमारे क्षेत्र में दोनों है हमारे पास में, लेकिन लाल को लोग ज्यादा लाइक करते हैं।
1: जी, जैसे हम खेती करते हैं तो खेती के लिए किसी भी फसल के लिए उसका एक निश्चित समय होता है, तो सिंगाड़ी की खेती के लिए नर्सरी का सही समय क्या होता है?
0: देखिए नर्सरी की यदि हम बात करते हैं, जब हम दिसंबर में जब हमारे यहाँ पाला पड़ता है, तो सिंघाड़ा ऊपर से जल जाता है, हम इसको सिंघाड़े की खेती खत्म हो जाती है, पानी निकाल करके दूसरी फसल लगाते हैं।
1: जी
0: उस टाइम हम लोगों ने जो बीज छोड़ा है उसको कलेक्ट करके हम लोग उसको थोड़ा धूप में 10-12 दिन तक सुखाते हैं उसको, और फिर उसको किसी फफूंदी नाशी से ट्रीट करके ड्रम में पानी भर करके उसको रख देते हैं,
1: जी
0: ताकि वो सूख ना पाए। और जैसे भी हमारा गर्मी का मौसम शुरू होता है मार्च के फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में, तो वही तरीका हमारा एक खेत के कोने में थोड़ा सा पानी भर के पटलिंग करके, और उसमें हम उस बीज को बिखेर देते हैं, और फिर उसी को हम बेल को काट करके हम सिंघाड़े की रोपाई करते हैं।
1: जी मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ। जैसे हम कोई भी खेती करते हैं तो उसके लिए खेत की तैयारी हमें करनी होती है शुरू से, तो जब हम सिंगाड़े की खेती करते हैं तो सिंगाड़े की जहाँ हम बेल डालते हैं, चाहे वो तालाब हो चाहे हमारा खेत हो, तो उसकी तैयारी हम कैसे करते हैं?
0: देखिएगा, जब हम शुरुआत में भी हम नए खेत में हम तालाब में करते हैं, तो उसमें गेहूं काटने के बाद हम उसमें चाहे तो हम ढैंचा के समय की रोपाई भी कर सकते हैं, उसको 40-45 दिन में हम उसको खेत में मिला देंगे, या हम गोबर की सड़ी हुई खाद उसमें इस्तेमाल करते हैं, अच्छी जुताई उसकी करते हैं, और उसमें जुताई करने के बाद फिर जैसे हमारा बरसात का सीजन स्टार्ट होता है, या जून मध्य से लेकर के जुलाई मध्य तक इसका रोपाई का समय है, तो इस टाइम हम उसको पूरी तरीके से खेत को जैसे अपना अच्छी तरीके से हमारा खेत में तैयार हो जाए, धूप लग जाए, हरी खाद मिल जाए, गोबर की खाद मिल जाए, शुरुआत में जब हम करते, तो इसी तरीके से हम दूसरी फसलों की तरह इसकी भी तैयारी करते।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि आप जैविक विधि से खेती करते हैं, जो गोबर की खाद है उसका उपयोग ज्यादा करते हैं, जिससे गुणवत्ता और जो उत्पादन है वो दोनों बहुत अच्छे होते हैं।
0: बिल्कुल
1: जी मैं एक बात और आपसे जानना चाहता हूँ कि सिंचाई और जल प्रबंधन कितना जरूरी है सिंगाड़ी की फसल के लिए?
0: देखिए, सिंघाड़ा चूंकि पानी की फसल है, तालाब में 6 फीट 8 फीट 10 फीट तक भी पानी रहता है, इसमें मात्र 6 इंच से लेकर के 1 फीट तक का पानी सफिशियंट है, तो पानी तो हमें मेंटेन करना रहेगा। धान जैसे लगाते हैं उसकी पॉडलिंग करने के बाद जब हम

0: जिसमें सिंघाड़े की रोपाई से पहले हम खेत की अच्छी तरीके से जुताई करते हैं पानी भर के, उसके पडलिंग करते हैं, तो उससे पानी ठहर जाता है और उस पानी के लेवल को हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है। हमें रोज 2 घंटा उसमें रोज पानी चलाएंगे तो पानी मेंटेन है, उसके लिए जरूरी है।
1: जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि पानी का मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ, जब भी कोई हम फसल लगाते हैं तो उसे प्रभावित करने वाले जैसे खरपतवारनाशी होते हैं, तो आप सिंघाड़े की फसल में कैसे उनका नियंत्रण करते हैं जिससे हमारी फसल के उत्पादन पर उसका असर ना पड़े?
0: देखिए, जब हम अपने खेत को पहले अच्छी तरह से जुताई करते हैं, उसमें सपोज हम या जुताई करने के बाद जो सूर्य की तपत घुसती है उसमें, उससे खरपतवार के बीज या कीट पतंगे खत्म हो जाते हैं, या हम हरी खाद डालते हैं तो उसमें जो खरपतवार हो पहले जम करके फिर पानी में नष्ट हो जाते हैं, तो वैसे तो कोई खरपतवार नहीं जमते, लेकिन कुछ खरपतवार जैसे जो हम पौध की रोपाई करते हैं उसके साथ जैसे काई होती है छोटी सी या कुछ, तो उसको निराई गुड़ाई से ही हम उसका सफाई कराते हैं, उसमें कोई भी हर्बिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया जाता, केवल मैनुअली हम उसको निकालते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि आप यांत्रिक विधि से खरपतवार का नियंत्रण करते हैं।
0: बिल्कुल
1: मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ, जैसे सिंगाड़ी की फसल, तो उसमें कुछ प्रमुख कीट और रोग भी लगते हैं, तो वो कौन कौन से रोग आते हैं, आप उसका कैसे नियंत्रण करते हैं?
0: देखिएगा, सिंघाड़े की खेती में बहुत कम इंसेक्ट का प्रकोप होता है।
1: जी
0: जनरली एक छोटा सा लाल कलर की एक सुंडी आती है और वो जो हमारा सिंघाड़े का जो बीच में जहाँ से मोल निकलती है उसकी होताव जहाँ से होता है वहां पे बैठ करके उसको पत्ती को काटती है, उसमें मेन बीमारी तो उसके अंदर यही है। उसका हम नीम ऑयल का स्प्रे भी अगर हम उसके ऊपर करते हैं तो उससे भी वो भागती है, उस पर नहीं लगती।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे किसान भाइयों को दी। मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ कि सिंगाड़ी की फसल में खाद और उर्वरक प्रबंधन कितना जरूरी है?
0: देखिए, हमें 17 पोषक तत्वों की जरूरत है। अगर हमारे खेत में पर्याप्त मात्रा में है तो हमें रासायनिक खाद भी डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि हमें स्टार्टिंग कर रहे हैं हमारे खेत में तो हमें सबसे पहले 1 किलो प्रति बीघे के हिसाब से हम जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं और लगभग 10 किलो हम NPK का,
1: जी
0: नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटाश का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम जैसे सल्फर का स्प्रे हम करते हैं या हम नैनो यूरिया का हम इस्तेमाल करते हैं और बाकी तो और किसी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करते।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई, कम ही मात्रा में जो रासायनिक दवाएं हैं या रासायनिक खाद है उन पर निर्भर रहते हैं, आप जैविक खेती की ओर बढ़ते हैं और जैविक खादों का आप ज्यादातर उपयोग करते हैं।
0: जी
1: जी, मैं एक बात और आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे सिंगाड़ी की फसल तैयार होने में कितना समय लगता है?
0: देखिए, फसल की जहाँ बात है तैयारी की, यदि हम जून मध्य में हम अपने खेत में रोपाई करते हैं
1: जी
0: तो ये हमारा सितंबर मध्य में हमारा फसल देना शुरू कर देता है, और यदि हम जुलाई के फर्स्ट वीक में सेकेंड वीक तक लगाते हैं तो ये हमारा सितंबर लास्ट में हमारा फसल देना शुरू करता है, क्योंकि उससे पहले इसमें फुटाव होता है, फुटाव होने के बाद फिर ये पूरा खेत भर जाता है एकदम से, पानी तो दिखता खड़ा हो जाता है खेत, फिर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है इसके अंदर अगस्त लास्ट में सितंबर के फर्स्ट वीक में, उसमें एक फिर हमारा तो हमारी जो तुड़ाई है अगर हम जून मध्य में लगाएंगे तो सितंबर मध्य में शुरू हो जाएगी, अगर हम जुलाई के फर्स्ट वीक में लगाएंगे तो हमारा सितंबर लास्ट तक हमारा फल देना शुरू कर देगा।
1: जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ कि जब हमारी फसल तैयार हो जाती है तो तुड़ाई करते समय हमें क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ती है?
0: देखिए, जब हमारा पूरा खेत एकदम से बहुत घना हो जाता है तो
1: जी
0: हम इसकी एक निराई भी कराते हैं ताकि पौधे को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल जाए। तुड़ाई का या एक तो सबसे पहला हम ये करते हैं, उसकी जो छत्ती में चूंकि नीचे बैठता है लगता है सिंघाड़ा, और छत्ती को उठा करके हम सिंघाड़ा तोड़ते हैं, हमारी छत्ती ना टूट पाए। जो बड़ा सिंघाड़ा हमारा जो मैच्योर हो गया है उसको हम तोड़ते हैं और उसके बाद जो छोटा सिंघाड़ा है वो फिर हमें अगली तोड़ पे तोड़ते हैं। तो इसमें ध्यान की बात यही है, पैर बचा के रखना है उसके ऊपर ताकि छत्ती ना टूटे, छत्ती को प्यार से उठानी है और छोटे सिंघाड़े को नहीं।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी किसान भाइयों को आपने दी। एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे सिंगाड़ी की फसल है तो इसकी गुणवत्ता अच्छी हो और उत्पादन भी अच्छा हो, तो इसके लिए क्या क्या सावधानी हमें बरतनी पड़ती है?
0: देखिए, जहाँ तक आपने गुणवत्ता की बात की है, जो हमारा तालाब का सिंघाड़ा है जिसमें गांव से पानी आता है वो रखता है, उसमें इकट्ठा रहता है पानी, उसका जो सिंघाड़ा होता है एकदम गंदा होता है, बदबू आती है उसके अंदर।
1: जी
0: और ये जो तालाब का सिंघाड़ा है हमारा, इसमें चूंकि रोज साफ पानी आ रहा है ट्यूबवेल से, तो ये एकदम से साफ सुथरा है, चमकीला है, इसकी क्वालिटी और इसका टेस्ट वो इतना अच्छा है, इस सिंघाड़े में मिठास बहुत ज्यादा है, जो व्यक्ति एक बार उसको खाता है वो तो बार बार खाने की इच्छा जाहिर कर उसमें।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई जी। मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ कि हमारा जब उत्पादन है, जब हम उसे तोड़ लेते हैं, तो बाजार में बेचने की क्या व्यवस्था है आपके पास है, कैसे आप अच्छा दाम पाते हैं?
0: देखिए ये बहुत अच्छी बात बताई आपने मार्केटिंग की। जब हमारा सिंघाड़ा मार्केट में जाता है और मार्केट में तालाब का सिंघाड़ा भी आता है, हमारा सिंघाड़ा एकदम साफ पानी का चमकीला है, एकदम लाल और हरा एकदम से। मंडी में एक चीज और भी है, जो वहां पे फुटकर व्यापारी होते हैं वो उठा करके एक बार खाते जरूर है, और जो आदमी एक बार खा लेता है उसको वो बार बार, उसको टेस्ट डेवलप हो गया। शुरू में स्टार्टिंग में हमारे साथ में दिक्कत रही है, लेकिन अब तो जब हमारा सिंघाड़ा मंडी में जाना शुरू होता है तो लोग ढूंढते ढूंढते आते हैं, खेत तक आ जाते हैं ढूंढते, तो उसे मार्केट की, क्योंकि उसका टेस्ट अलग है, स्वाद उसका अलग है, उसकी क्वालिटी अलग है, उसका कलर अलग है, उसका साइज अलग है, क्योंकि जो माइक्रो न्यूट्रेंट हम लोगों ने उसको प्रॉपर दिए हैं उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जो आपका सिंगाड़ा है वो गुणवत्तापूर्ण होता है, जिसका
0: जी
1: स्वाद अच्छा होता है, जो खाने वाले हैं उसको ज्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई। मैं एक बात और आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे आप एक सफल किसान हैं और आपको सम्मान भी माननीय राष्ट्रपति की ओर से मिला है 2022 में
0: जी
1: पद्मश्री, तो भविष्य में इस सिंगाड़े की खेती को लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं, आप इस व्यवसाय को किस स्तर पर ले जाना चाहते हैं?
0: देखिएगा, जहां तक प्रकृति का सिद्धांत है विविधता,
1: जी
0: और हम विविधता में, यदि मेरा जो सब्जेक्ट है, मेरा जो काम है, कृषि विविधीकरण के ऊपर है,
1: जी
0: और यदि हम लोग विविधीकरण की तरफ जाएंगे तो मेरा इस धान के सीजन में, बरसात के मौसम में, जहाँ हम धान की रोपाई करते हैं, उसकी जगह हम लोग यदि सिंघाड़े की खेती करें प्लेन खेत में, तो हमारा डाइवर्सिफिकेशन भी होगा, उसके बाद किसान की रोज आमदनी होगी, क्योंकि जब हमारा सिंघाड़ा चलता है सितंबर से लेकर के दिसंबर तक, लगभग 3 महीने तक फसल चलती है, रोज सिंघाड़ा टूट करके तो किसान की रोज आमदनी होती है। इस 6 माह की अवधि में मेरा मानना ये है कोई भी दूसरी फसल इतना लाभ नहीं देती जितना सिंघाड़ा की फसल देती है। दीपावली तक ये कच्चा खाया जाता है, दीपावली के बाद ये पका करके उबाल करके खाया जाता है। एक बात और है, इसके अलावा जो अप्रत्यक्ष लाभ हमें मिलता है, जब हमारा सिंघाड़ा खत्म हो जाता है और उसकी जो बेल और पत्ते जो उसके हैं, जो खेत में कंपोस्ट होते हैं, जो हमारे खेत का जीवांश कार्बन बढ़ाते हैं, जो हमारी जैविक खेती और प्राकृतिक खेती का आधार है, हमारे खेत में जीवांश कार्बन बढ़ेगा, फर्टिलिटी बढ़ेगी, हमारे रासायनिक खादों और रासायनिक कीटनाशकों के ऊपर हमारी उपलब्धता कम होगी, तो मैं तो ये ही अपने किसान साथियों से सलाह देना चाहता हूँ, आप ज्यादा ना करें, ट्राई करें 1 बीघा 2 बीघे से स्टार्ट करें आप, और उसके बाद जो इसका वैल्यू एडिशन, चूंकि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा श्रावण के महीने में हमारी महिलाएं पूरा महीना व्रत रखती है, नवरात्रों में व्रत रखती है, तब हम कुट्टू का आटा या सिंघाड़े का आटे का हम उसमें इस्तेमाल करते हैं, तो उस तरीके से भी हम वैल्यू एडिशन में भी जाएंगे तो वो ज्यादा लाभ हमको दे पाएगा।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत अच्छे लाभदायक है, ये गुणवत्तापूर्ण है, और जो हमारी माता बहन है वो व्रत में भी इसका उपयोग कर सकती हैं।
0: एक बात मैं और कहना चाहता हूँ आपसे, चूंकि ये आयरन रिच है, कैल्शियम का बहुत, आयरन का बहुत अच्छा स्रोत है, और इसकी जो प्रकृति में नेचर हार्ट की तरह बनाया है, तो इसलिए सिंगाड़ा खाने से मेरा ये मानना है ये हमें हार्ट के लिए भी और आयरन और कैल्शियम के लिए भी हमें बहुत अच्छा रिच प्रदान करता है।
1: आपकी बात बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि जो हम सिंगाड़ा खाते हैं जो जैविक पदार्थों से तैयार होता है, तो वो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत लाभदायक है। चलते चलते एक बात और आपसे जानना चाहता हूँ कि जो हमारे नए किसान भाई हैं जो सिंगाड़े की खेती शुरू करना चाहते हैं, तो आप उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: देखिए मैं अपने किसान भाइयों से सलाह देना चाहता हूँ, अभी जुलाई का महीना है, सेकेंड वीक है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं, थोड़े अक्षेत्र में ट्राई कर सकते हैं, जब आपको अनुभव हो जाए आप इसको बढ़ा सकते हैं, और इसमें विविधीकरण में विविधता लाने के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए, धान को रिप्लेस करने के लिए ये बहुत अच्छी ग्रोथ है, और इससे निश्चित रूप से किसानों को दूसरी फसल के मुकाबले ज्यादा लाभ होगा और हमारे खेत का स्वास्थ्य भी सुधरेगा।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, हमारे किसान भाई से सुनकर बिल्कुल लाभान्वित होंगे। तो आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, तो उसके लिए आपने अपना कीमती समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: अभी हमारे किसान भाइयों ने सिंघाड़ा उत्पादन से अधिक लाभ के संबंध में जानकारी सुनी, और भैया इस जानकारी को सुन के हमारे किसान भाई भैया लाभान्वित होंगे और भैया लाभ कमाएंगे। अब देखो भैया, देखो कि सिंघाड़ा अगर हमारे किसान भाई जैविक खेती से, जैविक विधि से अपन उत्पादन करेंगे तो भैया उनका स्वास्थ्य भी सही रहेगा, और भैया हमारी जो रासायनिक खादों पर निर्भरता वो भी कम होगी। तो भैया इस तरह हमारे किसान भाई खेती बाड़ी करेंगे तो भैया उन्हें लाभ होगा। और देखो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं भैया कुछ और खेती किसानी की। देखो भैया किसान भाइयों, बरसात का समय चल रहा है और बारिश भी भैया अच्छी हो रही है, और भैया हर जगह अगर दिख की बात करूँ तो भैया पानी भरा हुआ है, और देखो भैया आगे बारिश भी होगी। तो भैया हमें कुल मिलाकर बात है कि पानी की बचत करनी है भैया, जिन क्षेत्रों में पानी की कमी हो तो भैया वो पानी स्टोर करके आने वाले समय में उसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि भैया हम आने वाले भविष्य में पानी का संकट ना हो, पैदा हो, तो पानी की बचत जरूरी है। उसके लिए भैया हमारे किसान भाई सिंचाई की नई तकनीकों को अपनाना चाहते हैं तो भैया वो अपना सकते हैं, क्योंकि भैया आज के समय में जल संकट कृषि के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसलिए भैया किसानों के लिए ऐसी सिंचाई तकनीकों को अपनाना आवश्यक हो गया है जिससे भैया जो हमारे किसान भाई हैं कम पानी में अधिक उत्पादन ले सकें। भैया आधुनिक तकनीक अपनाने से भैया पानी की बचत भी होती है और साथ साथ भैया फसल की गुणवत्ता और पैदावार भी बढ़ती है। भैया सिंचाई की अगर प्रमुख विधियों की हम बात करें, जैसे नई नई तकनीक की बात करें, तो भैया सबसे ज़्यादा उपयोगी तकनीक है ड्रिप सिंचाई विधि। भैया इस विधि में पानी जो होता है वो सीधे पौधे की जड़ों तक बूंद बूंद तक पहुँचता है, और इससे भैया 40 से लेकर 70% पानी की बचत होती है। एक भैया इससे उर्वरकों का बेहतर उपयोग होता है, जैसे सब्जियां हैं, फल हैं, गन्ना हैं और बागवानी जैसी फसलें हैं, भैया ये तकनीक उनके लिए बहुत उपयोगी है। और इससे भैया देखो जब हमारी पानी की बचत होगी, बिजली की बचत होगी, तो भैया इससे लागत में भी कमी आएगी। भैया दूसरी विधि है स्प्रिंकलर सिंचाई विधि। भैया इसमें पानी फुहार के रूप में पूरे खेत में फैलता है, इसमें भैया 30 से लेकर 50% तक पानी की बचत होती है, जहाँ भैया हल्की और रेतीली मिट्टी हो जो ज़मीन है वहाँ पर भैया ये विधि वहाँ बहुत उपयोगी साबित होती है, और भैया जैसे असमतल भूमि है तो वहाँ भी भैया ये विधि बहुत कारगर साबित होती है, और भैया इससे भी लागत और समय दोनों की बचत होती है। तीसरी है भैया रेन गन सिंचाई विधि। यह भैया बड़े क्षेत्र में कम समय में सिंचाई हम इससे कर सकते हैं, और भैया से ये दलहनी, तिलहनी और चारा फसलों के लिए उपयोगी है, इसमें भैया श्रम और समय दोनों की बचत होती है। और एक भैया सेंसर आधारित स्मार्ट सिंचाई विधि। भैया देखो आधुनिक युग का जमाना है तो भैया आज के समय में टेक्निकल चीज़ें आ गई हैं, तो भैया इस विधि में हम मिट्टी की नमी के अनुसार सिंचाई होती है, आवश्यकता होने पर भैया पानी दिया जाता है, और पानी और बिजली दोनों की बचत हम इससे करते हैं। एक भैया क्यारी विधि। इसमें क्या होता है कि हमारे किसान भाई छोटी छोटी क्यारी बनाकर सिंचाई करते हैं, भैया इससे भी पानी की बचत होती है, और भैया देखो पानी हमारे किसान भाइयों को बचाने के लिए कुछ उपाय भी कर सकते हैं, जैसे भैया खेत की अच्छे से मेड़बंदी करो, मल्चिंग जरूर करें जिससे भैया नमी का संरक्षण हो, और भैया हमारे किसान भाई जब भी सिंचाई करो तो सुबह और शाम में सिंचाई करो। एक भैया वर्षा का जल का संचयन करो, खेत को समतल रखो भैया तानी, जिससे भैया पानी का जो समान वितरण पूरे खेत में आसानी से हो सके और भैया लाभ मिले, क्योंकि भैया इन विधियों को अपनाने से भैया लाभ तो मिलता ही है, और भैया एक तो इससे पानी की कम से कम 30 से 70% तक की बचत होती है, बिजली और डीजल की भी लागत में कमी आती है, और भैया साथ साथ भैया खरपतवार भी कम उगते हैं, भैया इससे फसल की गुणवत्ता और उत्पादन भी बढ़ता है। और भैया देखो एक बात और इससे होती है भैया, इससे पर्यावरण संरक्षण में भी सहायता मिलती है। तो भैया कुल मिलाकर अगर हम बात करें या बात यू निकल कर आती है कि नई सिंचाई तकनीक के सो भैया जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो, यदि हमारे भैया हमारे किसान भाई ड्रिप स्प्रिंकलर और स्मार्ट सिंचाई जैसी तकनीकों को अपनाएंगे तो भैया कम पानी से अधिक उत्पादन हमारे किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं, और भैया भविष्य के लिए जो जल संकट पैदा होता है उसका भी हम किसान भाई संरक्षण कर सकते हैं। तो देखो भैया बातचीत तो हो गई बहुत सारी, और भैया अब कार्यक्रम में लेते हैं छोटा सा विराम और सुन लेते हैं कुछ जरूरी संदेश।
2: आकाशवाणी नजीबाबाद से प्रत्येक मंगलवार को शाम

0: 5 मिनट पर कृषि जगत कार्यक्रम में सुनिए
1: गुणवत्ता युक्त बासमती धान उत्पादन हेतु
0: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा
1: साप्ताहिक आयोजित कार्यक्रम बासमती

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: देखो भैया, संदेश तुम्हारे किसान भाई ने सुन लिया, और भैया आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं भैया वो खेती किसानी की और भैया सरकार से जुड़ी योजनाओं की। देखो भैया, हमारे किसान भाई खेती करते हैं और खेती से लाभ भी कमाते हैं, पर भैया समय के साथ साथ जैसे हमारे किसान भाई की उम्र ढलती जाती है तो भैया काम धाम इतना नहीं हो पाता और भैया आर्थिक स्थिति पर भी उसका असर पड़ता है, तो भैया उसमें सहारे की आवश्यकता हमारे किसान भाइयों को होती है। तो भविष्य में ऐसी समस्या हमारे किसान भाई को पैदा ना हो तो भैया उसके लिए हमारे किसान भाई प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना PMKMY से जुड़ सकते हैं। भैया ये केंद्र सरकार की एक स्वैच्छिक और एवं अंशदायी पेंशन योजना है। इसका उद्देश्य भैया देखो, छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। भैया इस योजना की शुरुआत 12 सितंबर 2019 में हुई थी। इस योजना के बाद भैया 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 3000 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन मिलती है। इस योजना में भैया 18 से लेकर 40 वर्ष की आयु के पात्र किसान ही शामिल हो सकते हैं। इसमें भैया किसान भाइयों को अपनी आयु के अनुसार 55 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रतिमाह अंशदान करना होता है। इस योजना में किसान भाई जितना अंशदान करते हैं उतना ही राशि केंद्र सरकार भी जमा करती है और इस पेंशन का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है। इस योजना से भैया छोटे और सीमांत किसान जुड़ सकते हैं, जो भैया भूमि धारक हैं उनकी उम्र 18 से 40 के बीच होनी चाहिए और इनके पास भैया एक तो आधार कार्ड और भैया बैंक खाता होना आवश्यक है। और इस योजना में भैया यदि पेंशनधारी किसान किसी कारण बस भैया उसकी मृत्यु हो जाती है तो भैया उसकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में 50% मतलब कि 1500 रुपये प्रतिमाह मिलने का प्रावधान है। यह भैया यह योजना किसान भाइयों को वृद्धावस्था में नियमित आय देखकर भैया उनकी आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनने में उद्देश्य से चलाई जा रही है। तो भैया हम तो यूँ ही कहेंगे कि इस योजना से हमारे किसान भाई जुड़ें और अधिक से अधिक लाभ पाएँ और भैया अपना जीवन खुशहाल बनाएं। और भैया जब लाभ हमारे किसान भाई को मिलेगा और जीवन भैया खुशहाल होगा तो भैया हमारे किसान भाइयों का मन करेगा संगीत का। तो भैया देर न करते हुए चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुन लेते हैं अपने किसान भाइयों के लिए प्यारी सी रागनी।

0: भेदवा बेटी से करके अभी हमारे किसान भाइयों ने भीम सिंह की आवाज़ में प्यारी सी रागनी सुनी। देखो भैया हमारे किसान भाइयों का मनोरंजन भी हो गया होगा और ये थकान वो मिट गई होगी। और भैया देखो अब बात करें मौसम की, तो भैया अब समय आ गया है मौसम की चिट्ठी का। और भैया ये मौसम की चिट्ठी हमें प्राप्त हुई है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोतीपुरम मेरठ से। और भैया चिट्ठी के अनुसार कहीं कहीं बादल छाए रहने की संभावना है और भैया हल्की से मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है। तो भैया मौसम को देख कर हमारे किसान भाई कृषि कार्य करते रहे। मैं देखो अगर बात करूँ घड़ी की, तो भैया घड़ी बिल्कुल भी आपसे बातचीत करने की इजाज़त नहीं दे रही है। तो भैया चलते चलते अपने किसान भाई को अपना पता ज़रूर बता दें कि हमारे किसान भाई को हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है और कार्यक्रम में क्या सुधार चाहते हैं। तो भैया इसके लिए नोट करें हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद। हमारा पिन कोड है 246763 और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457072888। तो किसान भाइयों इस पते पर हमें आपकी चिट्ठी पत्रिका रहेगा इंतजार। और अब कार्यक्रम संपन्न करने की अपने भैया अंकित कुमार को दीजिए अनुमति। किसान भाइयों राम राम।
1: किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 6:45 हुए हैं। विविधा क्रम में लीजिए सुनिए श्रीमती सुषमा अग्रवाल की ये वार्ता। विषय है हिंदी साहित्य की वर्तमान स्थिति एवं प्रासंगिकता।
2: कोई भी भाषा अपने समाज के भावों को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम होती है और उसका साहित्य किसी भी समाज की चेतना, संस्कृति, विचारधारा और जीवन मूल्यों का दर्पण होता है। यह केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि समाज के निर्माण और मानवीय संवेदनाओं के विकास का प्रभावी माध्यम भी है। हिंदी साहित्य भारतीय समाज की विविधता, सांस्कृतिक विरासत, संघर्षों और परिवर्तनशील जीवन का व्यापक चित्र प्रस्तुत करता है। हिंदी भाषा विश्व की प्रमुख भाषाओं में से एक है और उसका साहित्य भी अत्यंत समृद्ध एवं बहुआयामी है। आज का समय विज्ञान, तकनीक, वैश्वीकरण और डिजिटल क्रांति का युग है। इस युग में जीवन की गति एवं प्राथमिकताएं तेजी से बदल रही हैं। ऐसे परिवर्तित सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश में हिंदी साहित्य की स्थिति और उसकी प्रासंगिकता पर विचार करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या हिंदी साहित्य आज भी समाज को प्रभावित कर रहा है? हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 1000 वर्षों से भी पुराना माना जाता है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल इसकी प्रमुख ऐतिहासिक अवस्थाएं हैं। इन प्रत्येक काल में साहित्य ने अपने समय की सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों को अभिव्यक्त किया है। भक्ति काल में कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास और मीरा जैसे कवियों ने भक्ति, मानवता एवं सामाजिक समरसता का संदेश दिया। रीति काल में श्रृंगार व काव्य कला को विशेष महत्व मिला। आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर जैसे साहित्यकारों ने राष्ट्रवाद, सामाजिक सुधार, मानवीय संवेदनाओं और आधुनिक चेतना को स्वर प्रदान किया। आज हिंदी साहित्य संक्रमण काल से गुजर रहा है। एक ओर इसके सामने नई चुनौतियां हैं तो दूसरी ओर विकास और विस्तार की अपार संभावनाएं भी मौजूद हैं।

वर्तमान हिंदी साहित्य में विषयों की व्यापक विविधता दिखाई देती है। आज का साहित्य केवल प्रेम, प्रकृति या राष्ट्रीयता तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक असमानता, पर्यावरण संकट, लैंगिक समानता, मानव अधिकार, तकनीकी परिवर्तन, समकालीन राजनीति जैसे विषयों को भी केंद्र में रखता है। आज का लेखक कथा साहित्य, कविता, नाटक, संस्मरण, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत और आलोचना जैसी सभी विधाओं पर कार्य कर रहा है। डिजिटल तकनीक ने हिंदी साहित्य की दुनिया में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। पहले साहित्य की पहुंच पुस्तकालयों और मुद्रित सामग्री तक सीमित थी, लेकिन अब इंटरनेट ने साहित्य को वैश्विक स्तर पर उपलब्ध करा दिया है। ई पुस्तकें, ऑनलाइन पत्रिकाएं, ब्लॉग, साहित्यिक वेबसाइट्स और सोशल मीडिया मंच हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार के प्रमुख माध्यम बन गए हैं। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और विभिन्न साहित्यिक मंचों पर कविताएं, कहानियां और साहित्यिक चर्चाएं बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित कर रही हैं। इससे हिंदी साहित्य का पाठक वर्ग विस्तृत हुआ है। आज की व्यस्त जीवन शैली में लंबे साहित्य ग्रंथों की अपेक्षा संक्षिप्त एवं त्वरित सामग्री अधिक लोकप्रिय हो रही है। फिर भी गुणवत्तापूर्ण साहित्य के प्रति रुचि पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। हिंदी प्रकाशन उद्योग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। साहित्यिक पुस्तकों के अतिरिक्त अनुवाद, शोध, आलोचना और लोकप्रिय साहित्य का भी प्रकाशन बढ़ा है। इस सब के बावजूद हिंदी साहित्य के सामने अनेक चुनौतियां भी हैं, जैसे कि आजकल वैश्वीकरण और आधुनिक शिक्षा प्रणाली के कारण अंग्रेजी भाषा का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। कई युवा हिंदी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा और व्यावसायिक आवश्यकताओं के चलते अंग्रेजी की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। साहित्य के स्वस्थ विकास के लिए निष्पक्ष और गंभीर आलोचना आवश्यक है। वर्तमान समय में साहित्यिक आलोचना का प्रभाव अपेक्षाकृत कम हुआ है। इससे रचनाओं का समुचित मूल्यांकन नहीं हो पाता। इस सब से इतर हिंदी साहित्य की अनेक प्रमुख प्रवृत्तियां भी दृष्टिगत होती हैं, जैसे महिला लेखिकाएं और लेखक, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति, अधिकारों, संघर्षों और पहचान के प्रश्नों को केंद्र में रखकर लेखन कर रहे हैं। दलित साहित्य ने हिंदी साहित्य को एक नई दृष्टि प्रदान की है। लंबे समय तक सामाजिक भेदभाव और शोषण का सामना कर रहे दलितों के स्वर को इस साहित्य में प्रमुखता से मुखरित किया गया है। आदिवासी समुदायों की संस्कृति, संघर्ष और जीवन, इन सब को केंद्र में रखने वाला साहित्य भी तेजी से विकसित हुआ है। साहित्यकारों की लेखनी पर्यावरणीय साहित्य की ओर भी तेजी से चली है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, वन विनाश और प्राकृतिक संसाधनों के संकट ने लेखक वर्ग का ध्यान अपनी ओर खींचा है, और ये ऐसे विषय हैं जो विशेष रूप से समाचार पत्रों में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करते आए हैं। इन विषयों पर समाचार पत्रों में काफी लिखा जा रहा है और पाठक वर्ग उनसे काफी प्रभावित भी होता है। विभिन्न पहलुओं को स्वयं में समावेशित करते हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता क्या है, हमें इस पर भी विचार करना होगा। हिंदी साहित्य समाज की समस्याओं को उजागर करता है और लोगों को उनके समाधान के प्रति भी जागरूक करता है। प्रेमचंद के उपन्यासों से लेकर वर्तमान साहित्य तक सामाजिक चेतना का यह स्वर निरंतर उपस्थित रहा है। आधुनिक जीवन में प्रतिस्पर्धा, भौतिकवाद व स्वार्थ की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ऐसे में साहित्य प्रेम, करुणा और सहानुभूति जैसे मानवीय मूल्यों को जिंदा रखता है। साहित्य मनुष्य को संवेदनशील बनाता है। हिंदी साहित्य भारतीय संस्कृति, परंपराओं, लोक जीवन और ऐतिहासिक अनुभवों का भंडार है। इसके माध्यम से नई पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी रहती है। भारत विविध भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों वाला देश है। हिंदी साहित्य विभिन्न वर्गों और समुदायों के अनुभवों को जोड़कर राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करता है। हिंदी साहित्य लोकतांत्रिक चेतना का भी विकास करता है तथा व्यक्ति के बौद्धिक

0: व्यवहारिक बनाना होगा। पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण करते हुए डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, पुस्तक मेलों व लेखन कार्यशालाओं को प्रोत्साहित किया जाए, गुणवत्तापूर्ण अनुवाद कार्य को बढ़ावा देना चाहिए, साहित्य एवं समाज के बीच संवाद को सशक्त बनाया जाए, ग्रामीण और लोक साहित्य के संरक्षण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हिंदी साहित्य भारतीय समाज की आत्मा का सशक्त अभिव्यक्ति माध्यम है। बदलते समय, तकनीकी प्रगति और वैश्वीकरण के प्रभावों के बावजूद इसकी प्रासंगिकता कम नहीं हुई है। आज आवश्यकता इस बात की है कि साहित्य को केवल पाठ्यक्रम की वस्तु न मानकर जीवन और समाज को समझने का सशक्त माध्यम बनाया जाए। हिंदी साहित्य की शक्ति उसकी मानवीयता, समावेशिता और परिवर्तनकारी चेतना में निहित है और यही गुण उसे भविष्य में भी जीवंत एवं प्रभावशाली बनाए रखेंगे।
1: हिंदी साहित्य की वर्तमान स्थिति एवं प्रासंगिकता। अभी आप इस विषय पर विविधा क्रम के अंतर्गत श्रीमती सुषमा अग्रवाल की ये वार्ता सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 6:55 होने को हैं। प्रस्तुत हैं छाया गीत। कार्यक्रम का पहला गीत है मुकेश की आवाज में यहूदी फिल्म से। गीतकार शैलेंद्र हैं और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

यहूदी फिल्म में अभी आपने मुकेश को सुना। गीतकार शैलेंद्र थे और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। कार्यक्रम का अगला गीत है महेंद्र कपूर की आवाज में, आग फिल्म से। गीत के बोल लिखे हैं असद भोपाली ने और इसे सुरों से सजाया है उषा खन्ना ने।

महेंद्र कपूर की आवाज में अभी आपने आग फिल्म से ये गीत सुना। कार्यक्रम का अंतिम गीत है आशा भोसले की आवाज में हमसाया फिल्म से। गीत के बोल लिखे हैं SH बिहारी ने और इसे संगीत से सजाया है OP नैयर ने।

हमसाया फिल्म में आशा भोसले के गायज गीत के साथ ही छाया गीत अब समाप्त होते हैं। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 7:10 हुए हैं। प्रस्तुत हैं तेशकान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है जानकारी कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में।

राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत कल रात्रि 10 बजे कार्यक्रम खेल दर्पण हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। कल सवेरे 6:05 पर सुनिएगा भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। श्री रामचरित मानस गान की संगीत में प्रस्तुति हम आपको सुनवाएंगे कल सवेरे 6:30 पर। काव्यधारा क्रम में कल सवेरे 6:45 पर सुश्री अर्चना का काव्य पाठ सुनवाया जाएगा। सूरज के साथ साथ कार्यक्रम सुनिएगा कल सवेरे 7:31 पर। कल सवेरे 8:45 पर आप सुनेंगे गोल्डन हिट्स गीत तुम्हारे। ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं कल सवेरे 10 बजे। धरती गाती है कार्यक्रम में कल सवेरे 9:25 पर सोनल टॉक के गाए रोहिल खंडी लोक गीत सुनवाए जाएंगे। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे कल दिन में 11:30 पर। कल दोपहर 12:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सैनिकों के लिए मिड डे मेलोडी हम आपको सुनवाएंगे कल दोपहर 12:30 पर। महिला जगत कार्यक्रम में कल दोपहर 1:15 पर डॉक्टर सूची शर्मा की लिखी कहानी लिफाफा सुनवाई जाएगी। कृषि जगत कार्यक्रम में कल शाम 6:05 पर बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मेरठ द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला के अंतर्गत डॉक्टर पिंटू कुमार से सुवेंद्र सिंह की बातचीत का विषय होगा बासमती धान से संबंधित रोग प्रबंधन। अभी आप सुन रहे थे कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:18 होने को है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़ यार, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
0: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
1: कहाँ से पता चलेगा?
0: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
2: आज ही सर्च करूंगा।
0: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
6: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का शुभारंभ, कल से आम नागरिक कर सकेंगे यात्रा, 40 से 45 मिनट में तय होगा दोनों शहरों का सफर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के 22वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित, कहा स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ी, सर्वोच्च न्यायालय ने SIT से मांगी जांच की स्टेटस रिपोर्ट। और एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची लखनऊ, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किया विमर्श, कल राजनीतिक दलों के साथ बैठक। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज उन्नाव में 4,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लखनऊ हरदोई राष्ट्रीय राजमार्ग के 32 किलोमीटर के एक खंड का लोकार्पण और इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर बनने जा रहे 4 लेन वाले फ्लाईओवर का शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश बेहतरीन सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुशासन के लिए अपनी पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे प्रदेश की कनेक्टिविटी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा।
7: राज्य आज सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे का नेतृत्व कर रहा है और आज हम लोग प्रदेश की 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी की ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्टिविटी, ये हमारे SCR को, स्टेट कैपिटल रीजन के जो हमारे जनपद है लखनऊ के इर्द गिर्द, इन सबको जोड़ करके लखनऊ को एक भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले उस प्रयास का हिस्सा है।
6: कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राजधानी लखनऊ ही नहीं पूरे प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सुदृढ़ कानून व्यवस्था के चलते प्रदेश में कई बड़े निवेश आ रहे हैं जो आने वाले दिनों में धरातल पर देखने को मिलेंगे।
8: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का तेजी के साथ विकास हो रहा है, कुछ ही महीनों के अंदर, कुछ साल के अंदर नहीं, कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही हैं और वहाँ जिनको स्थापित करना है उनमें से कुछ लोगों ने हमारे मुख्यमंत्री जी से आकर बातचीत की है और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
6: इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाले 2 सालों में प्रदेश में 5,00,000 करोड़ के विकास कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा।
7: 2014 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता मिली और आज बदलते हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर आप सब लोग देख रहे हैं और हमारा देश का उत्तर प्रदेश एक प्रकार से हमारे देश का हृदय है। अगर उत्तर प्रदेश समृद्ध होगा, संपन्न होगा, प्रगतिशील होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, रोजगार निर्माण होगा, एक्सपोर्ट यहाँ से ज्यादा होगा तो हिंदुस्तान की भी तरक्की होने वाली है।
6: आधुनिक सुविधाओं से लैस लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे कल से यात्रियों के लिए खुल जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। एआई के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। दोनों शहरों के बीच कार से यात्रा करने पर टोल 275 रुपए होगा और इस पर दोपहिया वाहनों की अनुमति नहीं होगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
6: इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़क अवसंरचना से जुड़ी प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के 22वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और मेडिकल रिसर्च में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल इलाज उपलब्ध कराना ही नहीं बल्कि सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बनाना भी है।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का लक्ष्य केवल इलाज उपलब्ध कराना ही नहीं है बल्कि एसेसिबल, एफोर्डेबल, एफोर्डेबल और क्वालिटी ड्रिवन हेल्थ केयर सिस्टम बनाना भी रहा है। आज भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है।
6: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में अनियमितता मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT से जांच संबंधी स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में CBI जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने SIT की संरचना का विवरण भी मांगा है। मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। उधर श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावे में अनियमितता मामले में सुनवाई के दौरान एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज प्रतिभा नारायण ने 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ा दी है। अब आरोपियों की पेशी 27 जुलाई को होगी। वहीं SIT ने मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए धर्मसेना के अध्यक्ष संतोष दुबे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करीब 1 घंटे तक पूछताछ की। संतोष दुबे ने बताया कि SIT ने उनसे कुछ दस्तावेज मांगे हैं जो उन्होंने SIT को सौंप दिए हैं।
9: SIT के सम्मानित सदस्यों ने, अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से हमारा पक्ष जाना, अपेक्षा की कि और भी कुछ आपके पास हो तो हम तक उपलब्ध करें। जो बातें उन्होंने हमसे पूछा मैंने उनको पूरा जो हमने देखा, सुना, जाना, समझा वो सब बताया।
6: एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति JPC आज 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंची। ये समिति विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों और विशेषज्ञों के साथ इस विषय पर मंथन करने के लिए राज्य के दौरे पर है। लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने बताया कि आज समिति ने प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बैंकर्स और वकीलों से विचार विमर्श किया। कल सुबह ये समिति राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ बैठक कर एक राष्ट्र एक चुनाव पर उनके विचार जानेगी।
10: कल सुबह जो राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं, चाहे वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, राजनीतिक दल हैं, इन सब के क्या विचार हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, क्योंकि अगर एक समय पर दोनों चुनाव विधानसभा लोकसभा के होते हैं तो उससे बहुत सारी चीजों पर फर्क पड़ता है। विधानसभा के चुनाव, कभी लोकसभा के चुनाव, कभी एक राज्य के चुनाव, कभी दूसरे राज्य के चुनाव, तो इन सबसे मुक्ति पाई जा सकती है। लेकिन अभी देखना यह है कि अलग अलग दलों के इस पे क्या विचार है।
6: सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, शाही ईदगाह मस्जिद और संभल की विवादित शाही जामा मस्जिद से जुड़े विवादों को विशेष लोक अदालत के माध्यम से सुलझाने के निर्देश दिए हैं। ये विशेष अदालत 21 से 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयोजित होगी। कार्यवाही से पहले इन मामलों से जुड़े पक्षों को लोक अदालत से पहले होने वाली सुलह वार्ता में शामिल होने के लिए नोटिस भेजे गए हैं। ज्ञानवापी मामले में मंगलवार को वाराणसी के जिला और सत्र न्यायालय परिसर स्थित मध्यस्थता केंद्र में प्रस्तावित है। इसमें ज्ञानवापी से जुड़े विभिन्न वादों के पक्षकारों और उनके अधिवक्ताओं को आमंत्रित किया गया है। ज्ञानवापी मामले से जुड़े अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि अगर मध्यस्थता से कोई समाधान नहीं निकलता तो मामले की सुनवाई न्यायालय में जारी रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का शुभारंभ, कल से आम नागरिक कर सकेंगे यात्रा, 40 से 50 मिनट में तय होगा दोनों शहरों का सफर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के 22वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित, कहा स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। और श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ी, सर्वोच्च न्यायालय ने SIT से मांगी जांच की स्टेटस रिपोर्ट। और एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची लखनऊ, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किया विमर्श, कल राजनीतिक दलों के साथ बैठक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
11: पार्टी चाहिए,
12: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
13: आइडिया, यही करते हैं पार्टी,
11: पिज्जा पार्टी।
12: ये
11: चल अपना कार्ड और पिन दे।
13: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
11: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
13: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
14: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सुगम संगीत में लीजिए सुनिए आदित्य कुमार शर्मा के गाए भजन और चंद गजलें।

सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे आदित्य कुमार शर्मा के गाए भजन और चंद गजलें। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत संध्या। कार्यक्रम का पहला गीत है किशोर कुमार की आवाज़ में आपकी कसम फिल्म से। गीतकार आनंद बख्शी और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: कार्यक्रम का अगला गीत है किशोर कुमार की आवाज में, जिसे हमने लिया है सफर फिल्म से। गीत के बोल लिखे हैं इंदिवर ने और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

मुकेश की आवाज़ में अभी आपने मेरा नाम जोकर फिल्म से गीत सुना। गीत के बोल लिखे थे शैलेंद्र ने और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज़ में, पाकीज़ा फिल्म से। गीतकार कैफी आज़मी और इसे संगीत से सजाया है गुलाम मोहम्मद ने।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।

वो कौन थी फिल्म में लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गीत संध्या अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर रात्रि के 8:30 होने को है। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे संत ज्ञानेश्वर फिल्म से कुछ गीत। कार्यक्रम का पहला गीत है मुकेश और साथियों की आवाजों में।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं संत ज्ञानेश्वर फिल्म से कुछ गीत। कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में।

0: एक ही फिल्म से कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे संत ज्ञानेश्वर फिल्म से कुछ गीत। गायक कलाकार थे मुकेश, लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथी। गीतकार भारत व्यास और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% की वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशिया अंडर-19 और अंडर-23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्पेन सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा अर्थव्यवस्था, व्यापार और व्यवसाय मंत्री कार्लोस क्यूर्पो काबालेरो से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाकर भारत स्पेन आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल आज से 5 दिन की स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर हैं। भारत और जापान ने स्वतंत्र, मुक्त और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान की टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। वियतनाम के फूफ कोक द्वीप के पास नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात 9:30 पहुंचेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।

0: दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार एन को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। ताहिर हुसैन सहित कुल 11 आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय ने 5 आरोपियों को दोषी पाया है। अदालत ने ताहिर हुसैन को शत्रुता भड़काने, दंगा, मारपीट, आपराधिक बल प्रयोग और हत्या के आरोपों में दोषी पाया। अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की हत्या तत्कालीन आम आदमी पार्टी पार्षद हुसैन और अन्य लोगों ने की थी। 24 मार्च 2023 को अदालत ने हुसैन और 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। अयोध्या की एक अदालत ने श्री राम मंदिर के कथित दान चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश प्रतिभा नारायण ने आरोपियों को 27 जुलाई को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के अंतर्गत बनाए गए नियमों को 2 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। ये कानून देश के नागर विमानन ढांचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर भी बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले तीनों नेताओं ने उन्नाव में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इसके बाद वे इसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ लौटे और सैनिक स्कूल में एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर करीब 4,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इनमें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, लखनऊ हरदोई राजमार्ग के एक हिस्से को 4 लेन का बनाने का कार्य का उद्घाटन तथा लखनऊ में एक फ्लाईओवर की आधारशिला रखना शामिल है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेज विकास होगा।
1: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है और मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
0: श्री गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
2: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3-लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा। ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।
3: 63 किलोमीटर लंबे और 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 45 मिनट तक रह जाने की उम्मीद है। इस पर टोल 275 रुपए होगा और दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं होगी। AI आधारित गति नियंत्रण प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है और इस पर कोई बैरियर नहीं है। इससे पहले अपने दौरे पर लखनऊ पहुंचे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक आवास पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और राज्य में चल रही और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में

0: अन्य आय शामिल नहीं है।
1: अदर ऑपरेटिंग इनकम इज नॉट इंक्लूडेड।
2: इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
3: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4.93 अरब डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88.76 अरब डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: नागालैंड के चूमो केदिमा

0: इससे पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से होर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक जहाज नहीं गुजरा है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इनमें वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्यवाही ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमले के जवाब में की गई। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने होर्मुज जलडमरू मध्य पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने ईरान द्वारा संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने की निंदा की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने पिछली रात समझौते का उल्लंघन किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने रात भर चले हमलों में ईरान के उपकरणों को नष्ट कर दिया है। इससे पहले ईरान ने अमेरिकी हमलों की निंदा करते हुए अमेरिका पर जलडमरू मध्य में सुरक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप करके वैश्विक वाणिज्यिक जहाजों के आगमन को बाधित करने का आरोप लगाया था। समाचार कक्ष से अमीषा।
0: भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाजों और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई है। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की है। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी कल तेज वर्षा हो सकती है। असम के कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक साप्ताहिक कार्यक्रम में जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के संयुक्त सचिव सुमंत नारायण कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। इंडिया एंड यूएस एंगेज फॉर बैलेंस्ड एंड कमर्शियली मीनिंगफुल ट्रेड पैक्ट, सेज कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल। Dismisses media reports of deadlock in trade talks. India's total exports jumps over $232 billion, registering growth of 11.37% during first quarter of current fiscal. Former AAP leader Tahir Hussain and 4 others convicted for killing of IB officer during 2020 Delhi riots. The US and Iran exchange another wave of strikes as dispute over control of Strait of Hormuz raises tension in the region. In cricket, India scripts history beating England by 270 runs in first ever women's test at the Lords. And 16 Indian boxers enter finals at Asian Under 19 and Under 23 championships in Jakarta. And now the news in detail. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today dismissed media reports of a deadlock in India-US trade talks, calling them as completely false, baseless and misleading. In a social media post, Mr. Goyal said, India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful, and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers, and consumers. He said he had a fantastic meeting with US Trade Representative Jamieson Greer

आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका एक मुतवाजिन और तिजारती लिहाज से मौसर तिजारती माहदे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने तिजारती मुजाकिरात में तातुल से मुतालिक मीडिया की खबरों को मुस्तरद कर दिया। रवां माली बरस की पहली सहमाही में भारत की मजमुई बरामदात 232 अरब अमरीकी डॉलर से तजावुज कर गई, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले 11.37% ज्यादा हैं। आम आदमी पार्टी के साबिक लीडर ताहिर हुसैन और दीगर चार अफराद को साल 2020 के दिल्ली फसादात के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के अफसर अंकित शर्मा के कत्ल के मामले में मुजरिम करार दिया गया है। अमरीका और ईरान ने एक बार फिर एक दूसरे पर हमले किए हैं। आबनाए हुरमुज पर कंट्रोल के तनाजे के बायस खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ गई है। खवातीन क्रिकेट में भारत ने तारीख रकम करते हुए लॉर्ड्स के मैदान में खेले गए पहले खवातीन टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया। और जकार्ता में जारी 19 साल और 23 साल तक की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाज फाइनल में पहुंचे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कम से कम चांदी का तमगा यकीनी बना लिया है।

0: اب خبریں تفصیل سے. تجارت اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے آج بھارت اور امریکہ کے درمیان تجارتی مذاکرات میں تعطل سے متعلق میڈیا کی خبروں کو بے بنیاد، گمراہ کن اور مکمل طور پر غلط قرار دیا. سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گوئل نے کہا کہ بھارت اور امریکہ کی ٹیمیں ایک ایسے تجارتی معاہدے پر پوری سنجیدگی سے کام کر رہی ہیں جو متوازن ہو اور تجارتی اعتبار سے بامانی ہو. نیز دونوں ممالک کے کاروباری طبقوں، کسانوں، مزدوروں اور صارفین کے حقیقی فوائد فراہم کرے. انہوں نے بتایا کہ پچھلے مہینے نئی دلی میں امریکہ کے تجارتی نمائندے جیمیسن گریر کے ساتھ ان کی میٹنگ مثبت رہی تھی. دونوں فریقوں نے ایسے متوازن اور مفید معاہدے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دونوں ممالک کی ٹیمیں مسلسل رابطے میں ہیں. کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے آج اسپین کے اپنے سرکاری دورے کا آغاز کیا. انہوں نے اسپین حکومت کے اول نائب صدر اور کامرس، تجارت اور کاروبار کے وزیر کارلوس کپبیلرو سے ملاقات کی. سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گوئل نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے بھارت اور اسپین کے اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے تجارت، سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں مفید بات چیت کی ہے. انہوں نے بتایا کہ مذاکرات میں قابل تجدید توانائی، گرین ہائیڈروجن، جدید مینوفیکچرنگ، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، بنیادی ڈھانچے اور اختیارات کے موضوعات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ممالک نے بھارت اور یورپی یونین کے آزادانہ تجارتی معاہدے پر بھی خیالات کا تبادلہ کیا اور کاروباری تعلقات کو مزید گہرا کرنے اور اسپین کے ساتھ بھارت کے تجارتی تعاون کو مزید وسعت دینے کے طریقہ کار پر غور و خوض کیا. جناب گوئل آج سے اسپین، بیلجیم اور فن لینڈ کے 5 روزہ دورے پر ہیں. مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے سرکاری سیکٹر کے بینکوں پر زور دیا ہے کہ وہ بیرون ملک بھارتیوں این آر آئی تک اپنی رسائی کو مزید بڑھائیں اور ان کے لیے جدت ترازی پر مبنی نئی جمع پونجی اسکیمیں متعارف کرائیں. انہوں نے آج نئی دلی میں بینکوں کے مینیجنگ ڈائریکٹرز، چیف ایگزیکٹو افسران اور سرکاری مالیاتی اداروں کے سربراہان سے غیر ملکی کرنسی این آر آئی بینک ڈپازٹس اور غیر ملکی کرنسی قرضوں کے تبادلے کے اقدامات کے سلسلے میں بات چیت کے دوران یہ بات کہی. وزیر خزانہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ این آر آئی برادری سے رابطے کو مزید بڑھایا جائے تاکہ غیر ملکی سرمایہ اور رقوم کی آمد کا سلسلہ جاری رہے. میٹنگ کے دوران بینکوں اور سرکاری مالیاتی اداروں کے سربراہان نے وزیر خزانہ کو ریزرو بینک آف انڈیا کی تبادلے کی سہولت کی اسکیموں کے تحت ہونے والی پیش رفت سے بھی آگاہ کیا. انہوں نے مزید کہا کہ بینکوں اور سرکاری مالیاتی اداروں کی سرگرم شرکت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تبادلے کی سہولتیں ملک میں غیر ملکی کرنسی کی آمد کو بڑھانے میں مؤثر رول ادا کر رہی ہیں. اس سال اپریل سے جون کی مدت کے دوران بھارت کی مجموعی برآمدات کا تخمینہ 232 ارب امریکی ڈالر سے زیادہ لگایا گیا ہے، جو کہ گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے 11.37% زیادہ ہے. تجارت اور صنعت کی وزارت کے مطابق جون 2026 کے دوران مجموعی برآمدات کا تخمینہ 73 ارب 45 کروڑ امریکی ڈالر رہا، جو گزشتہ سال کے جون کے مقابلے 9.48% کی مثبت نمو کو ظاہر کرتا ہے. جون میں جن اہم شعبوں کی برآمدات میں اضافہ ہوا ہے ان میں قیمتی پتھر اور زیورات، انجینئرنگ ساز و سامان، نامیاتی و غیر نامیاتی کیمیکلز، الیکٹرانک ساز و سامان اور چاول شامل ہیں. الیکٹرانک ساز و سامان کی برآمدات گزشتہ سال جون کے 4.14 ارب امریکی ڈالر سے بڑھ کر اس سال جون میں 4.93 ارب امریکی ڈالر ہو گئیں. اسی طرح اس میں تقریباً 19% کا اضافہ درج کیا گیا. وزارت نے مزید بتایا کہ جون میں اشیاء اور خدمات کی مجموعی برآمدات کا تخمینہ 88 ارب 76 کروڑ امریکی ڈالر رہا، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 26% سے زیادہ کا اضافہ ہے. اس دوران جون 2026 میں بھارت کی خوردہ افراط زر سالانہ بنیاد پر بڑھ کر 4.38% ہو گئی ہے، جو ریزرو بینک آف انڈیا کے ہدف کی درمیانی حد سے زیادہ ہے. مئی میں افراط زر کی یہ شرح 3.93% تھی. اسی طرح جون میں مہنگائی میں مزید اضافہ ریکارڈ کیا گیا. صارفین قیمت اشاریہ سی پی آئی کے تحت یہ مسلسل چھٹا مہینہ ہے جب خوردہ افراط زر میں اضافہ دیکھا گیا ہے. اعداد و شمار اور پروگراموں پر عمل درآمد کی وزارت کے مطابق دیہی علاقوں میں افراط زر 4.74% رہی، جبکہ شہری علاقوں میں یہ 3.92% رہی. کل ہند صارفین خوراک کی قیمتوں کے اشاریے کے مطابق خوراک کی افراط زر کی شرح 5.32% رہی، جو پچھلے مہینے کے 4.78% سے زیادہ ہے. دلی کی ایک عدالت نے آج عام آدمی پارٹی کے سابق کاؤنسلر طاہر حسین اور دیگر 4 افراد کو سال 2020 کے شمال مشرقی دلی فسادات کے دوران انٹیلیجنس بیورو آئی بی کے افسر انکت شرما کے قتل کے معاملے میں مجرم قرار دیا ہے. ایڈیشنل سیشن جج پروین سنگھ اس معاملے کی سماعت کر رہے تھے، جس میں کل 11 لوگوں کو نامزد کیا گیا تھا. अदालत ने इनमें से 5 अफराद को मुजरिम करार दिया है। अदालत ने ताहिर हुसैन को फिरका वाराना मुनाफरत फैलाने, फसाद, हमला, ताकत के मुजरिमाना इस्तेमाल और कत्ल के इल्जामात में कसूरवार गर्दाना। ये मुकदमा दयालपुर पुलिस स्टेशन में अंकित शर्मा के वालिद रविंद्र कुमार की शिकायत पर दर्ज FIR से मुतालिक है। शिकायत में इल्जाम लगाया गया था कि उनके बेटे को उस वक्त आम आदमी पार्टी के काउंसिलर ताहिर हुसैन और दीगर अफराद ने कत्ल किया। इस मामले में नाम सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन को मुअत्तल कर दिया था। 24 मार्च साल 2023 को दिल्ली की एक अदालत ने ताहिर हुसैन और दीगर 10 मुलजिमीन के खिलाफ बाकायदा तौर पर फर्द जुर्म आयद की थी। अमरीका और ईरान दोनों ने अपने हुरमुज पर कंट्रोल का दावा किया है। मगरबी एशिया में अख्ताम हफ्ता के दौरान हमलों में इजाफे के बाद इलाकाई सलामती और सिफारती कोशिशों के अहिया के लिए की जा रही कोशिशों को नई तशवीश लाहक हो गई है। हालिया कशीदगी ईरान के जरिए ओमान के साहिल के करीब आबनाए हुरमुज में एक कंटेनर बरदार जहाज को निशाना बनाए जाने के बाद शुरू हुई है। इसके बाद से आबनाए हुरमुज से, जो कि आलमी तेल और गैस की तरसील की एक अहम आबी गुजरगाह है, कोई भी तिजारती जहाज नहीं गुजरा है। अमरीका का कहना है कि उसने रात भर ईरान के कई फौजी अहदाफ पर हमले किए हैं, जिसमें फिजाई दिफाई निजाम, साहिली रडार मरकज, मिजाइल और ड्रोन तनसीबात और छोटे बहरी जहाज शामिल हैं। वाशिंगटन का कहना है कि इस कार्रवाई में पहली बार यकतरफा हमलावर समंदरी ड्रोन भी इस्तेमाल किए गए और ये कार्रवाई ईरान की जानिब से तिजारती जहाज रानी पर किए गए हमलों के जवाब में की गई है। दूसरी जानिब इसके जवाब में ईरान ने कहा है कि उसने उर्दुन, बहरैन और कुवैत में मौजूद अमरीकी फौजी ठिकानों को और ओमान में रडार तनसीबात को निशाना बनाया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत और जापान ने आज आजाद, खुले और उसूलों पर मबनी भारत बहरुल काहिल खित्ते के फरोग के लिए अपने अज़्म का इयादा किया है। जापान के शहर टोक्यो में मुनक़िदा 8वीं दिफाई पॉलिसी मुज़ाकरात के दौरान दोनों मुल्कों ने आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल पर जामे बातचीत की और बाहमी मफाद के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। भारतीय वफ़ की क़्यादत दिफाई सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने की, जबकि जापानी वफ़ की क़्यादत बैनुल अक़वामी उमूर के नायब वज़ीर दिफा कानो कोजी ने की। मुज़ाकरात के दौरान दोनों फरीकों ने गुज़िश्ता दिफाई पॉलिसी मुज़ाकरात के बाद से दोतरफा दिफाई तआवुन में हुई अहम पेशरफ्त का जायजा लिया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह किया। इफ्तिताह से कबल तीनों रहनुमाओं ने जिला उन्नाव में एक्सप्रेस वे का मुआयना भी किया। इसके बाद तीनों रहनुमा एक्सप्रेस वे के जरिए वापस लखनऊ पहुंचे और सैनिक स्कूल में मुनक़िदा तकरीब में शिरकत की, जहां तकरीबन 4,850 करोड़ रुपये के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया गया और संगे बुनियाद रखा गया, जिनमें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे, लखनऊ हरदोई शाहराह के एक हिस्से को 4 लेन का बनाने का प्रोजेक्ट और लखनऊ में एक फ्लाईओवर की तामीर शामिल है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब नितिन गडकरी ने कहा कि अगले 2 बरस में उनकी वजारत उत्तर प्रदेश में तकरीबन 5,00,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों को मुकम्मल करेगी।
1: अगर उत्तर प्रदेश समृद्ध होगा, संपन्न होगा, प्रगतिशील होगा तो हिंदुस्तान की भी तरक्की होने वाली है, और इसलिए मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ आने वाले 2 साल में मैं उत्तर प्रदेश में 5,00,000 करोड़ रुपए के कार्य हम पूरे करेंगे। लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3-लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ।
0: जनाब गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे को एक तारीखी कामयाबी करार देते हुए कहा कि इससे उत्तर प्रदेश में सड़क रास्ते के निजाम को मजीद इस्तेहकाम हासिल होगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: 63 किलोमीटर तवील 6 लेन पर मुश्तमिल इस एक्सप्रेस वे से लखनऊ और कानपुर के दरमियान सफर का वक्त कम होकर सिर्फ 35 से 45 मिनट रह जाएगा। इस शाहराह पर कार का टोल टैक्स 275 रूपये होगा, जबकि दोपहिया गाड़ियों को दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। ये मुल्क का पहला एक्सप्रेसवे है जो खुदकार और तेज मशीनों से रहनुमाई हासिल करने वाली तामीराती टेक्नोलॉजी के जरिए तामीर किया जा रहा है। इस तरह की टेक्नोलॉजी अमेरिका और जर्मनी जैसे ममालिक में इस्तेमाल होती है। इस एक्सप्रेसवे पर मस्नूई जहानत, AI पर मबनी रफ्तार की निगरानी का निजाम, हर 2 किलोमीटर पर हंगामी कॉल बॉक्स और 24 घंटे काम करने वाले 2 मजबूत कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। ये शाहराह 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार के लिए डिजाइन की गई है और इस पर रवायती टोल बैरियर मौजूद नहीं है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: अयोध्या की एक अदालत ने श्री राम मंदिर के चंदे में मुबैना बेजाबतगियों में नामजद तमाम 8 मुलजिमीन की अदालती तहवील में मजीद 14 दिन की तौसी कर दी है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज प्रतिभा नारायणन ने हुक्म दिया कि मुलजिमों को दोबारा 27 जुलाई को अदालत के सामने पेश किया जाए। खसूसी तहकीकती टीम SIT ने भी अपनी छानबीन शेयर करते हुए धर्म सेना के सदर संतोष दुबे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरीबन 1 घंटे तक पूछताछ की। मुजवजा एक मुल्क एक इंतखाब फ्रेमवर्क के इम्कान पर गौर कर रही मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी JPC ने आज लखनऊ में मुख्तलिफ शोबों के शराकत दारों और माहरीन से तबादला ख्याल किया। ये कमेटी मुल्कगीर मुशावरत के हिस्से के तौर पर उत्तर प्रदेश के 2 रोजा दौरे पर है। भारतीय महकमे मौसमियात ने बिहार और ओडिशा में कल मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मगरबी बंगाल, आसाम, सिक्किम और मेघालय में भी कल शदीद बारिश हो सकती है। पेश है एक रिपोर्ट। भारतीय महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून का गुजर श्री गंगानगर, हिसार, मुरादाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, बालूरघाट और फिर मणिपुर के मशरक जुनूब मशरक की जानिब जारी रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कारेकल में कल मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि साहिली आंध्र प्रदेश में गर्म मौसमी हालात बरकरार रहेंगे। दिल्ली में महकमे मौसमियात ने कल मतला जुजवी अब्र आलूद रहने और तेज हवाओं के चलने की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कौमी राजधानी में कल ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 36 से 38 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। नई दिल्ली से अक्षत की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
3: खवातीन क्रिकेट में आज लॉर्ड्स के मैदान में पहली मर्तबा खेले जाने वाले खवातीन क्रिकेट टेस्ट मैच में हरमनप्रीत कौर की क्यादत में भारतीय टीम ने मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तारीखी कामयाबी हासिल की। भारत ने इंग्लैंड को 270 रन से शिकस्त दी। जीत के लिए 457 रन के निशाने का पीछा करते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन लंच से पहले अपनी दूसरी इनिंग्स में 186 रन बनाकर आउट हो गई। भारत की जानिब से स्नेह राणा ने 4 विकेट जबकि सयाली सतघरे, क्रांति गौड़ और दीप्ति शर्मा ने 2-2 विकेट हासिल किए। भारत ने कल चाय के वक्फे पर अपनी दूसरी इनिंग्स 7 विकेट पर 341 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी थी और इंग्लैंड को जीत के लिए 457 रन का निशाना दिया था। जकार्ता में 19 साल और 23 साल तक की बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 23 साल तक की उम्र के जुमरे में भारत के 8 मर्द और खवातीन मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए हैं। इस तरह 7 मुक्केबाज सेमीफाइनल में पहुंचे हैं और कांसे का तमगा हासिल किया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका एक मुतवाजिन और तिजारती लिहाज से मौसर तिजारती माहदे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने तिजारती मुजाकरात में तातुल से मुतालिक मीडिया की खबरों को मुस्तरद कर दिया। रवां माली बरस की पहली सहमाही में भारत की मौजूदा बरामदात 232 अरब अमरीकी डॉलर से तजावुज कर गई, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 11.37% ज्यादा हैं। आम आदमी पार्टी के साबिक लीडर ताहिर हुसैन और दीगर 4 अफराद को साल 2020 के दिल्ली फसादात के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के अफसर अंकित शर्मा के कत्ल के मामले में मुजरिम करार दिया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
4: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। एक पुरानी कहावत है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। ये पंक्ति पानी के पर्यायवाची अर्थों के साथ साथ जल के अप्रतिम महत्व को भी दर्शाती है। हमारे देश में विशाल भूमिगत जल भंडार मौजूद है, लेकिन हाल के दशकों में इन संसाधनों को अत्यधिक दोहन, घटती गुणवत्ता, सीमित विनियमन के कारण बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ा है, जिससे भविष्य में जल की उपलब्धता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। बढ़ते शहरीकरण, वर्षा के बदलते पैटर्न और घटते भूजल स्तर के साथ सवाल उठ खड़ा हुआ है कि हम भविष्य के लिए जल को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। आज बचाया गया पानी का हर बूंद भविष्य के लिए सुरक्षा कवच है। हमारे देश की जल सुरक्षा केवल बड़े बांधों या नदियों पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि प्रत्येक नागरिक अपने घर में वर्षा जल का प्रबंधन कैसे करता है। वर्षा जल संचयन प्रणाली अपनाकर जहां पानी के लिए नगरपालिका की आपूर्ति पर निर्भरता घटाई जा सकती है, वहीं पर्यावरण संरक्षण में भी सक्रिय योगदान दिया जा सकता है। बढ़ते भूजल संकट ने प्रभावी प्रबंधन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। वर्षा जल संचयन के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं चलाई हैं। आज हम जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जल शक्ति मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुमंत नारायण जी। स्टूडियो में आपका स्वागत है।
5: धन्यवाद मैडम।
4: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। नंबर है 2331-0481, 2371-7117, 2371-7106 और 2331-4444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप हमारे @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। कार्यक्रम की शुरुआत में सुमन जी, हम ये जानना चाहेंगे कैच द रेन के बारे में। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में जल संचय की अपील की थी लोगों से और कहा था कि वर्षा का जो बूंद बूंद जो है वो हमें बचाना चाहिए। क्या कहेंगे आप इस अभियान के बारे में?
5: धन्यवाद मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक बार फिर से कैच द रेन की इंटेंसिफाई करने के लिए, इसको एक मास मूवमेंट बनाने के लिए सबसे अपील किया है। उन्होंने हमको 5 बिंदुओं पे एक्शन लेने के लिए अपील भी किया है कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रत्येक घर में, समाज में, वर्क प्लेस में अपनाएं। दूसरा, उन्होंने कहा है कि रिचार्ज पिट को, रिचार्ज शाफ्ट को अप्रोप्रिएट जगह पे इंस्टॉल करा जाए। अपने हमारे ट्रेडिशनल बॉडीज हैं जैसे बाउलीज होती थी, कुएं होते थे, उनको रिस्टोर किया जाए। इसी क्रम में ये भी कहा गया है कि क्या हमारे जैसे पुराने तालाब हैं या वाटर रिजर्वॉयर्स हैं जिनमें सिल्ट जमा होने से उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है, तो क्या उसको, उस कैपेसिटी को हम डीसिल्ट करके उनकी कैपेसिटी को रिस्टोर करें ताकि अधिक से अधिक वहां पे मानसून का जल एकत्रित हो सके। और अंत में मैक्सिमम जितने हम वृक्षारोपण कर सकें ताकि इन वाटर रिटेंशन एरियाज के निकटतम जितना ग्रीन कवरेज बढ़ेगी उतना ही जल संरक्षण भी अधिक होगा।
4: हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिद्वार से रवि जवालिया जी। रवि जी, अपना सवाल पूछिए।
6: हाँ जी, नमस्कार मैम।
4: नमस्कार
6: जी, और विशेषज्ञ को भी मेरा नमस्कार।
5: नमस्कार रवि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
6: हाँ सर, आप कैसे हैं सर?
5: मैं ठीक हूँ रवि, आप बताएं। आप तो गंगा नगरी में हैं, आप तो गंगा की नगरी से बोल रहे हैं।
6: जी बिल्कुल, आपने सही पहचाना, हरिद्वार गंगा की नगरी है, गंगा पवित्र नदी है राष्ट्र में। मैं जानना चाहता हूँ कि वर्षा का जल बचाने के लिए एक आम नागरिक उसमें किस प्रकार से अपना योगदान देना दे सकता है सर?
5: रवि जी, आपने तो जैसे मेरे मन की बात छीन ली, जैसे मैं सबको इस प्रोग्राम के माध्यम से सबको बताना ही चाहता था। और यदि मैं सबसे पहले बताऊं, हम सभी के, हम लोग, आप रवि जी कहाँ रहते हैं? आपकी कॉलोनी है, आपका अपना घर है, कैसे?
4: हमारा संपर्क इनसे टूट गया, हालांकि ये हमारी बात सुन पा रहे हैं।
5: ओके, सो मैं ये मानता हूँ कि रवि जी किसी कॉलोनी में रह रहे हैं, एक अपार्टमेंट में हैं। तो रवि जी, यदि आपका ऐसा है तो इस कॉलोनी में कम्युनिटी बेस्ड प्रत्येक घर में, जैसे हमारे वर्षा हुई, सारी छतों पे पानी एकत्रित होता है, क्या हम उसको पाइप के माध्यम से एक रिचार्ज पिट एक कॉमन एरिया में गड्ढे खोद के, मे बी 3x3x3 का गड्ढा खोद कर उसमें कुछ ग्रेवल और सैंड टाइप से डाल सके ताकि जल सभी छतों से जो बहे वो व्यर्थ होने के अपेक्षा में उस गड्ढे में एकत्रित हो जाए ताकि धीमे धीमे वो भूजल को भी बढ़ा सके।
4: भूजल का स्तर इससे बढ़ता है और भूजल का जो स्तर गिर रहा है उसके लिए बहुत जरूरी है कि वर्षा जल संचयन किया जाए तो क्या जो आम आदमी के लिए आपने जो बात बताई कि वर्षा जल का संचयन किस तरह से कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी और कितना खर्च आएगा अगर हम वर्षा जल संचयन करना चाहें अपने घर की छतों पर। तो
5: थैंक यू मैडम।

0: और इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे बचपन में हम लोग सर्वप्रथम पहले कहते थे कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए
1: जी।
0: कहते थे पहली बारिश से जो धूल निकल जाए, धूल मिट्टी निकल जाए, उसके पश्चात नहाना चाहिए। उसी तरह से जैसे हमारी छतों पे अगर धूल मिट्टी है तो फर्स्ट फ्लश जो अंग्रेजी में कहा जाता है वो फर्स्ट फ्लश का पानी सारी धूल मिट्टी को साफ कर दे, तो छतों पे अगर हमारे एकत्रित हमारे छत का एरिया निर्धारित होता है सभी के घरों के छत, उसको पाइप के माध्यम से जैसे मैंने पहले बताया नीचे ले जाएं, लूज सैंड ऑफकोर्स ये सब उस रीजन के हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन और जियोलॉजिकल कंडीशन, वहां कैसी भूमि कैसी है, वहां का एक्विफर लेवल कैसा है, उस पे निर्भर करेगा। बट यदि मैं एक जनरल ज्ञान दूं तो फर्स्ट फ्लश सिस्टम लगाएं, सैंड का प्रयोग करें, बजरी डाल लें ताकि पानी दलदल बनने के बजाय वो सीधे भूजल में जाए, और चारकोल या कार्बन फिल्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेट बोलूं तो मल्टीपल लेयर फिल्टर, ताकि जो अगर कोई धूल मिट्टी आ रही हो वे फिल्टर होके ताकि भूजल में जब जाए तो स्वच्छ पानी जाए। इसका खर्चा अंदाजन अगर ये 3x3x3 का करते हैं तो मुझे बताया गया कि 10 से 15 हजार, ऑफकोर्स ये रीजन स्पेसिफिक होगा, वहां पे पत्थर की क्या है, भूमि कैसी है, उस पर निर्धारित करेगा, पर अंदाजन इतना खर्चा आना चाहिए, जो कि अगर हमारे एक कॉलोनी में हम बनाने की कोशिश करें तो एक सार्वजनिक रूप से ये शायद क्योंकि ये हमारे बच्चों के भविष्य, हमारे अपने भविष्य के निर्भर करता है इन चीजों पे, तो शायद मेरा मानना है कि हम इतना खर्च कर सकते हैं। धन्यवाद।
1: हमारे दूसरे श्रोता हैं सासाराम बिहार से अमित
2: जी। नमस्कार। मेरा ये सवाल था कि जैसे हम लोग रेन हार्वेस्टिंग का जिसे सरकार की तरफ से कुछ जिसे कैसे अभी घर सुर घर योजना के तहत बहुत व्यापक तौर से इसको व्यापक तौर पर सरकार प्रचार प्रसार करे, उसी टाइप से इसको भी एक लेकर जल संचय को लेकर बहुत लोग सोचते हैं कि घर में हम रेन हार्वेस्टिंग करें या फिर अपने कॉलोनी में जैसे सर अभी बता रहे थे कि उसको संचय करने का क्या तरीका हो सकता है, कैसे इसमें सरकार कुछ सब्सिडी दे ताकि अधिक से अधिक लोग इस ओर झुकाव करें और बचाने के लिए इस बारे में सोचे।
0: अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न का, और आपके माध्यम से मैं आपके सभी अपने सभी भाइयों बहनों और बाकियों को भी ये बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने जल संचय जन भागीदारी नाम की एक अभियान का इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, जिसके अंतर्गत हमारा प्रयत्न है कि कैसे, जैसे ये नाम ही सजेस्ट करता है जल संचय जन भागीदारी, तो कैसे अधिकाधिक इसमें जनता, समुदाय, पंचायत, स्वयंसेवी संस्थाएं, उद्योग और जो कहते हैं ना नॉन गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स, उनका भी अधिक से अधिक इसमें वो सम्मिलित हो सके। और सम्मिलित होने का मतलब ये है, जैसे इसमें कई उदाहरण भी मैं देना चाहूंगा
1: जी।
0: कुछ एग्जांपल अगर बोलूं तो छत्तीसगढ़ का कोरिया डिस्ट्रिक्ट है, और इसको माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने एक और मन की बात में भी इसका जिक्र किया है। वहां के किसानों ने अपने 5% भूमि जल संरक्षण के लिए यूटिलाइज किया। उसी क्रम में जैसे बानसकांठा डिस्ट्रिक्ट है, वहां की बानस डेयरी ने वाटर कंजर्वेशन के लिए अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन किया। मैं इस तरह एग्जांपल दे सकता हूँ, नॉर्थ त्रिपुरा में एक कम्युनिटी करीब 500 घर हैं, वहां कम्युनिटी ने मिलकर ही अपने सभी घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाया और इम्प्लीमेंट किया। तो सरकार तो अपना काम कर ही रही है, मगर सबसे बड़ी बात इस अभियान का या इस इनिशिएटिव का मैं बोलूं तो इसमें जन जागरूकता एक, जन पार्टिसिपेशन दो, एंड कम्युनिटी ओनरशिप, ताकि ये मेरा भविष्य है, मेरे बच्चों का भविष्य है,
1: मेरी जिम्मेदारी है,
0: उस पे जोर डाला जा रहा है। और अधिकाधिक आप सभी जगह जान के ये खुशी भी होगी कि JSJB जल संचय जन भागीदारी के सीरियल जो 1.0 था, जो कि 24 से 25 में था, 31 मई 2025 को खत्म हुआ था। माफी चाहूंगा यदि मेरा जवाब ज्यादा लंबा हो रहा है,
1: नहीं, नहीं।
0: बट जनता को बताना भी जरूरी है कि जो
1: जरूरी है।
0: जी तो 10 लाख

0: का टारगेट मतलब इस पीरियड में इतने आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाने का टारगेट था जन भागीदारी से. और जो मैंने बानस का अठा कर एग्जाम्पल दिया और जो अदर एग्जाम्पल जी 10 लाख के अगेंस्ट करीब 25 लाख से अधिक स्ट्रक्चर्स बने और उसका एक आकलन के हिसाब से 2.4 बिलियन क्यूबिक मीटर रिचार्ज हुआ. अगर मैं इसको एक इक्विवेलेंस के टर्म में बोलूं तो एक रंजीत सागर डैम है थेम रावी रिवर पे या उसकी कैपेसिटी करीब इतनी है. तो ये मानना होगा कि 6-8 महीने में सितंबर से लेकर मई तक इतने स्ट्रक्चर्स बने कि उसने एक और जन भागीदारी से बने कि उसने एक डैम के बराबर का
1: पानी इकट्ठा
0: जल इकट्ठा एक्वीफर में कर दिया.
1: बहुत बड़ी उपलब्धि है ये और तो ये भी प्रेरणा
0: है सभी के लिए हौसला अफजाई का भी है और हमको ये आगे के लिए भी इंस्पायर करती है कि हम कैसे और से आगे कर सके.
1: फोन लाइन पर उड़ीसा से है अब देशदीप दास. देशदीप जी आप हमें सुन रहे हैं
2: जी. नमस्ते जी. नारायण जी और कनकलता जी मेरा सादर नमन आपसे.
1: नमन
0: प्रणाम आपको भी देशदीप जी.
2: जी नमस्ते जी. जी मेरा सवाल है
1: जी
2: एक सामान्य आवासीय घर या बड़ी इमारत के लिए रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने में कितना खर्च आता है और इसके मुख्य कंपोनेंट्स क्या है.
0: देशदीप जी धन्यवाद. मैं मुख्य कंपोनेंट्स आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को दोबारा बता देना चाहूंगा कि इसके मुख्य आम तौर पे जो फिल्टर छत में पानी जो एकत्रित हुआ उसको एक पाइप के माध्यम से नीचे ले गए जमीन के स्तर पर और जमीन में एक रिचार्ज पिट बनाया जिसमें फिल्टर लगाया जो मैंने फर्स्ट फ्लश सिस्टम बताया. फिर मैंने सैंड का ताकि सैंड ऊपर फाइन मटेरियल हो नीचे ग्रेवल हो ताकि वो पानी को दलदल ना बने या मिट्टी इकट्ठा ना हो तो और धीमे धीमे सीप करे. इस तरह से बड़ी ही सिंपल तरीके से एक आम नागरिक आपके और मेरे जैसे लोग इस भूजल को मतलब रिचार्ज करने के लिए प्रत्येक नागरिक प्रत्येक समुदाय प्रत्येक समाज इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है. बहुत ही सिंपल प्रणाली है. इसको अपनाएं और अपने और अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करें.
1: एक बात और बताइए कि क्या ये जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो सिस्टम है ये सिर्फ नई इमारतों में ही लगाया जा सकता है या जो पुराने घर बने हुए हैं कहीं पर भी इसको स्थापित किया जा सकता है.
0: मैडम इसको कहीं भी लगाया जा सकता है क्योंकि जब वर्षा होती है वो पुराने और नए घरों में डिफ्रेंशिएट नहीं करती. वर्षा तो प्रकृति से आ रही है. ये हमको ध्यान देना है कि जो पुरानी अगर इमारत है तो जो छत है कितनी समतल है क्या स्लोप है उससे वो निर्धारित ताकि जो पाइप में जो पानी एकत्रित हो इधर उधर एकत्रित होने के बजाय पूरा अधिक से अधिक जल पाइप के माध्यम से भूजल तक पहुंच जाए. शॉर्ट आंसर देयर इज नो डिफरेंशिएशन. लॉन्ग आंसर मैंने आपको बताया.
1: इस तरह का जो पानी जो इकट्ठा किया जाता है वो क्या पीने में और खाना बनाने में भी इस्तेमाल हो सकता है.
0: बहुत ही अच्छा सवाल किया मैडम आपने. इस तरह से पानी हम लोग ये सोचेंगे कि अगर जैसे फर्स्ट फ्लश से सारी धूल मिट्टी निकल गई फिर हम इसको भूजल में रिचार्ज करें. अगर हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो गया है फिल्टर्ड ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ है. इनफैक्ट आज भी जो हम दोहन कर रहे हैं जिन भी डिस्ट्रिक्ट में या गाँव में या ब्लॉक्स में हम दोहन कर रहे हैं ग्राउंड वाटर दोहन कर रहे हैं वहां तो हम आराम से इस्तेमाल कर रहे हैं.
1: इसी तरह से भी कर सकते हैं. रमाकांत वाजपेयी जी हैं उत्तर प्रदेश से.
3: नमस्कार.
1: नमस्कार रमाकांत जी.
0: नमस्कार
3: रमाकांत
0: जी. नमस्ते.
3: नमस्ते. मैं ये पूछना चाहता था कि जिस तरह से जल सुरक्षा और जल पुनर्भरण भूगर्भीय जल पुनर्भरण तो जल सुरक्षा का मतलब है कि जब हम 1 लीटर पानी खर्च करते थे आज उस जगह जो है नए व्हीकल आ गए नए नई परंपराएं हो गई नई चीजें इनमें हजारों लीटर पानी खत्म होता. और दूसरी चीज है भूगर्भीय जल पुनर्भरण तो कंक्रीट का सड़क कंक्रीट की गली ऊपर से नीचे पानी जाता नहीं है कुंड टूट दिए गए

0: करते हैं तो बताइए कैसे जो है जल पुनर्भरण हो।
1: रमाकांत जी आपने बिल्कुल सही बात की कि हमारी डिमांड्स बढ़ रही हैं, हमारे औद्योगिकरण बढ़ रहा है, हमारे समुदाय बढ़ रहा है, उनकी ग्रोथ जरूरी है और कहते हैं ना जल ही जीवन है, तो इन सब के लिए जल तो अति आवश्यक है। सो आपकी मेरी कनक लता मैडम की और पूरे समुदाय की यह जिम्मेदारी भी है कि कैसे हम अधिक से अधिक जल को संरक्षण कर सकें, चाहे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, चाहे समुदाय के तौर पे हम कंटूर ट्रेंचेस बनाएं, या देर आर मतलब कई सारे तरीके होते हैं आर्टिफिशियल रिस्टार्ट कृत्रिम स्ट्रक्चर बनाने के। एक उनमें से है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, दूसरा कि जैसे किसान मैंने कोरिया वाला बताया अगर कंटूर ट्रेंच बना ले या रिचार्ज पिट बना ले। सो ये छोटे छोटे तरीकों से जैसे जमीन हुई, जैसे इकोसिस्टम हुआ, उस हिसाब से स्ट्रक्चर बनाया, पानी का संरक्षण किया, भूजल का अपग्रेडेशन हुआ, और साथ ही साथ ऐसे समझे कि जो बारिश अगर सरफेस रन ऑफ या पानी का व्यर्थ बह जाती वो पानी मैंने एकत्रित कर लिया जो मैं अपने भविष्य में इस्तेमाल कर सकता हूँ।
2: भविष्य के लिए निवेश है,
1: भविष्य का बिल्कुल निवेश है। जैसे हम पिगी बैंक में अपने एक एक पैसे डालते हैं,
2: बच्चे डालते हैं,
1: बिल्कुल उसी तरीके से हम अपने भविष्य के लिए एक एक बूंद को, जैसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी कहा कि एक एक बूंद को बचाना है, उसी तरह हमारे प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी हो जाती है।
2: हर बूंद कीमती है।
1: जी बिल्कुल।
2: श्रोता स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं, आप इस पर सवाल भेज सकते हैं। नंबर है 2331-4812-37174-117-2371-06 और 2331-4444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। अब हमारे साथ अगले श्रोता की अभी प्रतीक्षा है, तब तक आप हमें ये बताइए सुमन जी की जो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो प्रोसेस है, जो प्रणाली है, इसका रख रखाव भी क्या कठिन होता है, किस तरह करते हैं?
1: मैडम बिल्कुल आपका सही सवाल है कि बट जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे बनाना, उसको कंस्ट्रक्ट करना या एस्टैब्लिश करना जितना सिंपल है, रख रखाव उससे भी अधिक मैं कहूंगा सिंपल है कि बस साफ सुथरी होनी चाहिए। अगर 6-8 महीने में एक बार, जैसे मानसून से पहले एक बार सफाई कर दिए ताकि वो रिचार्ज होने के लिए जैसे कहते हैं ना तैयार होए, तो वो साफ सफाई हो गई, धूल मिट्टी हट गई, अगर कोई एक्स्ट्रा कुछ गर्द आ गई हो वो साफ हो गया, ताकि जब जल आए वो धीमे धीमे भूजल पे मतलब अपग्रेड हो जाए,
2: स्तर ऊपर
1: हो जाए।
2: वर्षा जल संचयन योजना 2025 की काफी चर्चा है, आप इसके बारे में श्रोताओं को थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैंने पिछले उत्तर में शायद आधा ही बताया था कि जैसे जीएसजेबी जल संचय जन भागीदारी 1.0 जो 2024 से 25 चली उसमें क्या हुआ। अब ये अवसर मुझे आपके प्रश्न से मिलता है कि 2025 से 26 जो जल संचय जन भागीदारी जिसको हम 2.0 कहते हैं, वो 1 जून 2025 को स्टार्ट हुई थी और 31 मई 2026 को खत्म हुई है। उसके अंतर्गत भी देश से बहुत करीब 700 डिस्ट्रिक्ट्स, वहां पे वहां की जनता ने, वहां के क्राउड ने, वहां के डिस्ट्रिक्ट्स ने, वहां के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ने, वहां की इंडस्ट्री ने, वहां के एनजीओज ने, सब ने मिलकर जो आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया रूफटॉप रेन वाटर या हार्वेस्टिंग या फिर जैसे रिचार्ज पिट हुआ या रिचार्ज शाफ्ट हुआ, इस तरह के जो करीब 18-19 तरीके के लो कॉस्ट स्ट्रक्चर्स हैं, 1 करोड़ का टारगेट हमारा, हमने इंटरनली जो हमारे लिए सेट किया गया था, उस 1 करोड़ टारगेट के अगेंस्ट पूरे भारतवर्ष से करीब 1.5 करोड़ स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं।

0: बन गए,
1: मतलब
0: जितना लक्ष्य था
1: उस लक्ष्य से करीब 50% अधिक बने। और मैंने बताया ना कि अगर 2.4 BCM जो कि करीब 23-24 लाख स्ट्रक्चर से बने थे जितना रिचार्ज हुआ था, तो हम अभी यह अनुमान लगा सकते हैं कि इसका इसका कितना फायदा हमारे आने वाले समय में दिखेगा। सो इसमें भी जन समुदाय भागीदारी, नॉन गवर्नमेंटल, ऑफकोर्स सरकार तो कंट्रीब्यूट कर ही रही है, बट सभी लोग,
0: लोगों की भागीदारी बहुत
1: बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कोई भी कहते ना, कोई भी, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का भी ये फोकस है कि जैसे इसको मास मूवमेंट बनाया जाए, कैसे इसकी जन ओनरशिप, कम्युनिटी ओनरशिप हो, ये हमारा भी प्रयत्न है कि इसको हम आगे से आगे कैसे लेके जा पाए। इनफैक्ट आज जो आपका रेडियो का कार्यक्रम है, ये एक अपने आप में एक माध्यम है कि लोगों की अवेयरनेस कैसे बढ़ाई जाए, लोगों को कैसे पता चले कि आप जैसे आपके स्टूडियो में मैं तीन चार लोगों को देख सकता हूं, जब हम अपने घर जाएं, क्या हम कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे।
0: आपने कहा लोगों तक हम पहुंच सके। देखिए शिमला से एक सवाल आया है राकेश जी का। राकेश जी
2: जी नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला जिले की कोटखाई से।
0: नमस्कार।
2: और मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे कि हमारे सर्दी में जो कई बार जो है माइनस में तापमान चलता है और हमारी जो है बर्फबारी होती है काफी कोटखाई क्षेत्र में, तो मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि जो बर्फ का जो पानी है उसको किस तरह से जो है संरक्षण किया जा सकता है।
1: राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न का, बिकॉज आप शिमलाई के लिए नहीं, ये प्रश्न मेरे ख्याल से हमारे पहाड़ी राज्यों में कई डिस्ट्रिक्ट्स पे ये लागू किया जा सकता है।
0: लद्दाख के बारे में बताइए।
1: आई एम सो ग्लैड आपने ये पूछा। इनफैक्ट लद्दाख का एक अभी कुछ हफ्तों पहले ही मुझे एक एग्जांपल बताया गया था कि लद्दाख में कैसे लोग अपना वाटर कंजर्वेशन या जल संरक्षण कर रहे हैं। वहां डिटेल्स तो हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, मगर जल स्तूपा का कॉन्सेप्ट वो लोग लाए हैं कि एक बर्फ के एक स्तूप बनाते हैं और उस स्तूप से ताकि वो धीमे धीमे जब वो पानी गलता जाए तो विंटर में जाड़ों में वो पानी एकत्रित हो गया, बर्फ बन गई, और वो समर में जब वो गलना स्टार्ट होती है तो धीमे धीमे पाइप के माध्यम से मेन स्ट्रीम में ले जाया जाता है। तो राकेश जी आपने बहुत सही सवाल पूछा कि हम शिमला हो, लद्दाख हो, सिक्किम में ये सब एरियाज ऐसे हैं जहां पे ऐसी गुड प्रैक्टिसेस अपनाई जा सकती हैं। हमने सभी राज्यों से शेयर भी किया है और आप वेबसाइट भी अगर अपने वेबसाइट देखेंगे तो भी आपको इसके विस्तृत जानकारी मिल सकती है। बट बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न का।
0: एक और श्रोता हमारे साथ है, विवेक।

0: और मैडम आपके माध्यम से बाकी श्रोताओं को भी ये जानकर बताने से मुझे हर्ष हो रहा है कि देश भर में करीब 700 जल शक्ति केंद्रज हैं। जैसे हमारे कृषि विज्ञान केवीकेज हैं, उसी तरह जल शक्ति केंद्रज हैं। हर अब ये जयपुर से कर रहे हैं तो मुझे उनका टोल फ्री नंबर नहीं पता है, मगर डिस्ट्रिक्ट में जल शक्ति केंद्र में तो एक टोल फ्री नंबर है, आप उनको फोन करें। आपको जो सिंपल तकनीकी राय लेनी हो कि हम कैसे संरक्षण, बिकॉज जयपुर की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है अपितु शिमला से या उत्तर प्रदेश, जो हमारे डिफरेंट श्रोता हुए हैं, तो आपको रीजन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो सबसे आसान और सुविधाजनक समाधान होगा वो आपको आपका जल शक्ति केंद्र ही बता सकता है, लोकल रिक्वायरमेंट।
1: जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं जल शक्ति मंत्रालय में सचिव सुमंत नारायण। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। सुमंत जी, मिशन अमृत सरोवर की चर्चा होती है और अटल भूजल योजना की भी चर्चा काफी हो रही है, ये सारी जो पहले हैं सरकार की ओर से की जा रही हैं ताकि वर्षा जल का संचयन किया जा सके, भूजल के स्तर को बढ़ाया जा सके, इन सब के बारे में आप कुल मिलाकर क्या कहना चाहेंगे?
0: धन्यवाद मैडम आपके इस सवाल का। आप यही समझे कि जो होल ऑफ गवर्नमेंट होल ऑफ सोसाइटी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का ये मोटो है कि कैसे सरकार के सभी अंग होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से अडॉप्ट करके बनाए, उसी के अंतर्गत आपने अमृत सरोवर बोला या अटल भूजल योजना बोली, एक एक सरकार का अंग ये कंट्रीब्यूट कर रहा है कि कैसे भूजल, कहीं पे सरोवर बनेगा कि बड़े सरोवर बने, कहीं पे भूजल डायरेक्ट इंजेक्शन वेल से चला जाए, किसी और स्कीम के अंतर्गत अगर रिचार्ज पिट बन जाए, या अगर मैं होल ऑफ सोसाइटी की बात करूं तो अगर मैं रायपुर का एग्जांपल दूं तो वहां पे इंडस्ट्री एसोसिएशन ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स बनवाए। इस तरह मैं एग्जांपल्स, देश भर में अनगिनत एग्जांपल्स हैं जो जन भागीदारी होती जा रही है, मगर अभी रास्ता लंबा है। हम सबको अपना, रिपीट कर रहा हूं, मगर अपना और अपने बच्चों का भविष्य इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए सुदृढ़ करना आवश्यक,
1: बच्चों को भी जागरूक किया जाना चाहिए इसके लिए।
0: एब्सोल्युटली कहते हैं ना कि बच्चों से ही जितना बिहेवियर चेंज होता है वो सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, तो बच्चों के सिलेबस में
1: इसको जोड़ा जाना चाहिए।
0: कई कक्षाओं में जुड़ा हुआ है, जैसे छठवीं सातवीं कक्षा के सिलेबस में चैप्टर्स हैं। इसको हम और अवेयरनेस मॉडल्स, जैसे एक ये रेडियो प्रोग्राम हुआ या यूट्यूब हुआ या सोशल मीडिया हुआ,
1: आकाशवाणी पर भी इसके बारे में प्रचार किया जा रहा है।
0: बिल्कुल, आकाशवाणी पे डेली जिंगल्स चल रहे हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे शामिल हो सकते हैं, कैसे इस मिशन को या अभियान को हम और इंटेंसिफाई कर सकते हैं।
1: सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में भी प्रभावी भूजल प्रबंधन आवश्यक है, और जैसा कि आपने बताया कि जो बावड़ियां हैं पुरानी, उन सबको भी, उनका भी पुनरुद्धार करने की कोशिश चल रही है ताकि वर्षा जल का संचयन किया जा सके। अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइन्स और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जल शक्ति मंत्रालय में सचिव सुमंत नारायण स्टूडियो में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? कार्यक्रम के संबंध में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। कनक लता को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का पहला

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: कार्यक्रम का अगला गीत है येसुदास की आवाज में सावन को आने दो फिल्म से। गीतकार अभिलाष और संगीत दिया है राजकमल ने।

कार्यक्रम का अगला गीत है हेमंत कुमार की आवाज में, जिसे हमने खामोशी फिल्म से लिया है। गीतकार गुलजार हैं और संगीत दिया है हेमंत कुमार ने।

कार्यक्रम का अगला गीत है हेमंत कुमार की आवाज में प्यासा फिल्म से। गीतकार साहिर लुधियानवी और संगीत दिया है एसटी बर्मन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में धूल का फूल फिल्म से। गीतकार साहिर लुधियानवी और संगीत दिया है दत्ता नायक ने।

हकीकत फिल्म में मोहम्मद रफ़ी और साथियों के गाए इस गीत के साथ ही भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10:30 होने को है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत सुनने की फरमाइश हमें भेजी है नगीना से अनिल विनोचा, शम्मी, अक्षय गीत और सहज अरोड़ा ने। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा।

ग्राम जुझैला थाना शिवाला कला बिजनौर से राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात आयशा, शाइना महवश, मोहम्मद अफ़ान और अदीना नूर ने। शाही मार्केट सिहारा ज़िला बिजनौर से गीत सुनना चाहते हैं आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अराफात, अदीब और कादिर चौधरी। मोहल्ला हलवाईयान कस्बा शेरकोट ज़िला बिजनौर से गीत सुनने की फरमाइश हमें भेजी है मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर ने। रिगनी छत्तीसगढ़ से गीत सुनने की फरमाइश हमें मिली है दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा की ओर से। वडिंग खेड़ा से गीत सुनना चाहते हैं मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। राजा का ताजपुर पोस्ट ग्राम पेंडिया से गीत सुनना चाहते हैं रामदयाल सिंह, शशि बाला, कार्तिक, सत्यम, जब्बा, नीरज, मिशिका और लिशिका। वर्ली मुंबई से गीत सुनने की फरमाइश हमें भेजी है नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजहर खान और अजीम खान ने। आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का पहला गीत जगजीत सिंह की आवाज़ में, अर्थ फिल्म से।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनने की फरमाइश हमें भेजी है मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवीद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी और रशीद वारसी ने। किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से गीत सुनना चाहते हैं जुबेर अली खान और सबीहा अंजुमन खान। नांगल सोती जिला बिजनौर से गीत सुनना

चाहते हैं मोहम्मद असलम पेंटर और मोहम्मद उज़ैफ खान। लक्सर रोड गांव सुवाहेड़ी कस्बा पुरका जी ज़िला मुजफ्फरनगर से मोहम्मद जाविर, मोहम्मद हुज़ैफ़ा, मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद शोहेब कहकशां और इनका पूरा परिवार। मसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से गीत सुनना चाहते हैं इरशाद हुसैन अंसारी, सैयद शारिक अली, मेराज अंसारी और बाबू अंसारी। नाज पैलेस अजमेर शरीफ से गीत सुनने की फरमाइश हमें भेजी है सैयद आलम हाशमी, गुलनाज नाज, सलमा नाज, असद अरहाम और मोहम्मद आलम हाशमी ने। लाल कुर्ती रोड रुड़की से गीत सुनना चाहते हैं राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा। नई बस्ती गंज डुंडवारा से गीत सुनना चाहते हैं मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी। गंज डुंडवारा से गीत सुनने की फरमाइश हमें भेजी है मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी और मोहम्मद उस्मान अंसारी ने। आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत जगजीत सिंह की आवाज़ में, प्रेम गीत फिल्म से।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनने की फरमाइश हमें भेजी है आदर्श नगर मलवोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शायना शर्मा और निवान शर्मा ने। अस्तोपुरा जिला मऊनाथ भंजन से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी और इनके सभी परिवार वालों ने। बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद ने। सराय मीर स्ट्रीट नगीना से रईस अहमद राही, रवीश अहमद राही, रुएश अहमद राही, रिशान अहमद राही, रुशेज अहमद राही, रुशमान अहमद राही और समस्त राही परिवार ने। करूला मुरादाबाद से गीत सुनना चाहते हैं अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान और जीशान वारसी। मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से गीत सुनना चाहते हैं रफत भाई, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, फिरोजा, मुस्कान, फौजिया, रोशनी और नगमानाज मंसूरी। वृंदा राजीव नंदिनी काव्या प्रीशा ईशान खुशी राघव किरतपुर मोहल्ला चौहानान से गीत सुनना चाहते हैं। गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से गीत सुनने की फरमाइश हमें भेजी है राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। परिमहल कासगंज से गीत सुनना चाहते हैं आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, मोहम्मद असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली और इनके सभी साथी। मीरसराय बदायूं से गीत सुनने की फरमाइश हमें भेजी है आफरीन खान और जमीर खान ने। आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में दुलारी फिल्म से।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनने की फरमाइश हमें भेजी है मोहल्ला अफगानान कस्बा शेरकोट जिला बिजनौर से नदीम बाकी कलीम बाकी अलीम बाकी अजीम बाकी अदीम बाकी अब्दुल गनी अलबीर मोहम्मद जैन और जन्नत ने। जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से गीत सुनना चाहते हैं तौफीक अहमद सिद्दीकी अतीक अहमद सिद्दीकी मोहम्मद दानिश सिद्दीकी हमजा सिद्दीकी गुलशन साहिबा और इनके सभी परिवार वाले। गनगोला दादागंज जिला बदायूं से गीत सुनना चाहते हैं इशरत खान शायरा बेगम रऊफ खान सावरीन बेगम शहबाज खान सैफ खान ईशान खान आजम खान और अरहान खान। जसपुर उत्तराखंड से गीत सुनने की फरमाइश हमें भेजी है रियासत हुसैन सिद्दीकी नाजमा बेगम सिद्दीकी रियाज रिफाकत मोहम्मद रिहान समरीन परवीन और माहिरा नूर ने। ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही मेहराज जहां गीत सुनना चाहते हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में मेरा साया फिल्म से।

कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनने की फरमाइश हमें भेजी है लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा और दीपाली वर्मा ने। मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी और रशीद वारसी ने। मोहल्ला अफगानान कस्बा शेरकोट ज़िला बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर, मोहम्मद जैन और जन्नत ने। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय ने। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया ने। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल का

0: दाता फिल्म में महेंद्र कपूर और साथियों के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब समाप्त करने की अनुमति दीजिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर रात्रि के 11 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में।
1: समाचार के साथ मैं सरफी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीमें व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनके अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हों। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीमें लगातार सक्रिय हैं। इस वर्ष अप्रैल से

0: जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4 अरब 14 करोड़ अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4 अरब 93 करोड़ डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88 अरब 76 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान दोनों ने हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मूज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मूज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई है। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। वियतनाम के फू क्वो

इटली से वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से मुंबई लाया गया। दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की राज्य सरकारें पार्थिव शरीर को उनके संबंधित राज्यों में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में समन्वय करेंगी। भारतीय दूतावास ने इस कठिन समय में सहयोग और सहायता के लिए वियतनाम सरकार और वहां के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। 2 जुलाई को शंकरपुर बंदरगाह से मछली पकड़ने